44.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शुक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हुए हैं। अब आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है समाचार कुछ क्षणों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय

0: पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं समूह स्वर में मातृ वंदना।

कबीर की रचना भी आपने सुनी लता मंगेशकर के स्वर में। लीजिए सुनिए रविंद्र पथनिया की रचना जगजीत सिंह के स्वर में।

महेंद्र कपूर के स्वर में अभी आपने सुनी आरती। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुनिए। 7:20 पर हिंदी महक में आप सुनेंगे संध्या निगम से उनका काव्य पाठ। फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा 7:20 पर, शाम 5:30 पर और रात 8:35 पर। हमारा विशेष कार्यक्रम आज सुनिएगा 8:30 पर आकाशवाणी 90 वर्ष के अंतर्गत आकाशवाणी छतरपुर के पूर्व उद्घोषक राकेश खरे से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग का समय रहेगा 9:30। इसमें आज आप सुनेंगे रजनी यादव के गाए हुए बुंदेली लोकगीत। गांधी चर्चा आप सुनेंगे 10:05 पर और 10:20 पर आप सुनिएगा गैर फिल्मी भजन। श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनिएगा 10:30 पर। दिन में 1 बजे महिला सभा में महिलाएं सुनेंगी डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला का काव्य पाठ। साथ ही होगी उपयोगी जानकारी।

0: मिट्टी, साक्षरता और महिलाएं। शाम 5:02 पर युवाणी में युवा साथी आज सुनेंगे वार्ता, पत्रकारिता में युवाओं की सहभागिता। वार्ताकार होंगे अरविंद प्रजापति, साथी होगी रोजगार सूचना। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा का समय रहेगा शाम 6:30। इसमें आज आप सुनेंगे सीताराम यादव और रजनी यादव के गाए हुए बुंदेली लोकगीत। ग्रामीण भाई ग्राम सभा में 7:20 पर सुनेंगे मानस प्रवचन, प्रसंग होगा रानियों का गर्भवती होना, प्रवचन करता होंगे महेश कुमार अवस्थी। साथ ही एक वार्ता सुनेंगे बाजरा के प्रमुख रोग एवं उनका प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुचरिता मोहापात्रा, साथी होगी आज की सीख। भोपाल से आज हम रिले करेंगे शाम 6:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और रात 8:00 विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जनविश्वास इज ऑफ डूइंग बिजनेस। रात 9:30 पर आप सुनिएगा प्रायोजित लोक संगीत, कलाकार होंगे प्रेमचंद अहिरवार। रात 10:00 आप सुनेंगे संगीत रूपक सजन संग लड़ूंगी। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में शाहिद परवेज से सितार पर बजाया राग तिलक कामोद। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम रिले करेंगे 11:00 फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। दिन में 12:00 आपकी फरमाइश, 12:30 पर आप सुनेंगे संग्रहालय से। 1:30 पर योग के महत्व पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत आप सुनिएगा और 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, कलाकार होंगी सोनाली जलोटा। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। दिन में 2:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 2:30 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश। ये तो थे हमारे केंद्र से आज यानी 12 जून को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। किसान भाई सुने खेती किसानी।
1: पंचो, आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं मधुमक्खी पालन के संबंध में। भैया तो देखो, मधु को नाम लेते नहीं अपन के मुंह में पानी सोया गो हुए हैं। कैसे भैया जो है बहुत अच्छी दवाई है और लाभ को सबसे अच्छो धंधो है। इके लाने अपन का कछु नहीं करने, जहां अपने खेत हैं उत खेतन पे जोन बिरछा लगे हैं उते पे मोन ग्रह जो बने बनाए आउत हैं जो होते हैं लकड़िया के बक्सा। ठीक है, तो अपन देख लें कि जो लकड़ी के बक्सा हैं उन्हें अपने पेड़ पे ऐसी जगह टांग देवे जिसे के मधुमक्खी जो होती हैं वे उमे रहके और मधुपालन करन लगे। मधुमक्खी पालवे के लेना पहला तो अपन जो करने हैं कि जो अपनी मधुमक्खी हैं उनकी देखभाल अच्छी तरह से करने, उनका जो वंश है उकी व्यवस्था करने और जो अपने जो उपकरण है मधुमक्खी पालन के उनको सही रख रखाव सो ये अपन का अच्छी तरह से करने पर है। अच्छो उत्पादन लेवे के लाने और पर परागण को लाभ लेवे के लाने अपन का कछु बातें ऐसी हैं जो उनके ध्यान में रखने पर है। अब ये बातें जो है कि मधुमक्खी जो वंश है उको अपन निरीक्षण करने हैं, यानी जितनी भी मधुमक्खियां हैं उनमें अलग अलग रात है, रानी रात, सिपाही रात और जो उनके कार्यकर्ता है वे अलग अलग रात है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखवे के लाने जो अपनो छत्ता बनो है उ बने बनाए छत्ता है जो उनका के अपन बाजार से लाए हैं उ में सब विभाजन उनको रात है। ठीक है, कैसे दो छत्तन के बीच के जो समान अंतर होते हैं तो वो यही से कि रानी मक्खी कहाँ रहे, सिपाही कहाँ रहे, उनकी सब व्यवस्था उ जो अपनो लकड़ी को बनो हुआ बक्सा है उ में रात है। वही के अंदर मधुमक्खियां अपनो छत्ता बना के फिर जो है शहद को पालन करती हैं। तो अपन देखत रहे कि जो अपनी मधुमक्खी को वंश है वो 10-12 दिन के अंतर पे उनकी का प्रगति हो रही, इके लाने अपन का जो बक्सा लकड़ी को बनो हुआ है उखा खोल के देखने पर है। उमे अपन काका बातें देखने जो सोई हम अपन का बता दें। पहली बात तो जाहे कि जो मधुमक्खी को वंश है उमे अपन देखें कि रानी मक्खी है कि नैया उमे, और जो रानी मक्खी होते है भैया उनके द्वारा जो अंडा दे जाते हैं उको काम अच्छी तरह से चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो, और जो शिशु खंड होते है उके छत्तन में पर्याप्त शहद इकट्ठी भई कि नहीं भई, छत्तन की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उनमें जो

0: उनके शिशु होते हैं छोटे छोटे, उनको अनुपात ठीक है कि नहीं है। रानी जो मधुमक्खी होते व अंडा देवे के लाने पर्याप्त स्थान चाहू थे, तो उनमें पर्याप्त स्थान बचो या नहीं बचो, इन सब चीजन की जानकारी रखने। उके संगे संगे अपन है जो भी देखने के मधुमक्खियन खा जो उनके शत्रु होते हैं, जो उनके रोग होते हैं, तो उमें उनका कोनो परेशानी तो नहीं हो रही, यानी कि कोनो रोग या कीटाणु उमें लगे तो नहीं है। अब बात आउत है कि इनका कृत्रिम भोजन अपन कौन प्रकार से देवे। अपन ने देखो हुए कि मधुमक्खी वंश जोन होते है तो कभू कभू जबकि जो है फूल ज्यादा ना होवे अपनी फसल में, तो ऊ बेरा इन्हें भोजन की कमी हो जाते। ऊ भोजन की पूर्ति के लाने जोन मोन वंश है वे अपनो अच्छी तरह से काम करें, इके लाने अपन कहोने भैया कछु बनावटी भोजन जरूर देने है, कैसे बगैर भोजन के तो कोई चलत नहीं है। तो इके लाने अपन का करने है कि जो सामान्य मोन वंश है उके 2 किलोग्राम मधु और पराग खा इकट्ठो देखने के बहुत संचय इकट्ठो हो रो के नहीं हो रो, अगर कम मात्रा में हो रो है तो उन्हें भैया जो है कृत्रिम भोजन दे वो शुरू कर देने, कैसे कि जब वे सेहत बना वो कम कर दे हैं, तो जो मान के चलो कि अपनी जो मधुमक्खी हैं उन्हें भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा हो। इके लाने अपन का करने हैं कि अपनी चीनी लेने शक्कर भैया और पानी ये दो ही बराबर भाग में लेके और उनका उबाल लेने हैं, और जब वो घोल ठंडो हो जाए उके बाद बिल्कुल अच्छी तरह से जो है अपने भोजन के जो पात्र है जिनके अपन जब मधुमक्खी पालन कर बे गए हुए तो उके लाने भोजन पात्र भी संगे लिया हो, तो ऊ में अपन खान जो है जो विशेष प्रकार के भोजन पात्र होते हैं ऊ में अपन खान जो शक्कर को शरबत बना के रख देने हैं, और खासतौर से सर्दी के मौसम में भोजन की विशेष रूप से जरूरत पड़त है उतने अपन जो है इन्हें चीनी खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कहूँ अपन ने हमारी बताई भाई बातन पे ध्यान देके मधुमक्खी पालन करो, उनके वंश को आकलन करो और उनके उपकरण को सही रख रखाव करो, तो निश्चित है कि अपन का भरपूर मात्रा में शहद को उत्पादन मिले।
1: किसान भाइयों के लिए अभी खेती किसानी का प्रसारण किया जा रहा था, विषय था मधुमक्खी पालन कैसे करें। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज जोन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से राम कथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेदमत और लोकमत इसके दो किनारे हैं।

0: आकाशवाणी छतरपुर से भी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान, गायक स्वर वाणी जयराम की, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। मीडियम पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है आज का चिंतन।
1: एक दिन संत कन्फ्यूशियस के पास जाकर उनके कुछ शिष्य बोली, गुरुदेव सच्चा ज्ञानी कौन होता है? संत ने कहा, सब लोग बैठ जाओ, अभी बताते हैं। ये कहकर उन्होंने अपनी शेष दिनचर्या पूरी की और कपड़े पहने, फिर सब शिष्यों को लेकर एक ओर चल पड़े। सब लोग एक गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए। वहां एक महात्मा निवास करते थे, जब तप और चिंतन में अपना समय बिताया करते थे। कन्फ्यूशियस ने उनको प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। फिर शांत होकर पूछा, भगवान हम लोग आपके पास ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, बताएं वो कौन है, क्या है, कहां रहता है? महात्मा बिगड़ गए, तुम लोग यहां मेरी शांति भंग करने क्यों आ गए? जाओ, मेरे ध्यान में विघ्न पड़ता है। कन्फ्यूशियस शिष्यों को लेकर बाहर निकल आए। उन्होंने कहा, एक ज्ञानी तो ये है कि जिन्होंने संसार से आंख मूंद दी है। संसार में सुख दुख की परिस्थितियों से अलग एकांत में शांति की इच्छा रखने वाले ये संत एक छोटे दर्जे के ज्ञानी हुए। इसके बाद में एक गांव में पहुंचे जहां एक व्यक्ति कोल्हू चला रहा था। बैल की आंखों में पट्टी बंधी थी। वो अपनी मस्त चाल में एक गोल घेरे में ना मालूम कब से चक्कर काट रहा था। उसको पता नहीं कि वो कहां जा रहा है। कोल्हू पर बैठा व्यक्ति कोई गीत गुनगुना रहा था। कन्फ्यूशियस ने कहा, भाई मैंने सुना है आप ब्रह्म ज्ञानी हो, हमें भी थोड़ा ब्रह्म का उपदेश दीजिए। उस व्यक्ति ने हंसकर उत्तर दिया, भाई ये बैल ही मेरा ब्रह्म और मेरा परमात्मा है, इसकी सेवा मैं करता हूं, ये मेरी सेवा करता है, बस हम दोनों सुखी हैं, सुखी ब्रह्म है। गुरुदेव बाहर निकले और शिष्यों को संबोधित कर कहा कि ये मध्यम ज्ञानी प्रबुद्ध ग्रस्त के रूप में ये व्यक्ति है।

0: जिसके मन में ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा है, यह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अब फिर वे आगे बढ़े। संत कन्फ्यूशियस ने कहा, संसार की खुली परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्थिति का जितना अच्छा ज्ञान हो सकता है उतना की पुस्तकों के पढ़ने अथवा महात्माओं के प्रवचन से नहीं हो सकता। प्रवचन तो एक व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है और एक व्यक्ति का ज्ञान साधना का निष्कर्ष है। इसलिए संसार को देखो और ये पता लगाओ कि स्पष्ट स्थिति कहाँ है और भ्रम कहाँ है। जो निर्विकार और सही हो उसे बुद्धि अपने आप स्वीकार करेगी, फिर उसे जीवन में धारण करने में कल्याण हो सकता है। इस तरह बातचीत करते हुए संत कन्फ्यूशियस और उनके शिष्य एक बुढ़िया के दरवाजे पर रुके। कई लड़के बुढ़िया के पास आकर शोरगुल कर रहे थे। बुढ़िया चरखा कात रही थी, बीच बीच में किसी बच्चे के मांगने पर पानी पिला देती, कभी किसी नटखट बालक को डांट भी देती, कभी किसी को हंसकर समझाती, फिर बच्चे खेलने लगते तो वो भी अपना चरखा कातने में लग जाती। कन्फ्यूशियस जैसे ही पहुंचे सब लड़के भाग गए। उन्होंने पूछा, माताजी आप कृपा कर ये बताइए कि क्या आपने ईश्वर देखा है? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ बेटा, वो अभी यहीं खेल रहे थे, आपको देखते ही भाग गए। वो निरर्थक शोरगुल, बच्चों का रूठना, मेरा मनाना, फिर हंसी, फिर विनोद, यही तो ईश्वर के स्वरूप हैं जो तुम्हारे यहाँ आते ही चले गए। कन्फ्यूशियस शिष्यों को साथ लेकर घर लौट पड़े। उन्होंने बताया कि निष्काम ज्ञानी के रूप में ये बुढ़िया ही सच्ची ज्ञानी है, जो ज्ञान का संबंध किसी उपयोग या लाभ से नहीं जोड़ती बल्कि उन्मुक्त रहकर स्वयं भी मुक्त भाव का अनुभव करती है तथा निश्चल निष्कपट बच्चों के बीच रहकर आनंदित है और निष्काम प्रेम भावना से उनकी सेवा कर उनके समीप में ईश्वर का अनुभव करती है। अंत में संत कन्फ्यूशियस ने शिष्यों की जिज्ञासा को मिटाते हुए कहा कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने में और संपूर्ण जगत में ईश्वर का अनुभव करे, क्योंकि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, वो सब कुछ देख रहा है, उससे कुछ छिपा नहीं है। ऐसी भावना ही उसके समीप का सुख दे सकती है।
1: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को है। समाचार कुछ क्षणों में आकाशवाणी दिल्ली
2: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासी परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वं अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जा क्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षा निर्माण क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 85th नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूर भाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैलबीज

0: कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य सम्बद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुन्तरान्ता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिन्तां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्राद् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मन्त्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक सन्धेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयु इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतत्पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज, सनी दयानन्दः, तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण

0: बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said that when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi yesterday, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the 2 northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. The centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic, deep fake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovering systems, and unauthorized access to financial and digital services. The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. President Draupadi Murmu will be on a 2-day visit to Uttarakhand beginning today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और 10वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आज से शुरू, पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। वे इस दौरान देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी एनडीए के 198 नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने, युवाओं के कौशल विकास और जल संरक्षण पर जोर देने का आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझी भागीदारी को अनिवार्य बताया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल रात इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए

0: विदेशी प्रतिनिधियों के सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश की लोक कला, आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा,
1: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर अलग अलग सभी देशों के साथ संबंध बनाते हुए एक दूसरे की अनुकूलता का लाभ ले, ऐसे समय में कृषि सेक्टर हमारा राष्ट्रीय एग्रीकल्चर ईयर हमने डिक्लेयर किया।

0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत आयोजित इस 20 मिनट के सत्र में कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने केंद्र की तय समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा कर लिया है और अब प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना, पीएम मित्र पार्क, कौशल विकास और नदी जोड़ो परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा की आपत्ति स्वीकार करते हुए 9 जून को उनका नामांकन रद्द कर दिया था। भाजपा का आरोप था कि नटराजन ने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी थी। प्रदेश से राज्यसभा के लिए भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। कल रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी की 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला के आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में कल भोपाल में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में विधेयक के प्रमुख प्रावधानों, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, गुणवत्ता अनुसंधान और नियामकी सुधारों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मंत्री श्री परमार ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। आज 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। टीकमगढ़ जिले के अस्तोन गांव में कल 3 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिद्ध सागर तालाब में नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में जा फंसे। मृतकों में 12 वर्षीय प्रिंस अहिरवार और 13-13 वर्षीय दीपेश व राज अहिरवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए तीनों परिवारों को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिये हैं। वहीं प्रदेश के युवा अजय अहिरवार ने इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन में ब्रिक लेइंग स्किल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उनका चयन सितंबर 2026 में शंघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन और जून में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ग्लोबल स्किल चैलेंज के लिए भी किया गया है। राज्य कौशल विकास बोर्ड ने उनकी तैयारी के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना

स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे या अपने अंक सुधारना चाहते थे। मंगोलिया के 10 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवास के बाद भगवान बुद्ध के परम शिष्यों सारिपुत्र और महामौत गलायन के पवित्र अवशेष कल भोपाल के राजा भोज विमानतल पहुंचे। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर के गंदन मठ में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने इन अवशेषों के दर्शन किए। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मानसून 17-18 जून को दस्तक देगा और अगले 10 से 15 दिन में पूरे प्रदेश को कवर करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि का अनुमान है, जबकि भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में कल एनआरएलएम आजीविका भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मास्टर वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा में 40 दिवसीय योग अभियान चल रहा है, जिसके तहत योग के महत्व, स्वस्थ जीवन शैली और नियमित योगाभ्यास के लाभों की जानकारी दी जा रही है। खंडवा में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए 6, 7 और 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। आईटीआई इंदौर में एक निजी कंपनी ने तकनीशियन के 50 पदों के लिए युवाओं का चयन किया और केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद दुर्गादास उइके ने बैतूल में 18 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम आध्यात्मिक जागृति से जनजाति समाज का सशक्तिकरण की तैयारियों का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर, देहरादून में एनडीए की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई और 10वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आज से शुरू, पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है हिंदी महक के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ संध्या निगम से।
1: सबसे बड़ा धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र के प्रति प्रेम समर्पित होना है। देश प्रेम पर एक मुक्तक सुनिएगा। समझ लो मेरा महबूब मेरा वतन है, समझ लो मेरा महबूब मेरा वतन है, इसी पर जान दे दूंगी यही यतन है, इसी पर जान दे दूंगी यही यतन है। इश्क करती हूँ अपने देश से, इश्क करती हूँ अपने देश से, बांध रखा माथे पर कफन है, समझ लो मेरा महबूब मेरा वतन है, इसी पर जान दे दूंगी यही यतन है। मैं प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन करती हूँ जिसमें मैंने उषा को नायिका की तरह लिया है।

उस माँ को जैसे अधिपिए हुए। कुछ प्रेम प्रमुख तक पढ़ूंगी। मेरी आंखें तेरी आंखों से कुछ कुछ बात करती हैं, मेरी आंखें तेरी आंखों से।

जो बस इजहार करती है, मेरी आंखें तेरी आंखों से कुछ कुछ बात करती हैं। अब मैं एक मुक्तक और पढ़ूंगी। यहाँ मैं वार्ता है संध्या और चांद की। चांद का कहना है कि मैं कभी तुम्हें देख नहीं पाता, तो क्या कहना है? तुमको लिखी एक पाती तेरी याद बहुत सताती, तुमको लिखी एक पाती तेरी याद बहुत सताती, कहाँ कहाँ ढूंढता रहता हूँ, कहाँ कहाँ ढूंढता रहता हूँ, ना जाने कहाँ छुप जाती है। तो इसके जवाब में संध्या का ये कहना है, शाम का ये कहना है, तुम गगन के चंद्रमा तो मैं धरा की शान हूँ, तुम गगन के चंद्रमा तो मैं धरा की शान हूँ, शोभा होती तेरी मुझसे जब दे देती तुझपे जान हूँ, रात के आगोश में जब मेरा खो जाता ये रूप तब तुम्हें ही देख पाता जग ये तेरा रूप अनूप, क्योंकि जब मैं रात के आगोश में समा जाती हूँ तब तुम दिखाई देते हो क्षितिज पर। अब इस समय तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, तो एक बादल पर रचना जिसका शीर्षक ही बादल है।

देखते हैं ये क्या क्या करते हैं। चलो चलो यार चलो, चलो चलो यार चलो, बादलों के पार चलो, हम भी तो उधर देखे कहाँ क्या छुपाते हैं। चलो चलो यार चलो, बादलों के पार चलो, हम भी तो उधर

0: भला कैसे हरियाली लाते हैं और रखते छुपा के भेद, होता है हमें बड़ा खेद, रखते छुपा के भेद होता हमें बड़ा खेद, जानबूझकर हमें क्यों ये तड़पाते हैं, जानबूझकर ये हमें क्यों तड़पाते हैं, हम भी तो उधर देखे कहाँ क्या छुपाते हैं, बिजली का घर कहाँ कैसे चमकाते हैं, थल पर भला कैसे हरियाली लाते।
1: हिंदी में के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संध्या निगम से उनका काव्य पाठ। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म फिर आई बरसात से, आवाज जगजीत सिंह की, सुदर्शन फकीर का गीत था, कुलदीप सिंह का संगीत। और लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में नौशाद का लिखा हुआ गीत, शकील बदायूनी की रचना है, फिल्म का नाम है जादू।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म काश से। आवाजें हैं किशोर कुमार साधना सरगम की, फारूक कैसर का गीत है, राजेश रोशन का संगीत।

किशोर कुमार साधना सरगम की आवाजों में अभी आपने सुना काशफिल्म का गीत। और लीजिए आप सुनिए विष्णु देवा फिल्म का गीत। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और आशा वसीर की। अनजान का गीत है राजेश रोशन का संगीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

रूठा ना करो। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, आवाज थी किशोर कुमार की, हसरत जयपुरी का गीत था, श्री रामचंद्र का संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सन ऑफ इंडिया फिल्म का गीत, शांति माथुर का आवाज है, शकील बदायूनी की रचना है और नौशाद का संगीत।

शांति माथुर और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना सन ऑफ इंडिया फिल्म का गीत। गीत शकील बदायूनी ने लिखा था और संगीत दिया था नौशाद ने। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज जोन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को है समाचार प्रभात। कुछ ही क्षणों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो के वाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जा

0: सकते हैं।
1: We signed this year a free trade agreement with Europe.
2: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
4: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
3: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन

0: एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में

0: बहुत बहुत नमस्कार हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को। जैसा कि हमारे श्रोताओं को मालूम है कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरा कर रहा है। अभी 8 जून को ही 90 वर्ष पूरे हुए हैं आकाशवाणी के, और आगामी 7 अगस्त को हमारा आकाशवाणी छतरपुर 50 वर्ष पूरे कर रहा है, यानी कि आकाशवाणी छतरपुर का भी गोल्डन जुबली चल रहा है। और ऐसे में ही हम अपने आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में विशेष हस्तियों को हम बुलाते हैं जो अनुभव साझा करते हैं अपने रेडियो से जुड़ी हुई आवाज की दुनिया में, किस तरह से उन्होंने कदम रखा, किस तरह से उन्होंने नाम किया और कैसे श्रोताओं के दिलों की धड़कन बने। तो ऐसे ही हमारे बुंदेलखंड की मधुर आवाज, आकाशवाणी छतरपुर की मधुर आवाज, हमारे आकाशवाणी छतरपुर के पूर्व उद्घोषक श्री राकेश खरे जी को हमने देखिए आज आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: रविन्द्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर माइक्रोफोन से रूबरू करने के लिए, साथ ही हमारे तमाम श्रोताओं से एक बार फिर जोड़ने के लिए।
0: बिल्कुल, देखिए हम कहें ये जो अवसर है 50 वर्ष का और 90 वर्ष का, तो ये केवल देखिए वर्षगांठ नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारी अनगिनत यादें हैं, आवाज है, संस्कृति है, जन सरोकारों का संग्रह है, तो बहुत सारा कलेक्शन है जो 9 दशक कह लें या 5 दशक कह लें, ये कलेक्शन है जो हमारी यादों जहन में पीढ़ियों में बसता है, परंपराओं में रचता बसता है। और आकाशवाणी ने देखिए सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के माध्यम से समाज को दिशा देने का कार्य तो किया ही है, साथ ही बुंदेलखंड की हम बात करें तो यहाँ की लोक संस्कृति, लोक भाषा, कला और जनजीवन को श्रोताओं के दिलों तक पहुँचाया है, उनके दैनिक जीवन में परंपराओं को घोला है आकाशवाणी छतरपुर ने। और हमारे जो आकाशवाणी छतरपुर के पूर्व उद्घोषक हैं, उन्होंने आकाशवाणी छतरपुर की नींव से लेकर और अभी तक का पूरा सुनहरा सफर देखा है, तो उनके स्वागत के लिए पहले तो मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा, उसके बाद हम देखिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे कि 90 वर्षों का गौरव लेकर, 90 वर्षों का गौरव लेकर आकाशवाणी मुस्कुराती है, 50 वर्ष की स्वर्णिम गाथा छतरपुर को गौरव दिलाती है, स्वरों की यह अनुपम धारा पीढ़ी दर पीढ़ी बहती आई, जन जन के मन की धड़कन बन अपनी पहचान बनाई। तो ये है आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार पुनः, और सबसे पहले हम देखिए बातचीत का सिलसिला शुरू करें, तो जैसा कि हमें मालूम है, हमारे श्रोताओं को भी मालूम है कि आपने आकाशवाणी छतरपुर की नींव देखी है, जब से यहाँ शुरू हुआ काम तब से आपकी देखिए यादें बसती हैं, तो शुरुआत से ही ले लेते हैं सन 1976 में, किस तरह से जो आपकी यादें जहन में बसती हैं वो क्या है?
1: देखिए रविन्द्र जी, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। आकाशवाणी छतरपुर का जब ये भवन निर्माण हो रहा था, क्योंकि हमारा घर यहाँ पास था, हम लोग बच्चे थे तो नहीं पता था कि करियर इसी भवन में हमारा होने वाला है, तो जब हम लोग बच्चे थे तो ये भवन बन रहा था, तो हम लोग चोर सिपाही खेलने के लिए इस भवन में आया करते थे।
0: अच्छा,
1: और छिपा करते थे। और ये भी संयोग की बात है कि जिसको हम आकाशवाणी में टॉक स्टूडियो बोलते हैं या वार्ता स्टूडियो बोलते हैं, हम जनरली वहां जाकर छिपा करते थे
0: जहां आज अपन बैठे हैं।
1: जी हाँ। और हमारे साथ एक हमारे मित्र हुआ करते हैं राजकुमार गुप्ता जी,
0: जी।
1: वो उनका भी सिलेक्शन आकाशवाणी में बाद में हुआ, वो इंजीनियरिंग सेक्शन में गए। वो छिपा करते थे अभियांत्रिक जो कक्ष है जिसको अपन कंट्रोल रूम बोलते हैं, कंट्रोल रूम में छिपा करते थे। तो बाद में वो इंजीनियर बने और मुझे उद्घोषक का पद मिला। तो 7 अगस्त 1976 को आकाशवाणी छतरपुर का उद्घाटन हुआ था और मेरे चाचा जी पत्रकार थे तो मैं उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। इसके पहले टेस्टिंग जब हुआ करती थी आकाशवाणी छतरपुर की, तो बड़ी तल्लीनता के साथ उस टेस्टिंग को सुना करता था, उन कार्यक्रमों को सुना करता था, जनरली फिल्मी गीत बजाए जाते थे। तो एक मन में लगन थी कि हमें किसी भी तरह से रेडियो में बोलने का अवसर मिले।
0: जी।
1: और कुछ ईश्वर ने ऐसी बात सुनी कि 7 अगस्त को आकाशवाणी का उद्घाटन हुआ।
0: जी।
1: 9 अगस्त को आकाशवाणी में बालमेला कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी।
0: जी।
1: तो हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी रहे, केंद्र प्रमुख भी रहे हैं, हमारे यहाँ कार्यक्रम प्रमुख भी रहे हैं सुरेंद्र तिवारी।

0: लीजिए
1: जी,
0: वो समय कैजुअल अनाउंसर हुआ करते थे आकाशवाणी छतरपुर में, तो उनसे जब हमारे कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी मिश्रा जी हुआ करती थी उस समय
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि हमें किसी एक ऐसे बच्चे की जरूरत है जो बहुत बोल्ड हो और बालमेला कार्यक्रम में बोल सके। तो चूंकि मैं सुरेंद्र तिवारी जी के साथ कई बार स्टेज परफॉर्मेंस कर चुका था छोटे में
1: जी,
0: मिमिक्री किया करता था, रिकॉर्ड पर डांस किया करता था, तो स्टेज पर जाने का अनुभव था, और चूंकि सुरेंद्र जी को भी पता था कि मैं स्टेज पर जाता हूं, तो उन्होंने कहा कि इनसे अच्छा बच्चा नहीं मिलेगा आपको जो बोल्ड है, जो दर्शकों के बीच पहुंचता है, लोगों को हंसाता है
1: जी।
0: तो उन्होंने फोन करके हमको बुलाया कि रेडियो में बोलोगे
1: जी।
0: तो मुझे लगा जैसे कि आसमान से कोई खुशी हमारी झोली में गिर गई हो
1: जी। जी जी
0: रविंद्र जी, वो दिन वो क्षण आज भी याद आते हैं तो कैसा लगता है, कितना सुखद अनुभव हुआ था वो शब्द सुन के कि रेडियो में बोलोगे
1: जी। जी जी जी
0: मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बुलाएंगे तो मैं जरूर बोलूंगा। तो उन्होंने कहा आकाशवाणी आ जाओ
1: जी,
0: तुम्हारा ऑडिशन होना है।
1: ठीक है,
0: मुझे ऑडिशन की परिभाषा भी नहीं पती थी कि ऑडिशन होता क्या है
1: जी।
0: जब मैंने आया मैंने कहा ऑडिशन होता क्या है, बोले इसको स्वर परीक्षण कहते हैं और ये तुम्हारा अभी इंटरव्यू होगा। और मुझे बुलाया गया और उस समय मैं विविध भारती से बच्चों का कार्यक्रम सुनता था
1: जी।
0: तो कार्यक्रम अधिकारी महोदया ने मुझसे पूछा कभी रेडियो सुना है, मैंने कहा मैं सुनता हूँ। तो बोले अच्छा 15 अगस्त का पर्व आ रहा है, इसमें अपन को कार्यक्रम देना है तो बच्चों को संबोधित करते हुए कैसे बोलोगे। तो मैं शुरू हो गया कि भाई 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, इस दिन ये करते हैं वो करते हैं। बोले बस बस तुम्हारा ऑडिशन हो गया और तुम ऐसा लगता है बहुत अच्छा बोलोगे
1: जी।
0: मैंने कहा प्रयास करूंगा। इसके बाद हम लोग गए, हमारी रिकॉर्डिंग हुई तो वो पहला बालमेला कार्यक्रम 9 अगस्त 1976 को प्रस्तुत करने का अवसर मिला और इसके बाद में बालमेला कार्यक्रम से कंटिन्यू हो गया। बाद में हमारे यहाँ के कार्यक्रम अधिकारी थे, बहुत अनुशासित व्यक्ति कहें और बहुत नॉलेज थी उन्हें कार्यक्रमों की
1: जी।
0: तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अब तुम बालमेला के लायक नहीं हो, युवाणी में आओ। तो मैं युवाणी कंपेयर के मैंने ऑडिशन दिया, पास हो गया
1: जी।
0: युवाणी कंपेयर बना, इसके बाद फिर बाद में कैजुअल अनाउंसर बना। तो ऐसे आकाशवाणी की यात्रा शुरू हुई
1: जी। जी
0: इसके बाद फिर एक ड्रामा यहाँ रिकॉर्ड किया जाना था, उसमें एक छोटा सा रोल था अंग्रेज का
1: जी।
0: तो वो कोई आर्टिस्ट नहीं आ पाए थे शायद, तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि यार ये कौन करेगा, किससे कराएंगे। तो किसी ने हमारा नाम प्रपोज किया कि वो बहुत अच्छी मिमिक्री करता है, उससे ये ड्रामा कराया जाए। तो हमको बुलाया गया, बोले ये रोल कर लोगे, तो हमने कहा देखिए कोशिश करते हैं। और हमने किया तो उन्होंने एक ही बार में हमको ओके कर दिया, बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो अंग्रेज की और तुम बोलो। मैंने कहा मैं ऑडिशन पास नहीं हूं। बोले नहीं नहीं तुम एडहॉक पे काम करो, इसके बाद तुम ऑडिशन के लिए तुम्हारा फॉर्म भरवाते हैं। तो ऐसे करके उस पहली बार ड्रामे में काम करने का अवसर मिला और इसके बाद फिर ऑडिशन के लिए फॉर्म भरा और संयोग से ऑडिशन पास हुए। इसके बाद बी हाई ड्रामा आर्टिस्ट बने
1: जी जी।
0: और ऐसे यात्रा शुरू हुई
1: जी जी।
0: और इसके बाद 91 में फुटबॉल कमेंटेटर के रूप में हम नेशनल पैनल से अप्रूव्ड हुए और फुटबॉल कमेंटेटर के रूप में काम करना शुरू किया, कई बार कई कमेंट्रीज की हैं
1: जी जी। देखिए आपने उनके अनुभव उन्हीं की जुबानी जाने कि देखिए बाल मेला के रूप में देखिए शुरुआत की उन्होंने 9 अगस्त को और किस तरह से उद्घोषक तक की यात्रा उन्होंने तय की। उद्घोषक को हम देखते हैं कि आकाशवाणी क्या की पॉइंट होते हैं, क्योंकि कोई किसी को जाने श्रोता या ना जाने उद्घोषक को जरूर जानते हैं, तो सबकी चाह रहती है कि जो हमारी आवाज है वो लोगों के बीच में जाए। तो जब आपको पहली बार उद्घोषक बनने का मौका मिला और लोगों के बीच में आवाज गई तो वो कैसा क्या अनुभव रहा?
0: बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत पहले से लालसा थी कि हम श्रोताओं से रूबरू हों
1: जी,
0: क्योंकि युवाणी के माध्यम से या अपना एक क्राइटेरिया था कार्यक्रमों का
1: जी।
0: लेकिन उद्घोषक बन के खासकर फरमाइशी कार्यक्रम प्रस्तुत करके एक श्रोताओं से जो जुड़ाव होता है, जो आत्मीयता जुड़ती है, वो बहुत बड़ी होती है। और बड़ा सुखद अनुभव था कि जब हम माइक्रोफोन पर फरमाइशी कार्यक्रम देने के लिए पहुंचे और हमने फरमाइशी कार्यक्रम दिया, बहुत सारे नाम पढ़ते थे और लोग बाग सुनते थे, उनकी फरमाइश पूरी करते थे, उनके गाने देते थे
1: जी।
0: तो एक अपने आप में एक अलग हटके अनुभव हुआ और उस दिन से महसूस हुआ कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ श्रोताओं का बहुत बड़ा परिवार है
1: जी।
0: और हमेशा श्रोताओं को हमने अपना परिवार माना और श्रोताओं से दिली नाता रहा है, क्योंकि हमें श्रोताओं के दिल की बात जानना है कि उनकी च्वाइस क्या है, वो सुनना क्या चाहते हैं
1: जी,
0: किस तरह की उनकी पसंद है और उस पसंद को पूरा करना है। श्रोता और क्या अच्छा से अच्छा करवाना चाहते हैं वो भी बात सुनना है
1: जी,
0: और उनकी उस बात को पूरा करना है
1: बिल्कुल। हेलो फरमाइश हमारा बहुत पुराना कार्यक्रम है
0: जी हाँ,
1: और आपके समय में ही ये शुरू किया।

0: किया गया था और आज भी रेडियो सुनने वाले आपको नाम से जरूर जानते हैं, आज भी याद करते हैं। जब भी देखिए हम भी कार्यक्रम को होस्ट करते हैं तो आपका नाम जरूर लेते हैं, उनको हम सुना करते थे। तो हेलो परमा, इससे जुड़ी हुई यादें और किस तरह से कार्यक्रम शुरू हुआ, किस वातावरण में इस कार्यक्रम को शुरू करना पड़ा, कैसे वो लोकप्रिय हो गया?
1: शुरुआत में जब 2001-2002 की बात है जी, उसके जब ये कार्यक्रम शुरू कर रहे थे तो कहते हैं ना कि जब कोई कार्यक्रम शुरू होता है या कोई नई चीज शुरू होती है तो उसमें कुछ व्यवधान भी आते हैं
0: जी।
1: तो उसमें कुछ व्यवधान भी आए, रिकॉर्डिंग में भी आए, शुरुआत में कुछ कठिनाइयां भी हुई, लेकिन इसके बाद जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो पहले तो पत्रों के माध्यम से, खतों के माध्यम से श्रोताओं की बात हम जानते थे, पढ़ते थे, लेकिन सीधे सीधे श्रोताओं से रूबरू होते थे। और एक अच्छे उद्घोषक को जो दूर बैठा है हमारा श्रोता किस लेवल का है, क्या करता है, ये जानना और उसके लेवल को समझते हुए उसके लेवल की बात उससे करना
0: जी,
1: ये बहुत जरूरी चीज होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि आज एक खेती किसानी से जुड़े व्यक्ति से हम राजनीतिक बात नहीं कर सकते। आज हम खेती किसानी से जुड़े व्यक्ति से खेती किसानी या उसके इंटरेस्ट की बात करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। दूसरी बात, आकाशवाणी जो सुनते हैं, आकाशवाणी की बात करेंगे तो बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे
0: जी।
1: तो इसी तरह का अनुभव होता गया, धीरे धीरे इस कार्यक्रम में निखार आता गया, श्रोताओं की संख्या बढ़ती गई और एक समय ऐसा आ गया कि लोग हेलो फरमाइश का एक घंटे पहले से रेडियो खोल के इंतजार करते थे। दूसरी बात, हमारे जब श्रोता इसमें आते थे तो कुछ हास्य भी हम शामिल करते थे हेलो फरमाइश में, तो हल्के फुल्के हास्य के साथ थोड़ा कार्यक्रम और मजेदार हो जाता था।
0: बिल्कुल, देखिए हम भी आपके श्रोता रहे हैं और हमने भी फोन लगाए हैं
1: जी,
0: और शुरुआत से ही, बचपन से ही रेडियो सुनने का मौका मिला है
1: जी,
0: और आज हमारा देखिए सौभाग्य है आपसे रूबरू हो रहे हैं इस स्टूडियो में। कहते हैं कि आकाशवाणी का बहुत गोल्डन समय रहा, जब भी बात होती है किसी भी पुराने श्रोता से या पूर्व उद्घोषकों से, पूर्व कर्मचारियों से, तो वो क्या गोल्डन समय था, किस तरह से वातावरण रहा करता था?
1: देखिए,
0: लिसनिंग रहती थी,
1: पहले मनोरंजन के दो ही साधन थे
0: जी,
1: या तो रेडियो
0: जी
1: या फिल्म। उस समय फिल्म को इतना प्रमोशंस नहीं मिला था, मतलब पुराने विचारधारा के अनुसार फिल्म देखना, उनका बिगड़ जाओगे फिल्म देखोगे तो
0: जी,
1: जबकि फिल्मों से भी बहुत सारी सीख मिलती थी, देशभक्ति फिल्में आती थी और हर फिल्म एक सीख दे के जाती थी। लेकिन चूंकि लोगों की मानसिकता में था कि भाई फिल्म अच्छी नहीं होती है तो रेडियो घर घर हुआ करते थे। दूसरी बात, जब शादी होती थी तो दो चीजें आदमी को जरूर मिलती थी ससुराल से, एक रेडियो और एक साइकिल। तो रेडियो हर किसी के पास होता था और जब रेडियो होता था और लोग रेडियो सुनते थे तो एक रेडियो के प्रति आकर्षण था लोगों के दिलों में कि रेडियो में कैसे लोग बोलते हैं, कैसे इतना अच्छा बोलते हैं, कैसे इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम देते हैं
0: जी,
1: कैसे नाटक करते हैं। तो लोगों की ये लालसा उन्हें आकाशवाणी छतरपुर के बाहर तक खींच लाती थी। और आपको मैं बता दूं रविंद्र जी, कि गोल्डन युग इसलिए भी कहते हैं कि इतना चार्म था लोगों के दिल में कि आकाशवाणी छतरपुर के गेट के बाहर भीड़ लगी रहती थी।
0: अच्छा,
1: ये देखने के लिए कि भैया सुरेंद्र तिवारी जी कौन है।
0: अच्छा।
1: सुनील केशव देवधर जी कौन है। तो गेट के अंदर आने की परमिशन नहीं होती थी, गार्ड लगी रहती थी, तो गेट के बाहर से ही उनको ये पता लगाते थे कि कौन देवधर जी हैं, कौन राकेश खरे हैं, कौन हर्ष पांडे हैं, कौन अरविंद सोनी जी हैं। तो ये देखने की लालसा लोगों को दूर दूर से आकाशवाणी छतरपुर खींच लाती थी। एक युग वो था
0: जी,
1: मिलना तो बहुत दूर की बात होगी,
0: देखना ही बड़ी बात,
1: देखना बहुत बड़ी बात हुआ करती
0: जी, जी, जी।
1: दूसरी बात कि स्थल रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हम लोगों को कई बार अवसर मिलता था गांव में जाने का या किसी शहर में कंसल्ट होती थी वहां जाने का
0: जी।
1: तो आप यकीन मानिए कि जैसे किसी राजनेता का स्वागत होता है ना, कि द्वार बनाए जाते हैं, गेट बनाए जाते हैं, फूल मालाएं लगाई जाती हैं, वैसा स्वागत आकाशवाणी की टीम का हुआ करता था
0: जी।
1: और लोग मतलब बड़ा भाग्यशाली समझते थे कि आज हमने आकाशवाणी के कर्मचारियों से, आकाशवाणी के उद्घोषकों से या आकाशवाणी के अधिकारियों से, आकाशवाणी के इंजीनियरों से मुलाकात कर ली, हाथ मिलाया। ऑटोग्राफ लोग लेते थे
0: जी,
1: फोटो खिंचाते थे, मोबाइल नहीं था जब, लेकिन इसके बाद फोटोग्राफर को ले आते थे लोग वाक कि हमारी एक फोटो खिंच जाए। तो ये एक जो लोगों के दिलों में चाह थी, एक जो सम्मान था रेडियो के प्रति, वो बहुत बड़ा था।
0: और आज के समय में क्या बदलाव देखते हैं, चूंकि रेडियो का दौर लगातार चलता रहा है और अभी भी लोग सुनते हैं, उतना ही लाभान्वित होते हैं, उतना ही इंटरेस्ट रखते हैं सुनने वाले, तो क्या कहेंगे बदलते समय में?
1: देखिए, रेडियो का दौर तब भी था, रेडियो का दौर अब भी है
0: जी।
1: अब उनके लिए है जो रेडियो को सुनना चाहते हैं,
0: जी
1: जो रेडियो

0: रेडियो को गुनना चाहते हैं या रेडियो से कुछ हासिल करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी बात, आज वो लोग जो समय नहीं दे पाते, जिनके पास समय नहीं है, क्योंकि आज के युग में अगर अपन देखें तो सबसे बड़ी कमी इंसान के जीवन में समय की है।
1: समय की है, सही बात।
0: व्यस्तताएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आदमी समय नहीं निकाल पाता। तो वो कहते हैं कि अब रेडियो, शायद उनको ऐसा महसूस होता है कि रेडियो का युग चला गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि रेडियो का युग आज भी है।
1: आज भी है, बिल्कुल।
0: जो रेडियो से प्रेम करता है, जिसको रेडियो सुनना अच्छा लगता है, वो आज भी रेडियो सुनता है। मैं आपको बता दूं, मेरी माताजी सुबह से रेडियो खोलती हैं, मेरे घर में आज भी रेडियो सुना जाता है। दूसरी बात, मेरे मोहल्ले में कई ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जो आज भी रेडियो तो सुनते ही सुनते हैं, अगर उन्हें मोहल्ले में आना पड़े तो कंधे पे रेडियो टांग के आते हैं, उनका रेडियो बजता रहता है। हाँ, एक बात जरूर है कि आदमी की व्यस्तता के कारण, आदमी के क्योंकि व्यस्तता बढ़ी है, बहुत सारी समस्याएं बढ़ी हैं, मनोरंजन के साधन बढ़े हैं, तो उन सबको देखते हुए ये जरूर है कि लिसनिंग में थोड़ी सी कमी आई है शहरी क्षेत्रों में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में या बड़े बड़े शहरों में जो रेडियो को पसंद करते हैं, वो आज भी रेडियो को पसंद करते हैं। और पहले तो छतरपुर आकाशवाणी का क्राइटेरिया बहुत कम था
1: जी,
0: श्रोता ज्यादा थे।
1: अब
0: क्राइटेरिया बहुत बढ़ गया है क्योंकि मोबाइल में रेडियो है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: आप विदेश में बैठ के भी आकाशवाणी छतरपुर को सुन सकते हैं
1: जी, हाँ जी, हाँ।
0: लेकिन श्रोताओं की संख्या, मैंने आपको जो कारण बताया, उसके कारण कम हुई है
1: जी।
0: और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज मीडिया की इतने सारी चीजें हमारे सामने हैं कि हम खुद ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम टीवी देखें, फिल्म देखें, टॉकीज में जाकर देखें, या रेडियो सुने, या फिर फिल्मी गाने सुने कार में। तो ये सारे कारण हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रेडियो के जो चाहने वाले हैं, रेडियो के जो श्रोता हैं, वो आज भी रेडियो से जुड़े हुए हैं, आज भी रेडियो सुनते हैं। आप खुद ही देखिए कि आकाशवाणी छतरपुर को आदमी कितना सुनता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: आज मेरे ख्याल से पूरे देश में ऐसी कोई स्थान नहीं होगा जहां आकाशवाणी छतरपुर सुना ना जाता हो और आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रमों की समीक्षा न की जाती
1: ना आती हो। सही बात है।
0: तो जब रेडियो लोग नहीं सुनते होते तो समीक्षा कैसे होती?
1: सही बात है।
0: ये थोड़ा सा अंतराल आता है, और ये अंतर जो अंतराल के बाद आया है, तो आप तो जानते हैं कि परिवर्तन तो होता ही है।
1: बिल्कुल।
0: कभी कमी कभी ज्यादा
1: का नियम है।
0: बिल्कुल।
1: और उसके साथ समायोजन करना, देखिए, हम सभी का कर्तव्य, क्या मजबूरी कहें।
0: बिल्कुल।
1: या प्रकृति के साथ चलना ही होता है।

0: चूंकि आप उद्घोषक रहे हैं और उद्घोषक का काम होता है सभा को संचालित करना, ऐसे में जो आकाशवाणी में जो तकनीक है वो बदली, पहले ग्रामोफोन
1: जी,
0: टेप रिकॉर्डर
1: जी,
0: सीडी और फिर पेन ड्राइव और इंटरनेट का समय जो अभी है, तो किस तरह से अपने आप को समायोजन किया, क्या क्या समस्याएं आई और क्या अनुभव रहे इसमें? खासकर देखिए जब ग्रामोफोन चलते थे तो किस तरह से टेक्निकल समस्याएं भी आती थी प्ले करने में, और वो जो घर घर की आवाज है वो भी रेडियो सुनने वाले आज भी पहचानते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप रविंद्र जी, आपको बता दूं कि जैसी जैसी टेक्निक बढ़ती गई है, सुविधाएं बढ़ती गई हैं, समय

0: बचने लगा है। लेकिन वो पुराना युग था, एक युग ऐसा भी था कि ग्रामोफोन से हम प्ले करते थे, रिकॉर्ड बजाते थे, और उसमें रिकॉर्ड बजते बजते क्या होता था कि रिकॉर्ड बजते बजते उसमें धारी आ जाती थी, स्क्रैचेस आ जाते रिकॉर्ड में, तो जब नीडल फंस जाती थी तो जैसे कि एक गाना बज रहा है जवा है मोहब्बत, अब रिकॉर्ड उसमें पद, अब वो बार बार रिकॉर्ड वही है जवा है मोहब्बत जवा है मोहब्बत, तो फिर उसमें धीरे से उंगली लगाना पड़ती थी जिससे कि वो रिकॉर्ड की सुई आगे बढ़ जाए और वो गाना आगे बढ़ जाता था। तो ये सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आती थी। और कई बार ऐसा होता था कि टेप डेक है, टेप डेक से मान लीजिए आठवां कट लगा हुआ है और इसके बाद हमको प्ले करना है, तो आठवां कट वो निकालने में हम लोग व्यस्त हो जाते थे, बड़ी टेंशनाइज हो जाते थे कि वो आठवां कट निकाल के प्ले करना है तो कैसे प्ले होगा टाइमली।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ पहला कट बज रहा है वहां आठवां कट बजाना है, किसी का चौथा कट बजाना है, तो उसमें समय भी लगता था, दिमाग भी लगता था, मेहनत भी लगती थी, लेकिन वो काम कर जाते थे। इसके बाद कंप्यूटर आए, कंप्यूटर से ब्रॉडकास्ट होने लगा, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी, और इसके बाद सीडी प्लेयर्स आए तो उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जैसे कि कभी कभी सीडी डालते थे, पता पड़ा जब गाने प्ले करने के लगाया तो सीडी बाहर हो गई। भाई श्रोताओं को तो पता नहीं, हम उनको कह चुके हैं आइए इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाते हैं, गायक कलाकार हैं, ये गीतकार हैं, ये संगीतकार हैं, और यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती थी, कभी कभी हमें बजाना दूसरा कट है और वो सीडी उचक के पांचवें कट पे पहुंच जाती थी। पता पड़ा हमने मुकेश जी की आवाज में गीत अनाउंस किया और वो लता जी की आवाज में गीत आने लगा। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, ये हमेशा आती रही हैं। और दूसरी बात रविंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जीवन एक परीक्षा है, आपको हर क्षण एक परीक्षा देनी होती है, वो चाहे आप माइक्रोफोन पर बैठ के कार्यक्रम दे रहे हो या निजी जीवन में वाहन चला रहे हो, हर जगह एक परीक्षा है। तो ये परीक्षाएं हैं रविंद्र जी जो लाइफ में आती हैं और उसे फेस करना पड़ता है, और बस हमारी काबिलियत इसी में होती है कि हम वो परीक्षा कितने अच्छे अंकों से पास करते हैं।
1: जी देखिए, नौकरी तो सब लोग करते हैं, कई लोग मजबूरी में करते हैं कि चलिए जीवन यापन करना है तो नौकरी करना है, लेकिन नौकरी को आपने किस तरह से एंजॉय किया, लोग तो गाने सुन के एंजॉय करते हैं, आपने सुना के एंजॉय किया है, तो क्या अनुभव रहे हैं?
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है रविंद्र जी, मैंने नौकरी को कभी नौकरी नहीं समझा जी। बस ये समझा कि ये मेरा कार्य है और मुझे इस कार्य को हंसते हुए और हंसाते हुए पूरा करना है। तो आपने देखा होगा कि जब मैं एक लंबे समय तक आपके साथ भी मैंने काम किया है, जब मैं आकाशवाणी आता था स्टूडियो में जाने के पहले लोगों को हंसाता था,
1: लोगों के चेहरे पे पहले ही मुस्कान आ जाती थी।
0: बिल्कुल, तो कोई ना कोई एक्टिंग, कोई ना कोई मिमिक्री, कोई ना कोई ऐसी बात कि लोग हंसे, लोग हंसते थे, अच्छा लगता था, हमारा भी मूड अच्छा होता था, हम अच्छे मूड से स्टूडियो में कार्यक्रम देने के लिए पहुंचते थे
1: जी।
0: इसके बाद श्रोताओं के बीच आते थे और अच्छा लगता था। तो कोई भी आप काम करते हैं अगर उसको टेंशनाइज मूड में करेंगे या तनावग्रस्त होकर करेंगे तो काम का बोझ आपको दुगना लगेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और यदि किसी भी काम को आप बहुत हल्के हास्यास्पद मूड में लेते हैं, हंस के करते हैं, तो आप यकीन मानिए काम कितना भी गहरा हो आपको वो बहुत हल्का लगने लगे
1: जी जी,
0: और आप कभी उस काम से बोर नहीं होगे और कभी आपको काम बोझ नहीं लगे
1: जी। आपने बहुत सारे गाने सुनाए हैं रेडियो के माध्यम से और आज फिर मौका है श्रोताओं को गाना सुनाने का, तो ऐसा कौन सा गाना आप इस बातचीत के दौरान हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
0: बस एक किशोर साहब का गाना है, किशोर साहब को हम बहुत पसंद करते थे।
1: आप गुनगुना भी बहुत अच्छा लेते हैं।
0: जी गुनगुनाता हूँ
1: जी।
0: लेकिन रविंद्र जी एक गाना है,
1: हाँ।
0: वो हम अपने तमाम श्रोताओं को भी सुनवाना चाहेंगे
1: जी जी,
0: और आपको भी सुनवाना चाहेंगे, हो सकता है आपको अच्छा लगे। किशोर साहब का गाया गाना है
1: स्वागत।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।

0: AIR@90।
1: अब हम जानना चाहेंगे कि विभिन्न कर्मचारी अधिकारी आपके साथ रहे नौकरी के दौरान, क्योंकि आप बहुत छोटे से ही जुड़े हैं, बालमेला कंपेयर से आपने शुरुआत की है, क्या अनुभव रहे अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, आकाशवाणी के साथ? खट्टे मीठे अनुभव बहुत सारे होंगे, अच्छे
2: हर जगह आते हैं। आप कहेंगे परिवार के साथ कैसे अनुभव रहे? तो देखिए, एक शब्द है सामंजस्य। बिल्कुल, आप परिवार में रहते हैं।

0: तो वहां भी सामंजस्य रखना होता है, आप कार्यालय में आते हैं तो वहां भी सामंजस्य रखना होता है। तो एक सामंजस्य से जो जीवन जीता है उसे कहीं किसी कार्यालय या घर में कहीं भी दिक्कत नहीं पड़ती। आज हम सोचें कि हमारी तरह से कार्यालय हो जाए,
1: नहीं
0: वो संभव नहीं हो सकता, या कार्यालय की तरह से हम हो जाए वो भी संभव नहीं हो सकता। एक बीच का रास्ता होता है सामंजस्य। तो सामंजस्य हर अधिकारी की अपनी सोच होती है कि हम किसी भी तरीके से स्टेशन को आगे बढ़ाएं, कार्यक्रमों को अच्छा से अच्छा बनाएं, उस हिसाब से अधिकारी अपना काम करते हैं, हमें अपना काम करना होता है, हमें उनको अपना आउटपुट देना होता है कि हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम उस कार्यक्रम को कितना अच्छा बना पा रहे हैं
1: जी।
0: और उस कार्यक्रम से आकाशवाणी छतरपुर का कितना नाम हो रहा है, उस कार्यक्रम को हमारे श्रोता कितना पसंद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उसमें उस अधिकारी जो हमारे अधिकारी होते हैं उनकी भी इज्जत बढ़ती है, उनको भी शान और गर्व महसूस होता है और वो भी हमें प्रोत्साहित करते हैं अच्छा से और अच्छा करने के।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे अनुभव देखिए आपके हैं। उद्घोषक का कार्य होता है हमारे श्रोताओं का मनोरंजन करवाना, अच्छे मूड के साथ कार्यक्रम को प्रेजेंट करना, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं या कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं कि हमारा मूड सही नहीं होता है और फिर हमें वो ड्यूटी के दौरान श्रोताओं का भी ध्यान रखना है, कार्यक्रमों का भी ध्यान रखना है, तो किस तरह से आप सामंजस्य बिठा देते? और कोई ऐसी आकाशवाणी से जुड़ी हुई याद हो जिसने इस परिस्थिति में आपको डाला हो और आपको कार्यक्रम देना पड़ा?
0: बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई रवि जी, इसमें इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: देखिए मेरी एक सोच रही है कि जब भी आकाशवाणी में आता था तो गेट पर ही सारी समस्याएं सारी चीजें छोड़ देते थे और आकाशवाणी के अंदर आके सिर्फ आकाशवाणी दिखती थी
1: जी।
0: और जब मैं आकाशवाणी से बाहर निकलता था तो फिर उन सारी चीजों को आत्मसात कर लेता था।
1: बिल्कुल।
0: तो आपने कहा ऐसी कई बार ऐसे जीवन में परिस्थितियां आई। एक बार कार्यक्रम दे रहा था, फरमाइशी कार्यक्रम ही चल रहा था
1: जी,
0: मेरा बेटा गिर पड़ा, उसके सर फट गया, 5 टाँके उसके सिर में आए, वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मैं कार्यक्रम दे रहा था तो मैंने तुरंत मैनेज करते हुए बेटे को हॉस्पिटलाइज करवाया दूसरे के माध्यम से और मैंने अपना पूरा ध्यान उस समय कार्यक्रम में लगाया
1: जी जी।
0: उस कार्यक्रम को किसी को भी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे अंदर कौन सा दुख पड़ रहा है, मेरे अंदर कौन सी चिंता है।
1: बिल्कुल।
0: मैंने उस कार्यक्रम को पूर्ण किया। उस कार्यक्रम को पूर्ण करने के बाद हमारे जो सहयोगी ड्यूटी ऑफिसर थे उनके सहयोग से मैं हॉस्पिटल गया, बच्चे को टाके वाके पूरे करवाए, सब कर कुछ करवाए। तो देखिए जो कर्म होता है वो प्रधान होता है। आप जो काम कर रहे हैं और जिस समय कर रहे हैं उस काम को आप पूर्ण करिए, क्योंकि जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वो वापस नहीं आ सकता
1: जी।
0: और अगर हम उसके पीछे भागते हैं तो हमारा ये काम भी डिस्टर्ब होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बेहतर है हम जो काम कर रहे हैं, और ये संदेश तो गीता में भी दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, और आज हम भी कहते हैं कि कर्म सबसे प्रधान है।
1: बिल्कुल।
0: तो आप जो काम करते हैं उस समय आपका दिल दिमाग और ध्यान उस काम में होना चाहिए। जो परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों से निपटा जाता है। एक और आपको अनुभव बता रहा हूं
1: जी।
0: एक बार कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम चल रहा था और आकाशवाणी छतरपुर के पास ही बिजली गिरी टावर पर।
1: अच्छा।
0: बहुत भड़ाक से आवाज आई स्टूडियो के अंदर भी, और स्टूडियो के अंदर भी कुछ इक्विपमेंट हिलके गिर गए। उस समय मैं कार्यक्रम दे रहा था, बाहर स्टूडियो के गैलरी में आवाज आई, अरे बिजली गिर गई, बिजली गिर गई
1: जी।
0: तो हमने कहा भाई हम तो श्रोताओं के लिए कार्यक्रम दे रहे हैं, अब चाहे बिजली गिरे या आसमान गिरे हम बराबर कार्यक्रम देते रहे
1: जी।
0: और उसमें एक दो श्रोताओं के फोन भी हमारे पास उस दौरान आए कि बहुत तेज आवाज कार्यक्रम के मध्य आई। तो जब कार्यक्रम निपट गया और पूरा हो गया हमारा मन भवन, इसके बाद हमने श्रोताओं को बताया कि नहीं बिजली गिरी हुई थी और ऐसे में हम लगातार कंटिन्यू कार्यक्रम दे रहे थे
1: जी जी।
0: तो ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो बीच बीच में आती रहती हैं, लेकिन हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम हम पूरी लगन और धैर्य के साथ पूर्ण करें।
1: उद्घोषक ड्यूटी के अलावा देखिए आपकी स्थल रिकॉर्डिंग भी बहुत हुई है
0: जी।
1: तो स्थल रिकॉर्डिंग में भी बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं
0: जी।
1: तो ऐसे अनुभव जो आपको बार बार याद आते हो, कैसा भी हुआ था?
0: कई बार ऐसा होता है कि हम स्थल रिकॉर्डिंग पे जाते हैं
1: जी।
0: कई बार लोग हमसे ही पूछने लगते थे कि आप आकाशवाणी छतरपुर से आए हैं, राकेश खरे को जानते हैं क्या?
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जानता राकेश खरे को, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो जानने की कोशिश करूंगा। तो बोले बस आप आकाशवाणी छतरपुर में कैसे काम करते हैं जब आप राकेश खरे को ही नहीं जानते? फिर बाद में हंस के उनको बताना पड़ता था भाई मैं ही राकेश खरे हूँ। बड़ी खुशी होती थी उनको, गले मिल जाते थे, अरे साहब आप तो जैसे सुना था आपके बारे में आप वैसे ही निकले। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ही वैसा हूँ। कुछ लोगों को लगता था अरे मैं क्या कर दूं, कैसे इनका स्वागत करूं। तो मैं हमेशा ये श्रोताओं को या जो हमारे स्थल रिकॉर्डिंग पे जहां जाते थे वहां यही अनुभव कराता था कि नहीं मैं एक साधारण इंसान हूँ आपकी तरह, और आपके बीच आया हूँ

0: मुझे कोई विशेष स्वागत की जरूरत नहीं है,
1: जी
0: सामान्य तरीके से ही बैठना चाहता हूँ। लेकिन रविंद्र जी, एक बात जरूर कहूंगा
1: जी,
0: कि आकाशवाणी छतरपुर के माध्यम से बहुत सारे काम हमें करना पड़े। एक बार मेले की कमेंट्री करना पड़ी, वैसे तो मैं फुटबॉल कमेंटेटर हूँ, लेकिन एक बार लाइव तालवीहट मेले की कमेंट्री हमने और हमारे साथ नेशनल कमेंटेटर राजीव मिश्र जी ने और सरिंदर सिंह जी हमारे साथ थे जो हमको फॉलो कर रहे थे और आकाशवाणी के और भी स्टाफ था, लाइव कमेंट्री वो पहली बार एक ऐसा अलग हटके अनुभव था, वो भी मेले की कमेंट्री। लेकिन आप यकीन मानिए कि वो भी कमेंट्री हम लोगों ने लगातार 3 घंटे उस कमेंट्री को बोला था। डायरेक्टरेट के आदेश पर पहली बार स्पोर्ट इवेंट की कमेंट्री हम लोगों ने की थी
1: जी जी,
0: और वो उस कमेंट्री को सराहा भी बहुत गया था, क्योंकि हमने उस कमेंट्री के दौरान 1 सेकंड का भी उसमें पॉज नहीं आया था और हम लोग धारा प्रवाह 3 घंटे दोनों कमेंटेटर्स बोलते रहे और उसको पूरे तालवीहट ने देखा था, सुना था, उन्होंने बहुत सम्मानित किया हम लोगों को और तालवीहट में वो इतिहास की बात हो गई
1: जी।
0: और वो इतिहास बन गया तालवीहट के लिए कि तालवीहट जिला ललितपुर में ऐतिहासिक मेले की कमेंट्री की गई थी
1: जी जी।
0: तो ऐसे बहुत सारे काम आकाशवाणी में हुए हैं जो करना पड़े हैं और करते रहे हैं। हमेशा अच्छा करने का एक स्वप्न था कि आकाशवाणी में हम अच्छा करेंगे।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: देखिए, आपने कमेंट्री की बात की है तो हमारे श्रोता भी एक झलक देखना सुनना चाह रहे होंगे कि किस तरह से आप कमेंट्री करते थे, तो उनको कुछ एक बाकिया कहीं का भी सुना दीजिएगा।
0: देखिए, फुटबॉल कमेंटेटर रहा हूँ और फुटबॉल कमेंट्री बहुत फास्ट होती है रविंद्र जी,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये समझ लीजिए कि आंखें देखती हैं और मुंह बोलता है।
1: हाँ।
0: तो जब हमारे सामने खेल चल रहा होता है, दो टीमें होती हैं, तो सपोज करिए कि छतरपुर की टीम खेल रही है, नीमच की टीम खेल रही है, तो उसमें हमारे सामने खिलाड़ियों की लिस्ट होती है, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की लिस्ट होती है, उनकी पोजीशन वाइज गोल बनाते हैं, उसमें नाम लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी गेंद लेकर आगे बढ़ रहा है, 7 नंबर है, तो 7 नंबर के नीचे उसका नाम लिखा होता है हमारे चार्ट में, तो हमारी आंखें तुरंत देख लेती हैं और बहुत फास्ट आंखें देखती हैं और हमारे मुंह से कमेंट्री निकलती है। बड़ी तेजी के साथ गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स के पास पहुंच गए थे अशोक ने दाने तरफ से पास देने की कोशिश की थी, राजेंद्र आगे बढ़ते हुए बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स के पास पहुंच गए थे, उन्होंने बड़ी तेजी के साथ गेंद को किक किया था, गोलकीपर गोविंद पहले ही तैयार हो चुके थे, गेंद को ट्विस्ट करके उन्होंने गोल एरिया से बाहर जाने दिया था।
1: बिल्कुल,
0: तो ये कमेंट्री का ये स्टाइल होता है।
1: उनको तो मालूम ही होगा कि हमारे आदरणीय राकेश जी कमेंटेटर भी बहुत बढ़िया हैं, जो नए श्रोता हैं वो भी पहचान गए होंगे कि बहुत बढ़िया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बस यही तौर तरीके रहे हैं। इसके अलावा आकाशवाणी में जो सबसे अच्छा अनुभव मुझे हुआ कि आकाशवाणी में बहुत सारे ड्रामे करना पड़े मुझे, ड्रामा ऑडिशन पास हो गया था, नाटक करने पड़े और बड़े टिपिकल रोल मुझे दिए जाते थे, जैसे कि छांट छांट के हमारे भाई साहब थे वरिष्ठ उद्घोषक श्रीयुत श्री हर्ष पांडे जी, तो वो ऐसे छांट के रोल दिया करते थे
1: जो सबसे टफ हो
0: जो कोई ना कर पा रहा हो। आपने सुना होगा वृद्ध के कई बार उन्होंने रोल कराए, सलीम तांगे वाले का रोल कराया, तो ऐसे बहुत सारे रोल, किसी में अंग्रेज का रोल देते थे, किसी में कुछ करते थे, तो हमको भी नए नए चैलेंज स्वीकार करने में बहुत मजा आता था।
1: तो उनकी भी एक झलक हमारे देखे श्रोता सुनना चाहेंगे कि किस तरह से आप ड्रामा में परफॉर्म करते थे
0: जी। हाँ, जैसे आप एक वृद्ध का रोल किया था, एक में लहना सिंह का रोल किया था, उसमें मरने का रोल था वो। हाँ। कि गोली लग जाती है हमको तो कैसे डायलॉग डिलीवरी होती है, वो बहुत कठिन रोल था।
1: बिल्कुल,
0: तो लहना सिंह का रोल हमारे कई श्रोताओं ने सुना होगा। बेटा, अब की बार भी आम बहुत फलेगा बेटा, बेटा दर्द हो रहा रे, थोड़ा ऊपर उठा दे रे
1: जी।
0: ये लहना सिंह का रोल था, मृत्यु अवस्था का। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा रोल है, दादाजी का रोल वृद्धावस्था के किया था वृद्धाश्रम में। बेटा राजेश, ये मत भूल जाना कि तुम्हारा भी एक बेटा है राजू, आज तुम जो कुछ कर रहे हो बेटा, वो तुम्हारा कल का भविष्य है, याद रखना बेटा, जिन्होंने अपने माँ बाप को ठुकराया।

0: ना, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाए। लेकिन तुम जाओ जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब ये वृद्धाश्रम ही मेरा घर है बेटा, यहाँ के लोग ही मेरे सहपाठी हैं। जाओ जाओ घर वापस जाओ।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए ड्रामा आर्टिस्ट रहे हैं। अच्छा, गिली गिली फू एक आपका ड्रामा है और इसमें देखिए नेशनल अवार्ड मिला है, तो ये क्या है गिली गिली फू?
0: गिली गिली फू एक ड्रामा था जो शिक्षा पे आधारित था
1: जी।
0: तो इस गिली गिली फू में मदारी और जमूरे का रोल था
1: जी।
0: मदारी का रोल स्वर्गीय देवेंद्र वासुदेव जी, वो भी नेशनल कमेंटेटर थे फुटबॉल के, बहुत अच्छे ड्रामा आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छी वॉइस थी, आज हमारे बीच नहीं है
1: जी।
0: तो हमारी उनके साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रहा करती थी। हम लोग जैसे आला उदल एक सीरियल किया था, उसमें वो आला बने थे, मैं उदल बना था, तो हम लोगों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहा करती थी
1: जी।
0: तो उसमें अचानक

0: नेशनल कमेंटेटर थे फुटबॉल के, बहुत अच्छे ड्रामा आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छी वॉइस थी, आज हमारे बीच नहीं है
1: जी।
0: तो हमारी उनके साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रहा करती थी। हम लोग जैसे आला उदल एक सीरियल किया था, उसमें वो आला बने थे, मैं उदल बना था, तो हम लोगों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहा करती थी
1: जी।
0: तो उसमें अचानक वो रोल हम लोगों को दिए गए और मैं उस दिन हमारी नाइट ड्यूटी थी, तो मैं नाइट ड्यूटी में 4 बजे करीब यहाँ आया हुआ था और आधे घंटे में उसकी रिकॉर्डिंग हो गई थी। पता नहीं था कि इस ड्रामे को नेशनल अवार्ड मिलने वाला है। वो कहते हैं ना, अचानक जो काम सरलता से होता है उसका ठिकाना नहीं होता कि आपको क्या उपलब्धि दे देगा। तो बस ऐसी ड्यूटी पे आए हुए थे, उन्होंने कहा भाई ड्रामा करना है, फटाफट रिकॉर्डिंग करा लो, इसके बाद चले जाना ड्यूटी पे। तो बस एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में गए, स्क्रिप्ट पढ़ी और शुरू कर दिया। तो उसमें जमूरे का रोल मैंने किया था, वो मदारी का रोल देवेंद्र जी ने किया था। तो जमूरे का रोल था, देवेंद्र जी उसमें बोलते थे ए जमूरे बता मेरे सामने क्या है, देवेंद्र जी की आवाज ऐसी कुछ हुआ करती थी। तो मैं कहता था अरे गुरु जी सामने जो खड़ा है ना, इसकी झोली में कुछ कुछ कोली आ गई गुरु। तो इस तरह का रोल था वो
1: जी।
0: और संयोग की बात है कि आकाशवाणी छतरपुर को नेशनल अवार्ड मिला उस ड्रामे में
1: जी।
0: बेहद खुशी की बात है और हम लोगों के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि हम लोगों के प्रयास से, हम लोगों के काम किए हुए ड्रामे को अवार्ड मिला।
1: समय बदला, पहले देखिए इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे लोगों के पास, तो जो चूंकि आप कंपेयर भी रहे हैं
0: yeah.
1: तो किस तरह से रेडियो में आने के पहले, ड्यूटी में आने के पहले जो तैयारी होती थी वो किस तरह से तैयारी करते थे कंपेयर्स?
0: रविंद्र जी पहले तो हम लोगों को विषय ही आकाशवाणी में आके दिए जाते थे कि तुम्हें चर्चा किस विषय पे करनी है। पहले से कोई विषय या हमको टाइटल नहीं दिए जाते थे,
1: ड्यूटी के दौरान ही मिले
0: जी। हाँ, ड्यूटी पे जब हम आते थे तो हमको 11 बजे कार्यक्रम अधिकारी के पास समक्ष पेश होना पड़ता था। वो हमको शेड्यूल बना के देते थे कि पहले चर्चा होगी इस विषय पे, इसके बाद फिल्मी गाना बजेगा, फिर ये वार्ता होगी, फिर चर्चा होगी। तो जो भी मैटर हमको मिलता था वो आकाशवाणी आकर ही मिलता था
1: जी।
0: और आज तो आपके पास मोबाइल है, नेट है, हम लोगों के पास वो सब नहीं हुआ करता था। उसके लिए हम लोग पहले से अपने दिमाग को दुरुस्त करके रखते थे, यानी पढ़ने का शौक इस मजबूरी के कारण से आ गया। हम लोगों ने पढ़ा बहुत है इस डर के कारण कि चूंकि हम कंपेयर हैं, पता नहीं हमें कौन सा विषय मिलने वाला है। उस दौरान हम लोगों को बहुत से इंटरव्यूज भी लेने होते थे
1: जी।
0: हमारे बीच कोई पर्यावरणविद है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा नेता है, या कोई बड़ा अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, तो बहुत सारे विषयों को हमको पढ़ना पड़ता था। तो हम लोग मेहनत बहुत करते थे, तो आप ये कह लीजिए कि उस समय की कंपेयरिंग मेहनत बहुत करवाती थी
1: जी।
0: तो हम लोगों के दिमाग में इतने सारे विषय हुआ करते थे और फिर कभी दिक्कत पड़ती थी, ऐसा कोई टिपिकल, बहुत टिपिकल विषय मिल जाता था, तो आकाशवाणी लाइब्रेरी से कंसल्ट करते थे, वो बुक्स निकालते थे, उससे जानकारियां हासिल करते थे। फिर भी कोई दिक्कत पड़ती थी तो अपने कार्यक्रम अधिकारी को बताते थे कि सर आप गाइड करिए, इस विषय को हम ज्यादा नहीं जान पा रहे हैं
1: जी।
0: तो हमको हेल्प हो जाती थी और हम लोग कार्यक्रम प्रिपेयर करते थे और शाम को लाइव प्रोग्राम युवाणी देते थे।
1: आकाशवाणी लोक कला परंपरा इसका संरक्षण करती है, खासकर आकाशवाणी छतरपुर बनी है
0: जी।
1: तो बुंदेलखंड की लोक कलाओं संस्कृति परंपराओं का संरक्षण करती है और जो बोली है उसका प्रचार प्रसार करती है, तो आकाशवाणी का कैसा योगदान मानते हैं?
0: देखिए, आदमी ये तो जानता था कि ये हमारे क्षेत्रीय भाषा के लोकगीत है,
1: लोकगीत।
0: आदमी ये नहीं जानता था कि लोकगीत की कितनी शाखाएं हैं, लोकगीत के कितने प्रकार हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो संस्कार गीत होते हैं
1: जी।
0: जैसे आप सोचो कि कुआं पूजन के संस्कार गीत अलग होते हैं, मुंडन का संस्कार गीत अलग होता है, मंडप के संस्कार गीत अलग होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो लोग गीत गाते तो थे परंपरावश,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बुंदेलखंड की बुंदेली लोकगीतों की कौन सी विधा है, इसका क्या तरीका है। बस ये समझ ली कि क्षेत्रीय भाषा के गीत थे तो वो गीत हम गाते।
1: बिल्कुल।
0: रेडियो ने घर घर को ये समझा दिया कि बुंदेली लोकगीत क्या है, बुंदेली लोकगीत की विधाएं कितनी हैं, किस विधा का प्रयोग कब किया जाता है, किस मौसम में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। जैसे आप गर्मी का मौसम चल रहे हैं, आप लमटेरा नहीं गा सकते।
1: बिल्कुल।
0: लमटेरा का आनंद आपको तभी आएगा जबकि मकर संक्रांति या शिवरात्रि का वक्त हो। इसी तरह सैरों है, कजरी है, तो वो जब आसमान में काली काली घटाएं छाती हैं और अब ये गीत बजते हैं
1: तभी आनंद आएगा,
0: तो मौसम का आनंद दुगना बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो लोगों को जो जानकारी रेडियो ने दी है कि किस विधा का गीत है, कब गाया जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका प्रकार क्या है, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने का श्रेय आकाशवाणी छतरपुर को है। दूसरी बात, हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति,

0: कैसे सहेजना है, इसका भी ज्ञान आकाशवाणी छतरपुर ने तमाम श्रोताओं को दिया है और आज भी दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा योगदान है। दूसरी बात, क्षेत्रीय कलाकारों को जो अवसर प्रदान किया आकाशवाणी छतरपुर ने कि आज गांव गांव से आदमी निकल के आकाशवाणी छतरपुर आया और उसने आकाशवाणी छतरपुर में अपनी कला प्रस्तुत की
1: जी।
0: बहुत सारे कलाकारों को बांधा, बहुत सारे कलाकारों को आगे आने का अवसर दिया और आज राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकाशवाणी छतरपुर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये योगदान है आकाशवाणी छतरपुर का।
1: जो हमारा प्रोफेशन होता है, जहां हम काम करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फर्क हमारे परिवार पे, हमारे व्यक्तिगत जीवन पे भी पड़ता है। तो चूंकि आप आकाशवाणी में रहे हैं, लंबे समय रहे हैं, तो यहाँ का जो कार्य अनुभव है और यहाँ जो आपकी ड्यूटी रही है, इसका क्या फर्क पड़ा है आपके व्यक्तिगत जीवन पे, चूंकि संगीत का क्षेत्र रहा है ये।
0: बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात मैंने आपसे कुछ देर पहले करी थी, सामंजस्य। वैसे अगर आप सुनना चाहें तो लाइफ इज ए ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ऑफ टर्न वो टूगेदर, तो सामंजस्य एक ऐसा शब्द है रविंद्र जी कि हर चीज में सामंजस्य जरूरी होता है।
1: बिल्कुल,
0: परिवार के साथ भी। जैसे कभी हमारी नाइट ड्यूटी होती थी, पता पड़ा घर में सब्जी नहीं है और 4 बजे हम ड्यूटी पे आ रहे हैं, शाम की सब्जी ही नहीं है
1: जी।
0: तो वो भी मैनेज करना होता था भाई, दूसरे बंदे को बोलना पड़ता था यार मेरी हेल्प कर। तो एक सामंजस्य के कारण सब सारी चीजें स्थितियां हो जाती हैं। कभी सुबह 5 बजे ड्यूटी होती थी, छोटा बच्चा है, मैडम सो नहीं पा रही है, हमारी पत्नी सो नहीं पा रही है, 12-1 बजे तक बच्चे को सुला रही है, इसके बाद हमारे को ड्यूटी में उठना है, तो हम मना करते थे, नहीं नहीं तुम मत उठो, तुम बच्चे को सुलाती रही हो, तुम लेटो हम उठ के जाएंगे। हम उठते थे, तैयार होते थे, कभी कभी अपने हाथ से चाय भी बना लिया करते थे। तो उसमें आदमी को अपनी बेइज्जती नहीं समझना चाहिए, ईगो नहीं पालना चाहिए। हम ड्यूटी कर रहे हैं, एक सामंजस्य से पूरी लाइफ गुजरती है, नौकरी हो या घर परिवार हो
1: जी। हम देखते हैं कि हम लोग आकाशवाणी में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो कई बार कई अधिकारी कर्मचारियों के घर में भी रेडियो नहीं होता है
0: जी।
1: चूंकि आप आकाशवाणी में रहे हैं, तो क्या आप तो चूंकि इंटरेस्टेड रहे ही हैं गीत संगीत के, रेडियो के, घर परिवार वाले भी सुनते थे?
0: बिल्कुल सुनते थे और ये जानते थे कि जब आवाज रेडियो में आना शुरू हो जाती थी तो समझ जाते थे कि सुरक्षित आकाशवाणी छतरपुर पहुंच गए। दूसरी बात, रात को 11-10 तक आकाशवाणी छतरपुर में ही आप हैं, ये रेडियो खोल के पता किया जा सकता था। तो रेडियो सुनने का भी शौक रहा है घर के लोगों को, और घर के लोग समीक्षा भी बहुत अच्छी किया करते थे
1: जी।
0: जैसे मैं कोई प्रोग्राम देखे जा रहा हूँ या किसी प्रोग्राम में बोल रहा हूँ या कोई नाटक कर रहा हूँ, तो जब घर के लोग सुनते थे और सुनने के बाद समीक्षा किया करते थे, नहीं ये रोल आपने बहुत अच्छा किया या इसमें आपकी एक थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी, तो बड़ा सुन के अच्छा लगता है
1: जी जी।
0: क्योंकि देखिए सिर्फ प्रशंसाएं ही आपके जीवन को नहीं संवार सकती, जब तक आपको आपकी कमी नहीं पता होगी तब तक आप अपने आप को निखार नहीं सकते।
1: सही बात है,
0: और अपनी कमी सुनकर कभी इंसान को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी कमियों को बता रहा है वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा दोस्त है।
1: सही बात,
0: और जो आपकी कमी को बता रहा है, आप उसकी से कमी को सुनोगे, आप अपनी उस कमी को दूर करोगे, तो आप में ही तो निखार आएगा ना।
1: सही बात है,
0: उससे कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने कभी उसको बुरा नहीं माना और बहुत स्वागत किया जिसने मेरी कमियों को बताया और कमियों को दूर किया, दूर करने का प्रयास किया
1: जी,
0: तो निखार हम में ही आया।
1: चूंकि आप पहले आकस्मिक उद्घोषक, आकस्मिक कंपियर के रूप में देखिए आपने काम किया आकाशवाणी छतरपुर में, तो परमानेंट उद्घोषक होने की जो यात्रा है वो किस तरह से रही, क्या अनुभव रहे आपके?
0: देखिए आकस्मिक उद्घोषक के रूप में कार्य करने का एक अलग अनुभव है
1: जी,
0: और जब आप परमानेंट उद्घोषक बनते हैं या नियमित उद्घोषक हो जाते हैं, ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी बात, प्रोडक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, श्रोताओं की भी, अधिकारियों की भी, कर्मचारियों की भी
1: जी।
0: और आप एक ऐसे रथ के सारथी होते हैं जिसे पूरी दुनिया देखती है, सुनती है।
1: बिल्कुल।
0: तो आपके कंधों पे बहुत सारा भार होता है, उस भार को हम कितने अच्छे तरीके से, कितनी सजगता के साथ, कितनी लगन के साथ उठाते हैं, ये अपनी कार्य क्षमता पर निर्भर होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब परमानेंट या नियमित उद्घोषक में बना 25 फरवरी 1997 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कार्यक्रम हमको दिए गए, बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई और एक एक करके हमने उन जिम्मेवारियों का निर्वहन किया
1: जी।
0: और याद आता है एक बाकिया, एक लाइव फोन इन कार्यक्रम भी हम लोग यहाँ करते थे, सदाबहार गीत, तो उसमें पूरी टीम वर्क काम किया करती थी। दो लोग लाइब्रेरी में हुआ करते थे, हम लोग दो लोग जैसे मान लो होस्ट कर रहे हैं कार्यक्रम को, तो हम जैसे ही श्रोता हमको फोन करते थे तो सबसे पहले पूछते थे भाई आप कौन बोल रहे हो, उन्हें कहा मैं राम प्रसाद अहिरवार बोल रहा हूँ ललोनी से। अच्छा राम प्रसाद जी सबसे पहले बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, तो वो राम प्रसाद जी गाना अपनी फरमाइश बताते थे, वो लाइब्रेरी में रेडियो जो रखा रहता था उसमें लोग बाग

0: लेते थे ये कौन सा गाना सुने जाते,
1: ठीक है,
0: तो वो फटाफट वो फिल्म ढूंढ के और निकालने की कोशिश करते थे। तब तक हम रामप्रसाद जी से उनका परिचय प्राप्त करते थे, क्या कर रहे हैं भाई इस समय, क्या मच्छर वच्छर तो नहीं लग रहे हैं यहाँ, कुछ हद पे लेटे हुए हैं तो कैसा अनुभव कर रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है कि नहीं। जब तक रामप्रसाद जी से बात करते थे तब तक वो सामने उद्घोषक के पास सीडी या रिकॉर्ड आ जाता था, वो हमको डन करते थे कि नहीं अब वो गाना हमने फिट कर दिया है, तो फिर कहता फिर हम रामप्रसाद जी से बोलते थे आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। तो बड़ा मजा आता था उसमें, उस प्रोग्राम में
1: जी जी
0: अरविंद सोनी जी, पुरुषोत्तम श्रीवास, श्रीयुत श्रीहर्ष पांडे जी, और कभी कभी इंदिरा मिश्र जी भी पधार जाती थी रात में, तो बड़ा आनंद उठाते थे हम लोग और बहुत हंसी मजाक के दौर में वो कार्यक्रम को पूर्ण करते थे। एक घंटे का कार्यक्रम हुआ करता था और लोगों को भी बड़ा मजा आता था वो कार्यक्रम सुन के
1: जी जी।
0: और बड़ा सौभाग्य समझते थे लोग जिसका फोन उस कार्यक्रम में लग जाता था।
1: कितने वर्ष चला ये कार्यक्रम?
0: ज्यादा समय नहीं चल पाया, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम बनता है तो कुछ ना कुछ व्यवधान बीच में आते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश होते हैं, उन सबका पालन भी करना होता है, और सुरक्षात्मक दृष्टि से भी वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ज्यादा तो नहीं चल पाया। लेकिन जितने कम समय चला वो एक ऐसी अमिट याद छोड़ गया है श्रोताओं के दिलों पे और हम सबके दिलों पे, वो हमेशा याद आता है कि एक सदाबहार गीत कार्यक्रम हम लोग चलाते थे।
1: जी जी जी जी जी। अंत में हमारे सुनने वाले श्रोता आज फिर आपसे रूबरू हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, समस्त सुनने वाले श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए ये तो आकाशवाणी का परिवार है श्रोता, और हमारे सम्मानीय श्रोता एक बार फिर जिनसे रूबरू हो रहे हैं, तमाम श्रोता हमको सुन रहे हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप आकाशवाणी के सम्मानीय श्रोता हैं
1: जी।
0: सिर्फ फरमाइशी नाम ना सुनकर आप हर कार्यक्रम का आनंद उठाइए
1: जी,
0: और हर कार्यक्रम की समीक्षा कीजिए।
1: सही बात है।
0: सिर्फ अपना नाम सुन के नहीं कि हमारी फरमाइश में हमारा नाम बोल गया हमारा काम खत्म हो गया, ना ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं आकाशवाणी के संचालन में। आपके मार्गदर्शन से ही आकाशवाणी चल रही है ये पक्का मान के चलिए। आप सम्मानीय श्रोता भर नहीं है, आप एक मार्गदर्शक भी है। आप कार्यक्रमों को सुनिए, कार्यक्रमों की स्वस्थ समीक्षा कीजिए, आकाशवाणी को अपने सुझाव दीजिए और आकाशवाणी को और अच्छा से अच्छा करने की प्रेरणा भी दीजिए। आपके सहयोग से निसंदेह आकाशवाणी के कार्यक्रमों में निखार आएगा और आकाशवाणी अच्छा से बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास कर सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बीच में थे akashvani@90 और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे बीच में थे आकाशवाणी छतरपुर के पूर्व उद्घोषक श्री राकेश खरे जी। उनसे हम देखिए इतनी सारी बातें कर रहे थे, उनके अनुभव जान रहे थे, और हमारे सुनने वाले श्रोताओं ने जरूर आनंद लिया होगा इस यात्रा का। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी छतरपुर में आने के लिए आपका।
0: रविंद्र जी आपका भी और तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और 90वीं वर्षगांठ आकाशवाणी की और आकाशवाणी छतरपुर की आने वाली 50वीं वर्षगांठ की अग्रिम शुभकामनाएं हमारे तमाम श्रोताओं को। उम्मीद करेंगे इसी तरह से आकाशवाणी से जुड़े रहेंगे और अपना प्यार और स्नेह आकाशवाणी को देते रहेंगे, साथ ही याद रखेंगे अपने प्यार भरा नमस्कार के साथ अपने इस दोस्त राकेश खरे।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी 90 वर्ष के अंतर्गत आकाशवाणी छतरपुर के पूर्व उद्घोषक राकेश खरे से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। नीचे सुनिए बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज हमारी कलाकार हैं रजनी यादव। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं रजनी यादव के स्वर में धुनी भजन।

धुनी भजन अभी आपने सुना रजनी यादव के स्वर में। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में बिलवाड़ी।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
4: बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग का प्रसारण आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज आप सुन रहे हैं रजनी यादव के गाए हुए बुंदेली लोकगीत। आइए सुनते हैं विवाह गारी।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने

विवाह कार्य अभी आपने सुनी रजनी यादव के स्वर में, और लीजिए सुनिए ये बारहमासी लोक रचना।

0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: लोकरंग कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लोकशैली पद गीत रजनी यादव के स्वर में।

लोक शैली बद्ध ये रचना भी आपने सुनी रजनी यादव के स्वर में। इसी के साथ ही बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त होता है। संगत करने वाले कलाकार थे ढोलक पर लक्ष्मण कौर, बैंजो पर लखन वंशकार। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ज़ोन AIR पर हम आकाशवाणी के

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख दिलीप कुमार शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पन्ना जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थल बृहस्पति कुंड में बने नए ग्लास ब्रिज का क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा ने निरीक्षण किया। भगवान श्रीराम के वनगमन पथ और देवगुरु बृहस्पति की तपोस्थली के रूप में पूजनीय इस स्थल पर बना यह ग्लास ब्रिज पर्यटकों को प्रकृति का अनूठा नजारा दिखाएगा। सांसद श्री शर्मा ने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पन्ना को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना के तहत फुलवारी से देवेंद्र नगर के बीच करीब 7 किलोमीटर लंबे नए रेल खंड का रेल संरक्षा आयुक्त ने विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड का ट्रायल भी किया गया। हालांकि खजुराहो पन्ना खंड में रूट डिजाइन में बदलाव के चलते 7 सुरंगें और 10 पुल बनाए जाएंगे, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ने की संभावना है। पन्ना जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पर बीते दिनों एक पेड़ मां के नाम 2.0 महाअभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया गया। पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने अटल पार्क में और पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने बनौली में पौधे लगाए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी की उपस्थिति में 150 फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। पन्ना जिले की शाहनगर ग्राम पंचायत प्रदेश की नंबर 1 स्वावलंबी पंचायत बन गई है। ये पंचायत जल कर, स्वच्छता कर, संपत्ति कर और बाजार बैठकी कर से हर महीने करीब 3 लाख रुपए यानी सालाना 36 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर रही है। पंचायत ने मुख्य बाजार में डिवाइडर युक्त डामर सड़क और सुंदर लाइटिंग भी कराई है। तमोली ग्राम वन समिति के अध्यक्ष अजय चौरसिया की पक्षी संरक्षण की अनूठी पहल पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने सूखी लौकी और प्लाईवुड से प्राकृतिक पक्षी घर तैयार किए हैं, जिसमें आज सैकड़ों पक्षी बसेरा कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश को पर्यावरण प्रेमियों से खूब सराहना मिल रही है। शाहनगर तहसील के सामने कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बीते दिनों किया। तेंदुघाट बांध सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के 4 गांवों के किसानों को 8 साल से मुआवजा न मिलने पर यह प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार ने बताया कि भू अर्जन की फाइल जिला मुख्यालय भेज दी गई है और जल्द ही मुआवजा वितरित किया जाएगा। अजयगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत बिहरपुरवा में मनरेगा कुआं निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरपंच और ठेकेदार सहित 3 जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की है। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद वीडी शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधवाया। भाजपा नेता संजय नागायच को मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुनौर विधायक राजेश वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अंकुर त्रिवेदी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर उषा परमार ने बीते दिनों पवई क्षेत्र का दौरा कर सब जेल, नवनिर्मित सिविल अस्पताल, कस्तूरबा कन्या छात्रावास और जनजाति छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार तलैया ने शाहनगर में सभी प्राचार्यों की आपात समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मानसून से पहले स्कूल भवनों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था और विद्यार्थियों की अपार ID बनाने के काम को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की प्री खरीफ वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में किसानों को खरीफ मौसम में समन्वित खेती, धान की सीधी बुआई, जैव उर्वरकों के उपयोग और मोटे अनाज की खेती अपनाने की सलाह दी गई। विशेषज्ञों ने परंपरागत बीजों के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर और सोनोग्राफी सहित अन्य जाँचें की गयी। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य समय पर पूरा न करने पर कलेक्टर उषा परमार ने 42 प्रगणकों और सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले के शासकीय कार्यालयों में AI टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज कलेक्ट्रेट स्थित ई दक्ष केंद्र में 45 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न विभागों के इन कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी जाएगी। पन्ना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख था दिलीप कुमार शर्मा का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। लीजिए प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

बापूजी की आत्मकथा से आज का प्रसंग है धर्म की झांकी। 6 या 7 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने पढ़ाई की, पर स्कूल में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। यूं कह सकते हैं कि शिक्षकों से जो आसानी से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, फिर भी वातावरण से कुछ न कुछ तो मिलता ही रहा। यहां धर्म का उदार अर्थ करना चाहिए, धर्म अर्थात आत्मबोध, आत्मज्ञान। मैं वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था, इसलिए हवेली में जाने के प्रसंग बार बार आते थे, पर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा। हवेली में चलने वाली अनीति की बातें सुनकर मन उसके प्रति उदासीन बन गया। वहां से मुझे कुछ भी न मिला, पर जो हवेली से न मिला वह मुझे अपनी धाय रंभा से मिला। रंभा हमारे परिवार की पुरानी नौकरानी थी। मुझे तो राम नाम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी। यह जप बहुत समय तक नहीं चला, पर बचपन में जो बीज बोया गया वह नष्ट नहीं हुआ। राम नाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। मैं मानता हूं कि उसके मूल में रंभाबाई का बोया हुआ बीज है। इसी अरसे में मेरे चाचा जी के एक लड़के ने, जो रामायण के भक्त थे, हम दो भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाने की व्यवस्था की। हमने उसे कंठाग्र कर लिया और स्नान के बाद उसके नित्य पाठ का नियम बनाया। जब तक पोरबंदर में रहे यह नियम चला। राजकोट के वातावरण में वह टिक न सका। इस क्रिया के प्रति भी खास श्रद्धा नहीं थी। अपने बड़े भाई के लिए मन में जो आदर था उसके कारण कुछ शुद्ध उच्चारणों के साथ राम रक्षा का पाठ कर पाते हैं, इस अभिमान के कारण पाठ चलता रहा। पर जिस चीज का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वह था रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का थोड़ा समय पोरबंदर में बीता था। वहां वे राम जी के मंदिर में रोज रात के समय रामायण सुनते थे। सुनाने वाले बिलेश्वर के लाधा महाराज नामक एक पंडित थे। वे रामचंद्र जी के परम भक्त थे। उनके बारे में यह कहा जाता था कि उन्हें कोढ़ की बीमारी हुई, तो इसका इलाज करने के बदले उन्होंने बिलेश्वर महादेव पर चढ़े हुए बेलपत्र लेकर कोढ़ वाले अंगों पर बांधे और केवल राम नाम का जप शुरू किया। अंत में उनका कोढ़ जड़ मूल से नष्ट हो गया। यह बात सच हो या न हो, हम सुनने वालों ने तो सच ही मानी। यह भी सच है कि जब लाधा महाराज ने कथा शुरू की तब उनका शरीर बिल्कुल निरोगी था। लाधा महाराज का कंठ मीठा था। वे दोहा चौपाई गाते और अर्थ समझाते थे, स्वयं उसके रस में लीन हो जाते थे, श्रोताजनों को भी लीन कर देते थे।

उस समय मेरी उम्र 13 साल की रही होगी। पर याद पड़ता है कि उनके पाठ में मुझे खूब रस आता था। यह रामायण श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। मैं तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। कुछ महीनों के बाद हम राजकोट आए। वहां रामायण का पाठ नहीं होता था। एकादशी के दिन भागवत जरूर पढ़ी जाती थी। मैं कभी कभी उसे सुनने बैठता था, पर भट्ट जी रस उत्पन्न नहीं कर सके। मैं यह देख सकता हूं कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पाठ से धर्म रस उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने तो उसे गुजराती में बड़े चाव से पढ़ा है, लेकिन 21 दिन के अपने उपवास काल में भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शुभ मुख से मूल संस्कृत के कुछ अंश जब सुने तो ख्याल हुआ कि बचपन में उनके समान भगवत भक्त के मुंह से भागवत सुनी होती तो उस पर उसी उम्र में मेरा गाढ़ प्रेम हो जाता। बचपन में पड़े हुए शुभ अशुभ संस्कार बहुत गहरी जड़ें जमाते हैं, इसी में खूब अनुभव करता हूं, और इस कारण उस उम्र में मुझे कई उत्तम ग्रंथ सुनने का लाभ नहीं मिला, सो अब अखरता है। राजकोट में मुझे अनायास ही सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। मैंने हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय का आदर करना सीखा, क्योंकि माता पिता वैष्णव मंदिर में, शिवालय में और राम मंदिर में भी जाते और हम भाइयों को भी साथ ले जाते या भेजते थे। फिर पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों में से भी कोई न कोई हमेशा आते ही रहते थे। पिताजी उन्हें भिक्षा भी देते थे। वे पिताजी के साथ धर्म और व्यवहार की बातें किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे। वे अपने अपने धर्म की चर्चा करते और पिताजी उनकी बातें सम्मान पूर्वक और अक्सर रसपूर्वक सुना करते। नर्स होने के कारण ऐसी चर्चा के समय में अक्सर हाजिर रहता था। इस सारे वातावरण का प्रभाव मुझ पर पड़ा कि मुझ में सब धर्मों के लिए समान भाव पैदा हो गया। इस तरह यद्यपि दूसरे धर्मों के प्रति संभाव जागा, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुझ में ईश्वर के प्रति आस्था थी। इन्हीं दिनों पिताजी के पुस्तक संग्रह में से मनुस्मृति का भाषांतर मेरे हाथ लगा। उसमें संसार की उत्पत्ति आदि की बातें पढ़ी। उन पर श्रद्धा नहीं जमी। मेरे दूसरे चाचा जी के लड़के की, जिनकी बुद्धि पर मुझे विश्वास था, मैंने अपनी शंकाएं उनके सामने रखी, पर वे मेरा समाधान न कर सके। उन्होंने मुझे उत्तर दिया, सयाने होने पर ऐसे प्रश्नों के उत्तर तुम खुद ही दे सकोगे, बालकों को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। मैं चुप रहा। मैंने यह सोचकर अपने मन को समझा लिया कि किसी दिन बुद्धि खुलेगी, अधिक पढ़ूंगा और समझूंगा। पर एक चीज ने मेरे मन में जड़ जमा ली, यह संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति मात्र का समावेश सत्य में है। सत्य को तो खोजना ही होगा। दिन पर दिन सत्य की महिमा मेरे निकट बढ़ती गई। नीति का एक छप्पर दिल में बस गया। अपकार का बदला अपकार नहीं उपकार ही हो सकता है। यह एक जीवन सूत्र ही बन गया। उसने मुझ पर साम्राज्य चलाना शुरू किया। अपकारी का भरा चाहना और करना, इसका मैं अनुरागी बन गया। इसके अनगिनत प्रयोग किए। उस चमत्कारी छप्पे का भावार्थ कुछ इस तरह था, जो हमें पानी पिलाए उसे हम अच्छा भोजन कराएं, जो आकर हमारे सामने सिर नवाए उसे हम उमंग से दंडवत प्रणाम करें, जो हमारे लिए एक पैसा खर्च करे उसका हम मोहरों की कीमत पर काम कर दें, जो हमारे प्राण बचावे उसका दुख दूर करने के लिए हम अपने प्राण तक निछावर कर दें, जो हमारा उपकार करे उसका तो हमें मन वचन और कर्म से 10 गुना उपकार करना चाहिए, लेकिन जग में सच्चा और सार्थक जीना उसी का है जो अपकार करने वालों के प्रति भी उपकार करता है। अभी आप बापूजी की आत्मकथा से आज का कथानक सुन रहे थे, धर्म की झांकी। और अब बापूजी के प्रिय भजन।

सच्चा व्यक्तित्व अपने को शून्यवत बनाने में है। जीवन का रहस्य निष्काम सेवा है। सबसे ऊंचा आदर्श है कि हम वीतराग बने। अंतर्वाह नियमों का निश्चय प्राय ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से किया है। ऋषि वह है जिसने आत्मानुभव किया है। काम्य कर्म के त्याग को गीता संन्यास कहती है।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: और लीजिए अपनी नरेंद्र चंचल के स्वर में भजन।

नरेंद्र चंचल के स्वर में अभी आपने सुना भजन। इसी के साथ ही गैर फिल्मी भजनों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ोन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

पसंद कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था दो रास्ते से। आवाजन थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी का गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और लीजिए सुनिए महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत। आवाजें एक बार फिर लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी का गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इन दोनों गीतों की पसंद आप सब श्रोताओं की थी। इसके लिए हमें ईमेल मिले हैं, ग्राम बपोस्ट गौना कुसमाड़ा थाना सौजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, राम देवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखन लाल नामदेव, चाहना नामदेव, आकाश नामदेव, रानी परी नामदेव, सुरभि नामदेव, पायल नामदेव और उनके मम्मी पापा ने। दूसरा मेल हमें मिला है राज पैलेस मऊनाथ भजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक, आर्यन वर्मा, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्ण और पीहू स्वर्णकार। ये मेल हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से, सिद्धार्थ गौड़ाने, अर्चना ताई गौड़ाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोडाने ने। ये मेल हमें मिला है, इन्होंने अपना कोई एड्रेस नहीं लिखा लेकिन बता देते हैं, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी ने। ये मेल हमें प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तमन्ना गजभिये ने। इसके अलावा ये मेल हमें मिला है ज्योति नगर नौखा राजस्थान से, पुखराज कैलाश गोवर्धन घनश्याम बाबू गोरी हसन सिक्का ने। ये मेल हमें प्राप्त हुआ है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नशीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौशल ने। इसी गीत के लिए हमें यह पत्र मिला है रजौनी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से, उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, बिमलेश पाल, नीतू पाल, दिव्यांश पाल ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत।

अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं। रघुनाथपुरा जिला श्रीनगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित, खुशी गोस्वामी ने ये मेल हमें मिला है। ज्योतिलिंग ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से राकेश, पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, ओम सेन, कुमारी सपना सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन और उनकी मम्मी पापा ने ये मेल हमें मिला है। गांव नाथना पंजाब से हरजिदन, शिद्दा, जसबीर, जस्सी, सीता और गीता ने ये मेल हमें प्राप्त हुआ है। ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज, ऋषभ मरावी ने ये मेल हमें मिला है। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा ने ये मेल प्राप्त हुआ है हमें। लोलमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से इसके अलावा हमें ये पत्र मिले हैं। तिलक नगर कौच जिला जालौन से अनीसुल्ला मंसूरी, श्रीमती कौशल जहां मंसूरी, समीउल्ला मंसूरी, श्रीमती नसीमा बानो मंसूरी, आलिमा मंसूरी, सहिष्ता मंसूरी, उनके साथियों ने ग्राम खकल तहसील कौच जिला जालौन से दीपक गुर्जर, सत्यम गुर्जर और उनकी मम्मी पापा ने ये पत्र हमें मिला है। ग्राम बुडेरा जिला टीकमगढ़ से श्रीमती सीता असाटी, मुकेश कुमार असाटी ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर चंबल की कसम फिल्म का गीत। साहिर का गीत है खय्याम।

अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं, ग्राम बरछाई थाना नाराहट जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से दिलीप कुमार नामदेव रानी नामदेव ने, भट्टीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कामता देवी गुप्ता ने, गांव नागलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा और उनके साथियों ने, ग्राम बछरई थाना नाराहट जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से दिलीप कुमार नामदेव रानी नामदेव ने, ये मेल मिला है, जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिश्ता मोहम्मद, नसीम पलक लुबाना और यश मंसूरी ने। इसके अलावा हमें इस गीत को के लिए हमें पत्र मिले हैं, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार, मोहम्मद आशिफ ने, प्रमलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजीव भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल प्रीति, अतुल प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने, ग्राम पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीदपुर से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, प्रांशु पाल, निविता पाल ने, मोहाल दीवानपुरा राज से विनोद कुशवाहा, नीरज मयंक, घनश्याम, सावित्री देवी, प्रेम रानी, दिव्या, नीलम देवी ने, ग्राम कटकहा जिला पन्ना से प्रताप सेन, सविता सेन, प्रशांत, नेहा, अम्बेश, कृष्णा, फ्रांसी सेन ने, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लाड़ो कोयल, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर काला पत्थर फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी का गीत है, राजेश रोशन का संगीत।

इसी के साथ ही श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, इंतजार केवल समय का बीतना नहीं बल्कि आशाओं का खिलना भी है। जिस तरह तपती हुई धरती आसमान में उमड़ते बादलों को निहारती है

0: सूखे खेत जिस तरह बारिश की बूंदों के लिए बेचैन रहते हैं, जिस तरह अंधेरी रात भोर की पहली किरण का स्वागत करने के लिए जागती है, जिस तरह बंद कली सूरज की ऊष्मा लेकर मुस्कुराने का इंतजार करती है, हमें मालूम है कि आप भी ठीक उसी तरह अपने पसंदीदा गीत इस कार्यक्रम में सुनने का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये गीत आपके लिए केवल सुर नहीं होते, ये आपके लिए कभी यादों की खुशबू होते हैं, कभी बीते हुए पलों की दस्तक होते हैं, कभी ये गीत दिल की अनकही बातों का आईना होते हैं, तो कभी आपके एहसासों का दरिया होते हैं। तो आपकी फरमाइशों का गुलदस्ता लेकर इस फोन इन कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं। चलिए कुछ पल जिंदगी की भागदौड़ से चुराएं, कुछ पल यादों की गलियों में बिताएं। आइए कुछ पल संगीत की उस नदी में बहें जहां हर लहर एक नया एहसास लेकर आती है। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: धन्यवाद, मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। दीदी,
0: राजेश जी कैसा है देवास और कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, जैसा भोपाल वैसे ही ये है। यहाँ पर बैंक नोट प्रेस है और जैसे माता चामुंडा की वो है पहाड़ी पे
0: जी,
1: और औद्योगिक क्षेत्र है ये।
0: जी जी जी जी, तो राजेश जी कौन सा गीत सुनवाएं आपको
1: आज? गीत ये शिकारी पिक्चर का गीत सुनवा दीजिए, तुमको पिया दिल दिया लता जी और उषा मंगेशकर की आवाज में।
0: क्या बात है,
1: आपका संगीत है,
0: बहुत ही मीठा गीत है लता जी और उषा जी की आवाज में, और मुझे लगता है कि सभी श्रोताओं को भी पसंद आएगा। तो चलिए,
1: हमारे लेटर का ध्यान रखो कि लेटर बहुत कम लिए जा रहे हैं इसमें।
0: चिट्ठियाँ आप लगातार लिखिए, पत्र आपके शामिल होंगे, ठीक है? तो राजेश जी आपने फोन किया, आपका आभार करते हैं और आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, गुरमुख सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम प्रतिया कला, जिला जलंधर, पंजाब से।
0: गुरमुख जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, हम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में।
1: जी मैम, धन्यवाद आपका।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ मैम, रात बारिश भी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, इसलिए अच्छे होकर फोन लग गया है, और भी अच्छे हो।
0: बिल्कुल, यहाँ भी मौसम इसी तरह का है और फोन लग गया, इसलिए हम भी बहुत खुश हैं। तो रेडियो चल
1: जी
0: रहा है आपका, गीत संगीत में रुचि है आपकी बहुत?
1: जी मैम, गीत संगीत खास रफी साहब और लता जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। दुनिया में ना कोई आया ना कोई आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे लता जी और रफी जी की आवाज में, अगर वो आपके पसंदीदा कलाकार हैं तो?
1: दिल का हीरा, मोमी का नाम, एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी।
0: दिल का हीरा, इस फिल्म का गीत,
1: जी मैम,
0: एक पत्थर दिल को, ठीक है। तो चलिए,
1: जी मैम,
0: लता जी और मोहम्मद रफी की आवाज में गाया ये गीत आप तक भेजते हैं, आपके दोनों ही पसंदीदा कलाकार, उनकी आवाजें आप तक पहुंच रही हैं। इसी तरह जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी बिल्कुल मैम, धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए।
1: नमस्ते, गंगा मेहरा बात करें। नमस्ते
0: नमस्ते, नाम एक बार फिर बोलिएगा।
1: गंगा मेहरा।
0: गंगा मेहरा जी, कैसी हैं
1: जी? अच्छे मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। गीत संगीत का शौक रखती हैं
1: जी मैम?
0: किस तरह के गीत पसंद आते हैं आपको?
1: 90 के दशक के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं और ओल्ड भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो ज्यादा नए होते हैं वो थोड़ा अच्छे नहीं लगते।
0: तो मतलब 90s के गीत पसंद करती हैं और जो पुराने गीत हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। तो आज क्या फरमाइश है
1: मैम? मूवी का नाम है देवा।

0: सनम और गाने बोले दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा,
1: दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा, उदित नारायण जी का गाया हुआ गीत। तो चलिए आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए, गुनगुनाइए और इसी तरह खुश रहिए। बहुत बहुत आभार आपने फोन किया।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं इंदौर से जीनत परवीन कोहिनूर कॉलोनी से बोल रही हूँ।
0: जीनत परवीन जी,
1: जी
0: क्या करती हैं आप?
1: बस घर में ही काम।
0: घर का काम करते हुए रेडियो किस तरह से साथ देता है आपका?
1: रेडियो बस साथी है मेरा, और क्या, गाने सुनती रहती हूँ और काम भी निपटाती रहती हूँ।
0: जी, बड़ा अच्छा लगता है ना जब घर में रेडियो गुनगुनाता रहता है और आप डूबे हुए से काम करते रहते हैं, तो काम का पता नहीं चलता कि कितना काम किया, कितना वक्त हुआ, और आप बिल्कुल आनंद के साथ समय गुजरता है ना?
1: जी, अब टीवी में तो क्या बैठ कर देखना पड़ती है, रेडियो में तो गाने सुनते रहो, अपना भी काम निपटाते रहो।
0: बिल्कुल, टीवी देखते हैं तो फिर काम रोकना ही पड़ता है।
1: नीचे देर से आती हूँ, रात को 9 बजे टीवी देखती हूँ, बस 1-1.5 घंटे, फिर सो जाती हूँ 11 बजे।
0: और बाकी पूरे वक्त रेडियो चलता है?
1: जी, पूरे वक्त रेडियो, सब चैनल, कोई भी,
0: जी जी
1: इंदौर है, भोपाल है।
0: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि रेडियो आपका इतना साथ देता है और आप रेडियो का इतना साथ देती हैं। कौन सा गीत सुनेंगी आज?
1: मैं वक्त पिक्चर का सुनना चाहूंगी, ए मेरी जोरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवां, ये वाला,
0: तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। बहुत
1: ही मम्मी और बहनों के लिए डेडिकेट रहेगा क्योंकि वो भी सुनती है।
0: जी,
1: मम्मी का नाम है मंदसौर में रहती, नूर भी,
0: हाँ,
1: अंजुम, गजाला, शम्मी, शाइस्ता, रुखसाना, रोशन।
0: तो चलिए, बहुत ही लोकप्रिय ये गीत है, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: शुक्रिया मैम।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: कालीचरण यादव, ग्राम पंतल बरादरी से।
0: कालीचरण यादव जी कैसे हैं?
1: अच्छी है मैडम जी।
0: रेडियो किस तरह से साथ देता है आपका, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: मैं सब सुनता हूँ, ग्वालियर के आकाशवाणी की तरफ सुनता हूँ, भोपाल के सुनता हूँ।
0: अच्छा,
1: और रेडियो चल रहा है, ग्वालियर चल रहा है, नाम बनता है मेरा।
0: हाँ,
1: नाम बनता है रेडियो
0: जी जी। और
1: ग्वालियर पर बहुत प्राण होता है ग्वालियर ग्रम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, किस तरह के कार्यक्रम पसंद करते हैं?
1: मैं कार्यक्रम आपकी परमाश कार्यक्रम,
0: मतलब फिल्म संगीत में विशेष रुचि है आपकी।
1: भोपाल कार्यक्रम बहुत अच्छे चले, ग्वालियर बंद हो गए कार्यक्रम से चंदा कार्य बहुत परमाश।
0: जी जी, कौन सा गीत सुनवाए आज?
1: गुरा काला पिक्चर सुनवा देना, मुझे जता की आवाज में धीरे धीरे बोल को सुनना ले,
0: धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।
1: जी जी, प्राण गान पसंद है मेरे को।
0: जी जी, तो कालीचरण यादव जी आपने हमें फोन किया, आपका गीत आप तक भेजते हैं, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: धन्यवाद मैडम,
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मेरी बहना।
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: आप कैसे हो बहना मेरी?
0: हम बहुत अच्छे हैं।
1: चलो अच्छा, प्रभु की कृपा है आपके ऊपर।
0: हाँ, हमारे कौन से भाई बोल रहे हैं?
1: मैं आपका एक भाई बोल रहा हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ मैं
0: जी,
1: और मालेगांव से बोल रहा हूँ, तुलसीराम व्यास। पहले रिटायर हो चुका हूँ मैं, शिक्षक था पहले।
0: अच्छा, तो आप
1: अच्छा,
0: शिक्षक
1: रिटायर हो
0: थे।
1: चुके, मैंने पुजारी जी कर काम चालू किया है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: तो क्या करूं इस उम्र में, तो मैं भगवान की सेवा ही करना मेरे लिए सर्वप्रथम है।
0: बिल्कुल, और देखिए ईश्वर का स्मरण तो पूरे जीवन करना चाहिए, है ना?
1: मन नहीं लगता था तो मैंने मंदिर का काम चालू किया है, पुजारी का,
0: जी
1: मंदिर
0: जी
1: की सेवा कर रहा हूँ मैं।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है। और इसके
1: हाँ
0: साथ ही रेडियो भी आपका साथ देता होगा,
1: हाँ
0: जाहिर सी
1: रेडियो तो
0: बात है।
1: मेरा बिल्कुल, मैं 1955 और 56 से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, तो बहुत पुराने श्रोता हुए आप हमारे।
1: हाँ पुराना रेडियो है मैडम।
0: जी जी जी जी
1: आज मेरे पिताजी भी वही सुनते थे, मेरा बालक भी वही सुनता हूँ और मैं भी सुनता हूँ। आकाशवाणी ये आकाश में अमर है और ये सबके दिलों में बसी है आकाशवाणी,
0: बिल्कुल, सबके दिलों में
1: सबके
0: बसी है।
1: दिलों में। और
0: और
1: हमारा एक नीमच में मेरा भाई है, 82 साल का, उनका नाम RC जैन,
0: जी जी
1: वो भी

0: बहुत पुराने गाने के बहुत आशिकर हूँ
1: जी जी। तो देखिए
0: तो आकाश, गाना उन्होंने मुझे दिया है फागुन का,
1: फागुन फिल्म का गीत। कौन सा गीत सुनेंगे?
0: कौन परदेसी मेरा दिल ले गया,
1: एक परदेसी मेरा दिल ले गया, आशा जी का गाया हुआ गीत।
0: बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर है।
1: जी जी,
0: मंदिर में प्रार्थना आपके आकाशवाणी परिवार के लिए रोज करता हूँ सुबह से शाम तक।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर भाव है आपके।
0: मेरा ये आकाशवाणी एक परिवार है मेरा।
1: जी जी, तो इसी तरह से आकाशवाणी से प्रेम बनाकर रखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? नमस्ते मैम, प्रणाम करता हूँ। संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से। कुछ पंक्तियाँ पेश है आप तक और सभी सुनने वाले साथियों तक।
0: जी जी।
1: कहते हैं सुबह सवेरे सूरज आता भाई पूरब में लाली फैलाता, देव प्रकाश की किरणें हमको अंधकार से दूर भगाता।
0: वाह, तो एक जो नया दिन है वो कोरा सा हमारे जीवन में आता है, प्रकाश की भाषा में आता है, और ये आह्वान करता है कि अपनी जिंदगी में जो कुछ हम करें वो

0: प्रकाशमय हो, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: तो संतोष
1: और चंचल और शीतल आवाज की धनी, या यूं कह कि मधुर आवाज की मलिका, आदरणीय मैडम सुनीता सिंह जी को मेरा प्यार भरा अभिवादन भी रहेगा।
0: नमस्कार नमस्कार। तो ये बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है मौसम?
1: जी मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। बताऊँ आपसे मौसम की बातें, लगातार प्री मानसून की गतिविधियाँ हमारे मध्य प्रदेश में जारी है और इस बीच हमारा जो बघेल खंड है, खास करके उमरिया और शहडोल के आसपास, यहाँ पे बादल छाए हुए हैं और हल्की सी मध्यम बारिश हो रही है और अभी हवाएं चल रही है मैडम दिन में।
0: चलिए, तो मतलब मौसम सुहाना है।
1: जी बिल्कुल मैम।
0: तो इस सुहाने से मौसम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी मैम, जब कार्यक्रम चलते हैं ना, कार्यक्रम फोन करने गीत सुने कार्यक्रम बहुत ही अच्छा प्रसारण जाता है। आपका जो कार्यक्रम आता है वतन करा, इतना ऊर्जावान हमें कर देता है, खास करके जब वीर शहीदों की बातें होती है आपके कार्यक्रम के द्वारा संचालित कार्यक्रमों में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्कार भोपाल एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें ज्ञान विज्ञान की बातें होती है, साथ में विशेषज्ञ महोदय अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रोचक और मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारण होते हैं
0: आकाशवाणी
1: मध्य प्रदेश के माध्यम से।
0: संतोष जी, आप बहुत ध्यान से रेडियो सुनते हैं, इस बात का हमें बहुत संतोष है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। कौन सा गीत सुनवाएं आज?
1: मूवी का नाम है धड़कन और बहुत ही प्यारा सा गाना है मैडम, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं।
0: अगर गुनगुना दें दो लाइन तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजाने राहों से मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो यार आते हैं।
0: वाह, बहुत ही सुरीला आपने गाया। तो ये जो स्वर है, ये जो मिठास है, आपकी जिंदगी में बनी रहे। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया।
1: जी मैम, प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में अपने अगले श्रोता का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, मैं जगत सिंह चड़ार ग्राम पिपली अबराई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से बोल रहे हैं मैडम जी।
0: जगत सिंह चड़ार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप रेडियो से जुड़ रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है। गीत संगीत में आपकी रुचि है, जाहिर सी बात है। किस तरह के गीत पसंद करते हैं
1: जी? पुराने गाना अच्छे लगते हैं, ज्यादा पुराने तो नहीं, 19 के अच्छे लगते हैं।
0: 90s के। अच्छा, और क्या करते हैं आप?
1: मैडम जी, हम बैठे ही रहते हैं, दिव्यांग है तो किराने की दुकान चला रहे अपनी।
0: अच्छा, आपकी दुकान है और दुकान के साथ आप रेडियो भी सुनते रहते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं आज, बताइए
1: जी? फूल और कांटे फिल्म का सुना दो, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है।
0: वाह, बहुत ही लोकप्रिय गीत है ये, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है। आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म का नाम है फूल और कांटे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। मैंने प्यार

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नाम बताइएगा अपना।
1: मेरा नाम जीनत अंसारी है, मैं महेश्वर से बोल रही हूँ।
0: जीनत अंसारी, कैसी हैं आप?
1: हाँ मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या करती हैं आप?
1: मैं हैंडलूम का काम करती हूँ।
0: अच्छा, महेश्वर की जो साड़ियाँ हैं वो तो बहुत प्रसिद्ध हैं।
1: हाँ वर्ल्ड फेमस है।
0: बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध हैं, है ना? तो
1: जी।
0: आप एक विरासत को संरक्षित कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो कितने घंटे दिन में काम करना होता है?
1: मैम घर का काम करके जो भी टाइम फ्री मिलता है उसमें कर लेते हैं।
0: अच्छा, और आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी
1: नहीं,
0: सीख रहे
1: बच्चे
0: हैं?
1: अभी छोटे हैं, वो स्कूल जाते हैं।
0: अच्छा, अभी छोटे हैं बच्चे हैं।
1: हाँ
0: अच्छा जीनत जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि कितने दिनों के बाद आपने फोन किया है?
1: जी मैम, मैंने 1 फरवरी को लगाया था।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने तारीख बताई है, इससे हमें बहुत
1: जी
0: सुविधा
1: मुझे
0: हो
1: याद
0: जाती
1: है।
0: है। इससे हमें बहुत सुविधा हो जाती है, अगर श्रोता हमें तारीख बता दें तो हम झट से अपना रजिस्टर पलट कर देख लेते हैं कि हाँ इस तारीख को बात हुई थी और इसके बाद बात नहीं हुई है, तो एक आसानी हो जाती है। तो हमें लगता है कि आपकी बात से हमारे जो दूसरे श्रोता हैं वो भी एक प्रेरणा लेंगे और वो तारीख याद रखेंगे कि किस तारीख को पिछली बार फोन किया था। तो
1: जी
0: जीनत
1: मैम,
0: जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। कौन सा गीत सुनवाए बताइए।
1: मैम मुझे तलाश मूवी का गीत सुनना है,
0: गीत के बोल।
1: यार बदलना जाना मौसम की तरह।
0: यार बदलना जाना मौसम की तरह, बहुत ही खूबसूरत
1: जी
0: गीत। तो चलिए आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत, तलाश फिल्म का। बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: मैम।
0: आपने हमें फोन किया, बहुत शुक्रिया।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने अगले श्रोता का हम। नमस्कार, नाम बताएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपका रेडियो कैसा है?
1: हमारा रेडियो तो बहुत अच्छा है और 90 साल हमारे रेडियो ने जो है पूरा कर लिए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 100 साल पूरे हों, एक शतकीय पारी पूरी हो, है ना?
1: और 150 साल पूरे हो।
0: बिल्कुल, और उसका हम जश्न मनाएं, पहले तो 100 साल का जश्न मनाएं। तो देखिए इतनी लंबी यात्रा।
1: सुनीता जी क्या है
0: जी,
1: ये रेडियो की महत्ता आज भी घटी नहीं है। देखिए इतने साधन हो गए, मोबाइल टीवी, लेकिन रेडियो अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसकी आकाशवाणी अपनी जगह क्लियर है। और आकाशवाणी से कोई भी अभी ऐसा वो नहीं है कि जो आकाशवाणी ना सुनते हों लोग।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी की एक अपनी जगह है जो बनी हुई है, और हमारा तो ये मानना है कि ये जो जगह बनी हुई है ये हमारे श्रोताओं की वजह से बनी हुई है।
1: देखिए श्रोता और आकाशवाणी
0: जी,
1: ये एक दूसरे के पूरक है।
0: हाँ,
1: आकाशवाणी है, श्रोता नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है। और श्रोता है, आकाशवाणी नहीं है, कोई मतलब नहीं।
0: तो चलिए ये जो एक सुंदर यात्रा हम लोग की मिली जुली सी जो चल रही है ये जारी रहे। फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि फरमाइश क्या है आपकी।
1: जी बिल्कुल सुनीता जी, फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियां।
0: गीत के बोल, गीत
1: के बोल है कि आई जवानी मोदी चुनरिया सर से सर की जाए। और ये गीत हमारे प्रेमदास बाबा जी और मांगीलाल चंदेल जी और जो है दिनकर सिंह जी को और विजय कुमार पांडे हो गए और मनीराम पाल जीतन पाल जी को डेडिकेट रहेगा ये गीत।
0: अच्छा, तो कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत है। हम चाह रहे थे कि आप गुनगुना देते दो लाइन।
1: क्या बात है, तो फिर इसी गीत को गुनगुनाऊं कि कोई बुंदेलखंडी गीत
0: नहीं? अरे आपने तो लालच ही दे दिया। तो पहले तो एक बुंदेलखंडी गीत सुनाइए, फिर ये गीत गुनगुनाइए, ताकि फिर हम गाना आपके लिए प्ले करें।
1: बुंदेलखंडी गुनगुना रहा हूँ
0: जी जी।
1: हाय बाले माँ, हाय बाले माँ, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाले माँ। बहुत

0: वाह वाह वाह,
1: बहुत ही मधुर गीत। और देखिए गर्मी की आपने बात की तो यह मौसम कह रहा है कि हाँ अब राहत होने को है, तो हम चाहते हैं कि अपनी फरमाइश भी आप गुनगुना दें, तो हम आपका गीत आप तक भेज दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जय, इधर संभालू गिरे उधर को नांगन सी लहरा।
1: वाह वाह वाह, फूलचंद पाल जी आप बहुत ही सुरीले श्रोता हैं, सुनकर बहुत खुशी हुई हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं।

श्रोताओं, आपकी फरमाइशों ने इस महफिल को सजाया, आपके साथ ने इसे संवारा और आपकी बातों ने इसे यादगार बना दिया। समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन ये धुनें, ये गीत और ये एहसास हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे फूलों के बिछड़ जाने के बाद भी उनकी खुशबू भीतर बनी ही रहती है। तो अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यह उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात दिल्ली में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राणा ने निशानेबाजी में देश को गौरवान्वित किया। उनका निधन भारतीय खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। मैक्सिको में फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच में कल रात मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। कनाडा, मैक्सिको और अमरीका में आयोजित इस विश्व कप में 48 टीमों द्वारा 104 मैच खेले जाएंगे और तुर्की में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय जोड़ी बी धीरज और कुमकुम मोहद ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपके प्यारे प्यारे पत्र हमारे हाथों में हैं और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने चुना है, मन्ना डे की आवाज है, फिल्म का नाम है दिल ही तो है। साहिल लुधियानवी ने गीत लिखा है, संगीत रोशन का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। भोपाल से कुसुम ज्योति अर्जुन परी और इनके परिवार ने सुनना चाहा है ये गीत। मिष्टी लक्ष्मी भूपेंद्र वर्मा इस गीत को पसंद कर रहे हैं। राकेश और डॉक्टर विनोद ने भोपाल से इस गीत को पसंद किया है। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर दिल ही तो है फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, मजरूह के बोल हैं, संगीत मदन मोहन का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर ने अमलेश्वर से ये गीत सुनना चाहा है। दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने इस गीत के लिए हमें पत्र लिखा है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सुरेंद्र और कुसुम भारद्वाज। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं बसंत बहार फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मन्ना डे और भीमसेन जोशी ने। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने राजिम से हमें ये गीत सुनने की ख्वाहिश लिख भेजी है। पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव का पत्र हमें मिला है। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं गुलजार का लिखा नगमा, आवाज भूपेंद्र और सुलक्षणा पंडित की। कानू रॉय ने संगीत तैयार किया है। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश। पसंद आप सब श्रोताओं की। देवास से मनीष, मृत्युंजय, शिखा और पूनम ने इस गीत को सुनना चाहा है। मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न वाल्मीक, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल और अजय खिरोड़कर इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं इन सबके साथ हम भी गृह प्रवेश फिल्म का ये नगमा।

0: हाँ क्यों, क्या किया है मैंने?
1: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से।
0: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जंग लगी तलवार। आज सुनिए इसकी 7वीं कड़ी।
2: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना बलबीर स्वामी दलित बस्ती में सभा को संबोधित करते हुए हड़ताल के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। वो कंपनी को दिए जाने वाले नोटिस को पढ़कर मजदूरों को सुनाता है। मजदूर कहते हैं कि हड़ताल का प्रभाव उल्टा पड़ा तो वे यूनियन नेताओं को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे। यशवंत अकेले में नारायणी के विषय में सोचता है। लिचू और शिबू हड़ताल को लेकर अपने नजरिए से बात करते हैं। यशवंत नारायणी से शिबू का हालचाल पूछता है। नारायणी उसे घर आने के लिए कहती है। लिचू और शिबू दलित मजदूरों की दुर्दशा पर बहस करते हैं। अब

0: हम गरीबों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, इससे तो मरना बेहतर है।
1: नारायणी
0: बोलो।
1: तू ठीक कहती है नारायणी, मैं आभा का तुझ पर बोझ बनकर जी रहा हूँ।
0: नहीं नहीं
1: नारायणी, तू एक काम कर, मेरा गला दबा दे नारायणी, मेरा गला दबा दे। ना रहेगा पास और ना पूछेगी बात।
0: क्या कह रही हैं आप?
1: अरे मैं सच कह रहा हूँ नारायण, अपना ये बोझ अब मुझसे सहन नहीं होता। अरे अब तो मरकर ही शांति मिलेगी।
0: नहीं नहीं ऐसा न कहिए।
1: मुझे मार डाल नारायणी, मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। अरे मुझे मुक्ति दे, मुझे मुक्ति देकर तू भी मुक्त हो जा। जा जा मेरे भाई से।
0: नहीं नहीं नहीं स्वामी नहीं, आपके बिना मैं नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। पति या पंग हो या बीमार, एक औरत का वही सबसे बड़ा सहारा होता है। फिर कभी ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालना, कभी ना निकालना।
1: नारायणी
0: ये क्या, मुन्ना रोने लगा। इसे भी अभी उठना था, मैं क्या करूं? मुझे काम पर जाने को देर हो रही है, क्या करूं मैं?
1: नारायणी नारायणी तू जा, तू जा, मैं इसे चुप करा लूंगा। तू जा।
0: कैसे जाऊं, कैसे जाऊं मैं?
1: चुप करा लूंगा, तू जा, जा।
0: एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है, कैसे जा सकती है? नहीं नहीं जा सकती ऐसे। हाँ मेरे मुन्ने आजा, हाँ बेटा मेरी गोद में आजा, आजा। मत रो मत रो मेरे लाडले, चुप हो जा। ठीक ठीक मैं तुझे नोरी से दाऊंगी, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे क्या तो और जोर से रोने लगा।
1: अरे नारायणी, भूखा बच्चा रोएगा नहीं तो क्या करेगा, क्या हंसेगा, हंसेगा ये?
0: मैं भी क्या करूं, दूध भी खत्म हो गया है, क्या पिलाऊं इसे? हाँ पानी पिला देती हूँ। सुनो, काम से वापस आते समय 5 रुपए का दूध ले आऊंगी, ठीक है ना?
1: ठीक है, अभी तो इसे चुप करा।
0: हाँ पानी पिलाती हूँ, ले ले बेटा पानी पी ले। अरे अरे क्या करूँ मैं, ये तो चुप ही नहीं हो रहा, क्या करूँ मैं?
2: अरे शिभू घर में हो क्या?
1: कौन है भाई?
2: मैं यशवंत।
1: हो यशवंत भाई, आओ आ जाओ अंदर आ जाओ।
3: कैसा है शिबू?
1: अरे यशवंत भाई, लाचार इंसान कैसा हो सकता है? भगवान से दिन रात ये मांगा करता हूँ कि मुझे बहुत दे दे
3: शिबू,
1: बहुत दे दे मुझे। पर नहीं, भगवान गरीबों की फरियाद कहाँ सुनता है?
3: खबरदार शिबू, जब तुम कभी मरने की बात की तो। अरे अभी तो तुझे बरसों जीना है, बरसों, समझा?
4: यशवंत बाबू आप किसी काम से आए थे?
3: हाँ बस तुम लोगों का हालचाल पूछने आया था। एक बात और।
4: कौन सी बात?
3: परसों नोटिस की मियाद खत्म हो रही है, परसों से हड़ताल शुरू होगी, बस यही बताने आया था।
4: हड़ताल? यशवंत बाबू हड़ताल शुरू हो गई तो हम खाएंगे क्या?
3: अब
4: हम तो रोज कुआं खोदकर पीने वालों में से हैं, बिना मजूरी किए तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा ना।
3: तेरी बात में दम है नारायणी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना।
4: हमारे पास खोने के लिए है ही क्या, अपने पेट पर तो हम पत्थर बांध भी ले, पर बच्चों के मुंह से दूध तो नहीं छीन सकते ना।
3: धैर्य से काम ले नारायणी, धैर्य से काम ले। देख इस हड़ताल का नतीजा जरूर अच्छा निकलेगा, और तब तब कोई बेकार नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, सब सब खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा शिबू अब मैं चलता हूँ, दूसरे लोगों को भी ये बात समझा।

0: अच्छा नारायण
1: ठीक है।
2: आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए।
3: सुनो भाइयों, सुनो क्या कह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो।
0: अरे तुम क्या कहना चाहते हो काका, और तुम्हारे हाथ में ये डिब्बा कैसा है?
3: कैसा है डिब्बा? यही तो बताना चाहता हूँ मैं। मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस डिब्बे में अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर डालें।
0: किस लिए काका?
3: अरे परसों से हड़ताल शुरू हो रही है, भगवान ना करे ऐसा दिन आए। मगर जब बच्चे भूख से बिलखने लगेंगे तो इन्हीं पैसों से उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। अरे आओ आओ सभी लोग इस डिब्बे में पैसे डालो।
4: ठगने का धंधा अच्छा बनाया तुमने, क्या समझता है तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे हम लोग?
5: जब डिब्बा भर जाएगा तो इसे लेकर चंपत हो जाओगे। हमें मूर्ख समझ रखा है क्या?
3: नहीं भाइयों नहीं, ना तो मैं ठग हूँ और ना ही बेईमान। मुझे अंदेशा हो रहा है कि हम लोगों पर संकट के बादल छा जाएंगे। हमारे बच्चे भूख से बिलख बिलख कर दम तोड़ देंगे। रोटी के एक एक टुकड़े के लिए इंसानों और जानवरों में लड़ाई होगी। ऐसे बुरे वक्त के लिए मैं तुम लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ भाई।
4: इस बूढ़े का दिमाग फिर गया है, उधर यूनियन वाले चंदा ले रहे हैं। अरे फिरा, अरे चलो चलो भाइयों, अरे चलो अपने काम पर चलो।
3: चले गए, सब चले गए।
0: सब नहीं काका, मैं हूं ना।
3: तू भी चला जा बेटा, जब कोई नहीं रुका तो तू क्यों रुका हुआ है?
0: क्योंकि मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है।
3: सच?
0: हाँ काका। काका मेरी जेब में कुल 2 रुपए हैं, ये मैं आपके डिब्बे में डाल देता हूँ।
3: भगवान तेरा भला करे, औरों को भी इसी तरह सद्बुद्धि दे।

0: मजदूर साथियों, कंपनी को दिए नोटिस की मियाद आज खत्म हो गई। कंपनी के अधिकारियों ने हमारी मांगों को गैर कानूनी ठहरा दिया है। आज से हम हड़ताल पर हैं। आज से काम बंद।
1: काम बंद।
0: सभी मजदूर अपनी एकता का परिचय दें और यूनियन के जलसों और सभाओं में भारी तादाद में हिस्सा लेकर कंपनी को अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर कर दें। सभी लोग नारा लगाएं, मजदूर एकता
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद,
0: मजदूर एकता
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
0: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
3: लो भैया शिवू, अरे हड़ताल शुरू हो गई। कल तक काम ही काम रहता था, मगर अब तो बेकार हो गए। अरे भैया, खाली बैठे बैठे तो समय काटना भी मुश्किल हो गया है।
4: अरे लीचू, मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है भाई।
3: हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए जरूर मुश्किल हो गई है।
5: अरे जगन्नाथ, अरे तू क्या कर रहा है बेटा?
6: बापू देखो, मैंने अपना नाम लिखना भी सीख लिया है।
5: अच्छा,
6: जरा पढ़कर तो देखो, ठीक लिखा है?
4: अरे वाह। अरे क्या तू हमारा नाम भी लिख सकता है? है? लिख सकता है क्या?
6: हाँ।
4: चल रहने दे, हमें कौन सा पढ़ना आता है।
3: हाँ शिवू, जिंदगी में हम दोनों ने अपना नाम भी लिखना नहीं सीखा
4: है। लीचू भैया, हम तो ठहरे अंगूठा टेक। हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है।
3: सही कहते हो भैया।
6: बापू।
3: हाँ क्या है?
6: मैं खेलने जाऊं?
3: आ जा, लेकिन जल्दी लौट आइयो। अच्छा
6: ठीक है बापू।
3: हाँ।

0: हड़ताल से साई नदी कितनी शांत हो गई है ना शिगु। ना लोगों की भागम भाग है, ना क्रेशर की कान फोड़ घर घराहट है, ना कुछ।
1: हाँ, लिचू, ऐसा लगता है जैसे साई भी चैन की सांस ले रही है।
0: हाँ।
1: शांत और निर्मल साई, किसी सपने जैसी।
0: सही कहते हो शिव।
1: ले, भंग हो गई ना साई की शांति, अब नारों का शोर गूंजा करेगा यहाँ।
0: अरे क्या हुआ, ये तो अपना यशवंत है, इसने तो आज खादी का नया कुर्ता पजामा पहन रखा है। खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए इसके पास?
1: अरे यूनियन का चंदा जो जमा हुआ है उसी से खरीदे होंगे और क्या।
0: अच्छा अच्छा, सही कहते हो भैया।
1: चल हम भी चलते हैं, नहीं तो यशवंत हमें गद्दार समझेगा।
0: हाँ ठीक है ठीक है, चल चल चल
1: चल।

0: शाबाश यशवंत शाबाश। जानते हो शास्त्री जी तुमसे बहुत खुश हैं।
1: अरे
0: तुमने जिस तरह से हड़ताल का नेतृत्व किया है उस हिसाब से यूनियन के अध्यक्ष पद की कुर्सी तुमसे बहुत अधिक दिनों तक दूर नहीं रह सकती। शास्त्री जी का भी यही मानना है।
1: मुझे अध्यक्ष पद का कोई लालच नहीं है बलबीर स्वामी। हाँ मैं तो बस उस दिन के इंतजार में हूँ जब कंपनी अपने घुटने टेक देगी और सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। तब किसी मजदूर की छटनी नहीं होगी और सब खुशहाल होंगे।
0: तू चिंता मत कर यशवंत, बस मजदूरों का जोश ठंडा मत पड़ने दे। और भगवान ने चाहा तो कामयाबी जल्दी ही हमारे कदम चूमेगी। जीत हमारी ही होगी यशवंत, जीत हमारी ही होगी। और एक दिन देखना, एक दिन कंपनी को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा।
1: भूखे पेट हड़ताल लंबे समय तक नहीं चल सकती बलबीर। इससे पहले कि मजदूर विवश होकर काम पर लौटना शुरू कर दें, उससे पहले ही फैसला हो जाना चाहिए।
0: तुम इसकी परवाह मत करो यशवंत, शास्त्री जी हाथ पैर मार रहे हैं और जल्द ही उसका परिणाम हम सबके सामने होगा। बस तुम मजदूरों को संभालो।
1: उसकी चिंता तुम मत करो, साइट के सारे मजदूर हमारे साथ हैं।
0: हाँ यशवंत एक बात और।
1: क्या?
0: यूनियन का चंदा खत्म हो रहा है।
1: हाँ?
0: और तुम तो जानते ही हो कि बिना धन के आंदोलन नहीं चल सकता। तुम एक काम करो, तुम मजदूरों से चंदा लेकर यूनियन में जमा करवाओ।
1: लेकिन बलबीर पिछले हफ्ते ही तो मजदूरों ने चंदा दिया था, 10 रुपए हर मजदूर।

0: मजदूर के हिसाब से 4,000 मजदूरों से कुल 40,000 रुपए आए थे। सब इतनी जल्दी खत्म हो गए?
1: देखो शास्त्री जी, मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। हजारों झंडे बैनर भी बनवाने पड़े हैं, क्या इन पर कम खर्च आता है?
0: सो तो ठीक है बलबीर, लेकिन तुमने तो कहा था कि पैसा यूनियन के मुख्यालय से आएगा। तुम्हारी उस जुबान का, तुम्हारे उस वायदे का क्या हुआ?
1: देखो मुख्यालय को लिखा जा चुका है और वहां से पैसा आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हाथ पैर धरे तो बैठा नहीं जा सकता।
0: हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो बलबीर स्वामी।
1: देखो तुम 10 रुपए हर मजदूर से चंदा इकट्ठा करो और यूनियन के कोष में जमा करवाओ, समझे?
0: हाँ समझ गया बलबीर।
2: आराम से।
3: अरे नारायणी, ये तो मुझे कहाँ ले आई?
2: नहा लो ना।
3: नहा लो? पर क्यों? देखो नारायणी, साईं का पानी बहुत ठंडा है, ठंडे पानी से तो मैं अकड़ कर मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा।
2: मत करो, जल्दी से नहा लो। जब तक नहाओगे नहीं मैं बात नहीं करूंगी। हाँ
3: कमाल है, ये भला कैसी जिद है नारायण। देख नारायण, मुझ पर रहम कर, इस ठंडे पानी से मुझे बहुत ठंड लग रहा है। हाँ नारायण, मैं नहीं, मैं नहीं
2: नहाऊंगा। नहाने से डरते हो?
3: नहीं,
2: चलो चलो जल्दी से नहा लो। अरे नहा लो ना, कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी करो।
3: ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। शिव बेटा है, चढ़ जा सूली पर और उतर जा पानी में, भगवान भले करेंगे। उतर जा, अरे बड़ा ठंडा पानी, अरे बहुत ठंडा पानी, बचा, अरे बचा, अरे अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे साईं की धारा मुझे बाहर ले जा रही है, अरे बचाओ,
2: अरे बचाओ, बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, मेरा पति मरा है, कोई मेरी मदद करे, अब मैं क्या करूँ, हे भगवान मैं क्या करूँ, बचाओ, बचाओ, कोई आए मेरी मदद के लिए, मेरे पति को बचाओ, मेरा पति डूब रहा है, बचाओ, बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई तो आए मेरी मदद करने के लिए, बचाओ।
4: अरे चिंता मत करना रानी, मैं अभी जाकर शिव को बचाता हूँ।
2: आजा।
0: अरे ये तो ठंड के मारे अकड़ गया है नारायणी, बीमार आदमी को ठंडे पानी में क्यों नहलाया?
2: तो यशवंत बाबू, 1 महीने से ये नहाए नहीं थे, मारे बदबू के मैं सो नहीं पाती थी, नहलाती नहीं तो और क्या करती।
5: अरे भैया बाबू, ये नारायणी की देह को क्या हो गया है?
6: बेचारी पहले कितनी सुंदर थी, मगर अब उसके हाथ पैर तो देखो, ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लटका हो।
5: अरे भैया बामू, गरीब ना होती तो किसी खूबसूरत रानी से कम ना लगती।
6: अबे चुप, अब क्यों लार टपका रहा है तू?
5: अरे और तू क्यों उसे बार बार देख रहा है? अबे देखता नहीं, यशवंत उसके पति की सेवा कर रहा है, देख ले।
0: तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से।
5: सकले भैया बाबू,
0: बेवकूफ कहीं के। नारायणी इसे मैं कंधे पर उठा लेता हूँ, घर तक छोड़ दूंगा।
2: ठीक है।

0: पहुंच गए नारायणी।
1: यशवंत बाबू हाँ। मैं चारपाई बिछाती हूँ।
0: ठीक है।
1: मैं आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं? आप मेरे पति को उठाकर घर लाए हैं। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी यशवंत बाबू?
0: नारायणी नहीं, ये एहसान नहीं है। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अब तू एक काम कर, तेल ले आ, तो मैं इसके हाथ पैर की मालिश कर दूं, थोड़ी जान आ जाएगी इसमें।
1: यशवंत बाबू, इतनी सेवा तो मैं भी इनकी नहीं।

0: अरे शिव भैया,
1: लिचू भैया,
0: जब से हड़ताल शुरू हुई है जीभ शराब का स्वाद चखने के लिए तरस गई है।
1: अरे हाँ लिचू भैया, अरे भैया हड़ताल से पहले काम करते थे तो 4 पैसे हाथ में होते थे। अरे मगर अब तो बदहाल हो गए।
0: शिव भाई, मेरा तो अब भी यही मानना है इस हड़ताल वड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हड़ताल ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान एक दूसरे का मांस नोच नोच कर खाएंगे।
1: हाँ हाँ लिचू भैया, सच कहता है तू, बिल्कुल सच कहता है।

0: अल्लाह, अब तो गिद्धों और चीरों ने भी मंडराना शुरू कर दिया है।
1: हाँ, शायद इन्हें भी आभास हो गया है शिवू के थोड़े दिनों बाद यहाँ पर इंसानी लाशों के ढेर लड़ने शुरू हो जाएंगे।
2: अरे तभी तो भोजन की तलाश में ये यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं।
0: शिवू, कैसा दृश्य होगा, भूख से मरने वाले इंसानों का मांस नोच नोच कर परिंदे अपना पेट भरेंगे।
2: अरे ना, ना रे निखिल, ना, मत बोल ऐसा। अरे मत बोल, भगवान ना करे ऐसा हो। अरे लिचू, क्या पता उन लाशों में मेरी और तेरी लाश भी हो।
1: अरे अच्छा ही तो है शिवू, कम से कम मरकर परिंदों का पेट तो भर सकेंगे। अरे अब जिंदा भी हैं तो किसी जानवर से बदतर जीवन जी रहे हैं शिवू, बदतर जीवन।
2: हाँ लेचू, हाँ मैं जानता हूँ, हम सभी जानते हैं। और देखा नहीं तूने, अरे साहब लोगों के कुत्तों को भी दूध भात खाने को मिलता है, और एक एक हम हैं। अरे हमें तो सड़ा भात भी नसीब नहीं होता।
0: अरे क्या, अरे शिवू,
2: सच कहता हूँ मैं। अरे नारायण, अरे तू भाग कर क्यों आ रही है? अरे बोल ना, क्या बात है?
3: मेरे पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। ये लो 5 रुपए, लिच्चू के सजा कर दूध ले आओ। मुन्ना उठे तो उसे पिला देना, मैं चलती हूँ।
2: अरे पर सुन तो सही, तू जा कहाँ रही है?
3: देखो बड़ी मुश्किल से आज के दिन साहब के घर में काम मिला है, मुझे साहब के घर वापस जाना है। 2 बाल्टी कपड़े निकाल रखे हैं, उन्होंने ये रुपए दिए हैं। देखो तुम जल्दी से जाकर दूध ले आओ, बच्चे के पेट में कुछ तो जाए। मैं वापस जा रही हूँ, बच्चे का ध्यान रखना, दूध जरूर पिला देना उसे।
2: हाँ हाँ तू जा, मैं देख लूंगा।
0: शिवू, शिवू चल उठ, मेरा सहारा ले ले। अरे बच्चे को दूध देकर हम खलासी के लंगर तक जा सकते हैं।
2: खलासी लंगर?
0: अरे वाह, क्या मजे की बात कही है तूने।
2: अरे बात सुन, देख 1 रुपए का तो दूध आ जाएगा, हाँ, बाकी बचे 4 रुपए।
0: अरे 4 रुपए में तो शिवू हम दोनों छक जाएंगे।
2: हाँ वाह वाह। अरे अच्छा एक बात तो बता लीजू, हाँ, क्या वो आजकल भी खलासी लंगर में साइकिल की ट्यूब में भरकर बरेली के बाजार से शराब आती है?
0: अरे आती क्यों नहीं है मेरे भाई, आती क्यों नहीं है?
2: उन्हें भूखे थोड़े ही मरना है जो अपना धंधा बंद करेंगे।
0: ठीक कहता है तो।
2: अच्छा सुन, सुना है कि वो लोग साई नदी के मेंढक और केंचुए भी सड़ाते हैं।
0: अरे बिल्कुल ठीक सुना है शिवू, बिल्कुल ठीक। शराब का धंधा करने वाले भी क्या क्या तमाशा करता है शिवू। अच्छा? साहब लोगों के घरों से विलायती शराब की बोतलें इकट्ठी करते हैं, फिर उसमें मेंढक और केंचुए सड़ाते हैं।
2: अच्छा?
0: और बाद में उसमें देशी शराब का घोल डाल देते
2: हैं। और हम लोग उसे चटकारे ले लेकर पीते हैं।

0: अरे वाह,
1: मजा भी तो खूब देती है वो।
2: अच्छा जल्दी चल, जल्दी चल, बच्चा उठ गया तो शामत आ जाएगी।
3: अरे हाँ, अरे
2: सब खेत बिगड़ जाएगा।
3: हाँ,
2: हम दोनों को साथ देखकर वैसे भी लोगों के पेट में दर्द तो होने लगता है।
1: ये
2: हाँ,
0: अरे मेरा हाथ तो पकड़। चल चल, आ जा।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीला होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत जंग लगी तलवार की 7वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के दौरान 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। इसमें कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल के आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से मुकाबला होगा। और 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। इंग्लैंड वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय महिला टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

जीवन की सुगंध का आनंद तो वही ले सकता है जो खिलने और बिखरने वाले पलों के बीच महकने की काबिलियत रखता है। तो चलिए अलसाई सी इस दोपहर के खूबसूरत से पलों में हम लेकर एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा। तो स्वीकार कीजिए हिमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई, वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई, बचपन की मासूमियत न जाने कहां छूट गई। बहनों, हर बच्चा मुस्कुराना चाहता है, पढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, मगर कई बार गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, कोई मजबूरी या विपरीत परिस्थितियों के कारण बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। उनसे उनकी मासूमियत मानो रूठ सी जाती है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बाल मजदूरी को पूरी तरह से बंद करने के लिए दुनिया भर में बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों से वंचित होने से बचाना है। इस दिन का उद्देश्य समाज को यह समझाना है कि बच्चों से मजदूरी कराना गैर कानूनी है, अमानवीय है। बचपन में बच्चों को पढ़ने लिखने और खेलने का अधिकार मिलना चाहिए, न कि उन्हें आर्थिक तंगी के कारण जोखिम भरे काम करना चाहिए। हर बाल श्रम से जुड़ा बच्चा यही महसूस करता है कि बहुत खूबसूरत था ये महसूस ही न हुआ, बहुत खूबसूरत था ये महसूस ही न हुआ, कब कहां और कैसे छूट गया बचपन। यह दिन बाल श्रम से जुड़ी समस्याओं जैसे गरीबी और अशिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। बाल श्रम का अर्थ ऐसे शारीरिक अमानवीय कार्यों से है जो बच्चों के बचपन, उनकी क्षमता और गरिमा को छीनते हैं। यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। बहनों, बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, मगर इसे जड़ से खत्म करने के लिए हमें भी अपने कर्तव्य निभाने होंगे। बाल मजदूरी न करवाएं और न ही इनका समर्थन करें। बाल मजदूरी कराने वालों के प्रति शिकायत दर्ज कराएं। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करें। लोगों को भी बाल श्रम के खिलाफ जागरूक करें। बच्चों को उनकी उमंग और मस्तियों में उड़ने देना चाहिए, ताकि वे विकास करें, आगे बढ़ें और समाज के विकास में सहयोग देकर लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बने। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, लौटकर बचपन के फिर वो जमाने नहीं आते। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, मगर बहुत खूबसूरत होता है किसी के लिए जरूरी होना।

0: अभी बहने सुन रही थी गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। जिंदगी की जंग में खुद की ढाल बनो, जिंदगी की जंग में खुद की ढाल बनो, मुसीबत के आगे कभी ना मलाल करो, सीखो तुम आत्मरक्षा के हुनर यहाँ, ताकि खुद पर तुम हमेशा एतबार करो। हाँ बहनों, हमारा जीवन अनमोल है और इसीलिए इसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। अपने मान सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा। आत्मरक्षा केवल शारीरिक कौशल नहीं, बल्कि यह सुरक्षा, आत्मविश्वास और मानसिक जागरूकता का मूल मंत्र है। यह हुनर किसी भी आपातकालीन परिस्थिति या खतरे के समय स्वयं की रक्षा करने और बिना डरे जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। वास्तव में जटिल परिस्थिति में स्वयं की रक्षा का सशक्त माध्यम है सेल्फ डिफेंस। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम आत्मरक्षा के गुण सीखें और खुद को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रखें। आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स जैसे प्रशिक्षण ले सकती हैं, साथ ही परिस्थिति के अनुसार आप हिम्मत से काम लेते हुए आत्मरक्षा कर सकती हैं। सेल्फ डिफेंस हमें शारीरिक मानसिक रूप से खतरे के लिए तैयार रखता है। सतर्कता, जागरूकता, सही समय पर सही निर्णय और निडरता से हम आत्मरक्षा कर सकते हैं। आत्मरक्षा सीखने से आप बिना डरे कहीं भी आ जा सकती हैं। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। तो बहनों, आत्मरक्षा का हुनर जरूर सीखिए और जीवन को सरल, सुरक्षित बनाइए और निडर होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। सेल्फ डिफेंस सम्मान से जीने की आजादी देता है, वहीं आत्मरक्षा साहस और जागरूकता का प्रतीक है। यह केवल शारीरिक बचाव नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की ढाल है। छोड़कर उम्मीदें गैरों से मदद की मुसीबत की घड़ी में आत्मरक्षा का हुनर भी जरूरी है। पलक पर अगर हो आंसू तो ये नहीं काफी, इन्हें शब्दों में पिरोने का हुनर भी आना चाहिए। हाँ बहनों, अपने हुनर से समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को शब्दों में पिरोकर रचनाओं के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हैं कवयित्री बहन। तो लीजिए सुनिए ये काव्य पाठ। कवयित्री बहन है डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला।
1: मेरी एक कविता है जिसका की शीर्षक है स्तब्ध। ये कविता मैंने लिखी है जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती हमारी गर्म हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, नदियां तरताल सूख रहे हैं, तो इसमें ये बहुत ही कम शब्दों में बड़ा संदेश देने वाली कविता है। और आखिरी के चार लाइनों में आप देखेंगे कि आप क्या करिए जिससे कि आप धरती की मदद कर सकें। तो ध्यान चाहूंगी तो सुनिएगा। तप्त स्तब्ध धरा प्रारब्ध, मानव तृप्त करे संतृप्त, जलता अलाव गई शीतल छांव, हरियाली लुप्त खुशहाली विलुप्त, तपती बयार झुलसा संसार, यूं कहां गया मां का दुलार, सूखी नदियां सूखे तरताल, यूं उठा बवाल जीवन बेहाल, कर दे उद्धार कर ले उपकार, यूं दोहन छोड़ यूं मुह न मोड़, करना विक्षिप्त अपना भविष्य, तू हाथ बढ़ा कुछ कर भला। तो ये एक कविता है जो धरती माँ को बचाने, उसका दोहन बचाने का आह्वान करती है। यह कविता मैंने लिखी है सर्कस के बारे में। जिंदगी को एक सर्कस की तरह मैंने इस कविता में बताया है, तो सुनिएगा। सर्कस, जिंदगी एक सर्कस है, सब नाच रहे हैं कमर कस, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, चाह कर भी चले न बस, कहीं बंदर कूदनी कहीं हवा में झूलनी,

कहीं बंदर कूदनी, कहीं हवा में झूलनी, कहीं धीमा कहीं एकदम तेज, सावधान कहीं गिरना नहीं, कहीं एक तार पे चलना कहीं मुंह से आग उगलना, कहीं एक तार पे चलना कहीं मुंह से आग उगलना, कभी टूटे कांच पे चलना, जीवन भी तो है ऐसा ही खेल। कोई हाथ बिना गाड़ी चलाए, कोई हाथ बिना गाड़ी चलाए, जैसे हर मुश्किल को ठेंगा दिखलाए। जिंदगी एक लंबा सर्कस, वो एक मदारी सबको नाच नचाए। कौन कहां पर कैसे करतब दिखलाएगा, इसका लेख जन्म से ही सब लिख कर लाए। सब मिलकर खेलेंगे खेल, सब मिलकर खेलेंगे खेल, जो गिरा वो निकले पर खेल चले, जो गिरा वो निकले पर खेल चले, जो बचा वो पूरी लगन से खेले, जो बचा वो पूरी लगन से खेले, अगले पल उसका भी निकास चले, अगले पल उसका भी निकास चले। क्योंकि जिंदगी एक सर्कस है, सब नाच रहे हैं कमर कस, कोई कभी ऊपर कभी कोई नीचे, चाह कर भी चले न बस, जिंदगी एक सर्कस। ये मेरी एक कविता है, हरी चूड़ियां। हम अक्सर देखते हैं हमारे समाज में लड़कियां आज भी दहेज की आग में जलाई जा रही हैं, या किसी न किसी तरीके से सताई जा रही हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से। तो ये एक लड़की का संकल्प बताती हुई कविता है कि अगर ऐसी कंडीशन या ऐसी परिस्थिति में वो फंस जाए तो उसको कैसे आगे चलना चाहिए। तो ध्यान चाहूंगी, हरी चूड़ियां। हरी थी चूड़ियां, हरी थी धरती, हरी थी चूड़ियां, हरी थी धरती, गांव का उसके वो खेत भी तो था हरा, हरी खनखनाती पहने थी वो चूड़ियां, लेकर चली मन में ससुराल का सपना भी हरा, लेकर चली मन में ससुराल का सपना भी हरा। नववधू के कुछ दिन तो खुशियों में निकल गए, नववधू के कुछ दिन तो खुशियों में निकल गए, उन हरी चूड़ियों की खनक से गूंज गए, पर ससुराल का सावन वैसा अल्हड़ ना था, वो मायके के आंगन जैसा मदमस्त ना था, उसमें माँ बाप के प्यार की झिड़की ना थी, उसमें माँ बाप के प्यार की झिड़की ना थी, मेहंदी भी अब की बार रंग चढ़ी ना थी, पिया की फीकी बातों जैसी ही थी, पिया की फीकी बातों जैसी ही थी, सासू माँ के तानों से जैसे रंग उसका उड़ गया था। हरी थी चूड़ियां, हरी थी धरती, रंग उड़कर अब फिर वैसा नहीं चढ़ेगा, रंग उड़कर अब फिर वैसा नहीं चढ़ेगा, मन की गांठों के अंदर कहीं छुपा होगा शायद, मन की गांठों के अंदर कहीं छुपा होगा शायद, दहेज की आग में हरियाली खो गई, जलती देह में कई जख्म जगमगा गई, दहेज की आग में हरियाली कहीं खो गई, जलती देह में कई जख्म जगमगा गई, बोली बाबा अब ना मैं फिर हरी चूड़ियों को पहनूंगी, बोली बाबा अब ना मैं फिर हरी चूड़ियों को पहनूंगी, कमजोर मन और तन में अब ज्वाला भर लूंगी, कमजोर मन और तन में अब ज्वाला भर लूंगी, मुझे कोई अब दहेज के लिए जला न सकेगा, मुझे कोई अब दहेज के लिए जला न सकेगा, लाख कोशिश करे जमाना ये मुझे अब दबा न सकेगा, लाख कोशिश करे जमाना ये मुझे अब दबा न सकेगा। एक कविता ये मेरी है, अच्छा ही हुआ। कविता का शीर्षक है अच्छा ही हुआ। कई बार हम जिंदगी में सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, कुछ लोगों ने हमें सहारा नहीं दिया, या कुछ हमारे साथियों ने हमारी मदद नहीं की, या हमारे किसी सीनियर ऑफिसर ने हमारा फेवर नहीं किया, हमारी मदद नहीं की, तो हम बड़ा दुख फील करते हैं। मगर आप कभी पीछे पलट के अपनी जिंदगी को देखिएगा कि अगर आप मेहनत करते रहें, ईमानदारी से चलते रहें, तो आपके साथ अच्छा ही होता है। तो ध्यान चाहूंगी, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया, अच्छा ही हुआ उन्होंने मुंह मोड़ लिया, अच्छा ही हुआ उन्होंने मुंह मोड़ लिया, जिनको हम चाह किए, जिनको हम चाह किए, क्योंकि कुछ और भी प्यारे रिश्ते बन गए, क्योंकि कुछ और भी प्यारे रिश्ते बन गए, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी दोस्ती ठुकरा दी,

अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी दोस्ती ठुकरा दी। अपनेपन की खोज में अब कुछ नए दोस्त बन गए। अपनेपन की खोज में अब कुछ नए दोस्त बन गए। अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला। अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी इज्जत ना की। अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी इज्जत ना की। हम इतने समझदार हो गए कि इज्जत करने का सलीका आ गया। हम इतने समझदार हो गए कि इज्जत करने का सलीका आ गया।

0: आया, अपने को इतना तपाया कि बाजार में बेशकीमती हीरे से हो गए, कि बाजार में बेशकीमती हीरे से हो गए। अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा, सहारा न मिला। मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया।
1: अभी बहनें सुन रही थी काव्य पाठ। कवयित्री बहन थी आराधना सिंह बुंदेला। ख्वाहिशों के काफिले भी अजीब होते हैं, ख्वाहिशों के काफिले भी अजीब होते हैं, ये वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते।

अभी बहनें सुन रही थी कन्यादान फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का। बहनों, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए साक्षरता बहुत जरूरी है। वहीं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त होने के लिए बहुत जरूरी है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता यानी धन को समझने और उसके प्रबंधन की बुनियादी कला। इसके माध्यम से महिलाएं अपने धन को सोच समझकर कमाना, खर्च करना, बचाना और निवेश करना सीख सकती हैं। यह कौशल हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाता है। वित्तीय साक्षरता हमें आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। वित्तीय साक्षरता के प्रमुख स्तंभ हैं जैसे कमाई, बजट बनाना, बचत करना और उधार प्रबंधन। बहनों, वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें समझदार वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती है, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाती है, बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल लेनदेन की शर्तों को समझने से वहीं हम धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं या सुरक्षित रह सकते हैं। महंगाई से निपटने और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित जीवन जीने के लिए भी निवेश जरूरी है। साथ ही वित्तीय साक्षरता से हमें आर्थिक तनाव से मुक्ति मिलती है और सही बजट और बचत से हमें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। वित्तीय साक्षरता वास्तव में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की रीढ़ है। वित्तीय ज्ञान महिलाओं को नए व्यवसाय शुरू करने और धन सृजन के अवसरों को जानने में मदद करता है। बढ़ती उम्र या किसी अनहोनी की स्थिति में यह ज्ञान एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है। जब बहनें आर्थिक रूप से जागरूक होती हैं, तो वे घर का बजट बेहतर तरीके से चलाती हैं और संकट के समय के लिए बेहतर बचत कर पाती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से साक्षर और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो बहनों, वित्तीय साक्षरता से अपना जीवन खुशहाल बनाएं और सशक्त बने और निरंतर सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए समाज के लिए प्रेरणा बने। जो पैसों का मोल समझे वही सुरक्षित अपना कल करे, वित्तीय ज्ञान की शक्ति से हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे। बहनों, आज हम आर्थिक रूप से भले ही सशक्त हों, मगर बहुत कुछ पाने की चाह में हम मानो मुस्कुराना ही भूल गए हैं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहती हैं, जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहती हैं, तो हर पल मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। कभी चुपके से मुस्कुराकर तो देखना, कभी चुपके से मुस्कुराकर तो देखना, दिल पर लगे पहरे हटाकर तो देखना। ये जिंदगी भी आपके साथ साथ मुस्कुरा उठेगी, खुद पर कुछ लम्हे लुटाकर तो देखना। और बहनों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो बशीर बद्र साहब के इसी ख्याल के साथ कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो अगली मुलाकात तक के लिए अब अनुमति दीजिए हेमलता खरे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
4: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

0: नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में लीजिए पहले सुनिए कृष्ण मोहन नायक के स्वर में योग गीत।

अभी आप सुन रहे थे जयंत विश्वकर्मा के स्वर में प्राणायाम गीत। इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सोनाली जलोटा के गाए गीत।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म चलते चलते का गीत। बोल अमित खन्ना के हैं, संगीत है बप्पी लहरी का।

कभी कभी। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है, ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इन मसौदा नियमों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। जनता इन पर अपने विचार, टिप्पणियां और सुझाव 27 मई तक सरकार को भेज सकती हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा कि सुधार पिछले कई वर्षो में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकेंगे। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये

दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रहलाद जोशी ने आज खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके नामांकन पत्र रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी। प्रदेश में मॉनसून 17 से 18 जून के बीच राज्य के दक्षिणी जिलों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। पन्ना जिले में नेशनल हाईवे 39 पर बीती रात एक सड़क हादसे में अजयगढ़ थाने में तैनात 26 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। शिवपुरी के कोलारस में कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वेयर हाउस परिसर में कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से बड़ी मात्रा में उर्वरक जब्त कर FIR दर्ज की गई है। भोपाल में आधी रात पटाखा दुकान में भड़की भीषण आग पर दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना में लाखों का माल जलकर राख हो गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज

संवाददाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल

0: द्रौपदी मुर्मू आज दो दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का सातवां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत

0: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24,00,000 रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कैनेडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कैनेडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात

0: मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और अभी आप सुन रहे थे समाचारों की श्रृंखला। 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम का, तो आइए आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम को।

0: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुषमा आपके साथ और कार्यक्रम में सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और मेरे साथ साथ मेरे साथी भी हैं, उनका भी परिचय।
1: मैं विनोद कुमार और हर बार की तरह हम कोई ना कोई नई चीजें अपने किसान साथियों के लिए लेके आते हैं और आज उसी पे बात करेंगे।
0: बिल्कुल विनोद, उसी पर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं हमारे किसानों के लिए, चाहे वो नई नई जानकारी हो, खेती की बात हो, नई नई मशीनों की बात हो या फिर खाद की भी बात हो।
1: बिल्कुल।
0: और खाद, आजकल असली खाद पर भी हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि नकली खाद बाजार में बहुत आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखें किसान भाई बहन।
1: बिल्कुल, उसमें हमें ध्यान ये देना है। और दूसरा एक चीज और भी है, उसमें हम समय
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज आशा भोसले की है। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और इसे संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म सनम तेरी कसम का ये गीत।

ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, महाराष्ट्र बीड़ शहर से प्रकाश पागरिया, पराग पागरिया, प्रदीप और केशव पटेल। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म त्रिशूल का गीत। आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशुदास की हैं, बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का। लीजिए सुनिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। आप सभी ने सुनना चाहा है साहिर का लिखा, खयाम का संगीत से सजाया हुआ गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है चंबल की कसम। लीजिए सुनिए।

आप तो ऐसे ना थे। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बोल निदा फाजली के हैं और संगीत है उषा खन्ना का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। भाटापारा से ही दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत। धुर्रा बांधा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये गीत।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म धनवान का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। गीत लिखा है साहिर ने और इसे संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजा रामनगर देवास से ही राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल। सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज सनी। जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और कालू भैया। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल, गोविंद, सालग्राम और दशरथ। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म धनवान का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक

बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्यप्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेडियो संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। और मौसम विभाग ने आज भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। शाम 6:00 सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर।

रात 8 बजे सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास इज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम खेल जगत में रात 9:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप इस विषय पर प्राची तिवारी की वार्ता।

और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा रानू मजूमदार का राग सरस्वती में बांसुरी वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में विविध कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मिनवेव 494 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में न्यूज हेडलाइंस कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे और उसके बाद आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही आप सुनेंगे युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीपटेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मेक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर बच्चे की शिक्षा सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेशवासियों से बाल श्रम से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उन्होंने मध्यप्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। और 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। भारतीय टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के खास युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना मित्र अनुपम खरे, लेकर आया हूं आज का युववाणी कार्यक्रम। साथियों आज के कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, साथ ही होगी वार्ता और होंगे मनोरंजन के लिए गीत भी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारी इस चर्चा के साथ, जिसका विषय है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि हर साल हम 12 जून को पूरे विश्व में मनाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य बालकों के अधिकारों की रक्षा करना है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के अवसर प्रदान करना है। बाल श्रम गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी से उत्पन्न होता है। इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। ILO ने सन 1999 में वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 182 को अपनाया था। आखिर बाल श्रम का अर्थ क्या है, जिसे करने के लिए बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, जो उसकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है, जो उसकी आयु के अनुपात के अत्यधिक कठिन, खतरनाक या शोषणकारी होता है। 5 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चे जब ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य या विकास को बाधित करते हैं, तो वह बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव भी हैं, जैसे शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीबी उन्मूलन, गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता, जागरूकता अभियान, लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों से अवगत कराना, कानूनों का सख्त प्रवर्तन, बाल श्रम में संलग्न नियोक्ताओं पर कठोर कार्रवाई, स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी यानी NGO और नागरिक समाज का सहयोग भी जरूरी है। साथियों ये तो थी एक छोटी सी जानकारी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं वार्ता की ओर, जिसमें वार्ता का विषय है पत्रकारिता में युवाओं की सहभागिता, जिसमें वार्ताकार हैं अरविंद्र प्रजापति। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पत्रकारिता क्षेत्र में रोजगार और विभिन्न कोर्स। आकाश की तरंगों पर आप सुन रहे हैं एक विशेष प्रस्तुति। आज की हमारी वार्ता का विषय है पत्रकारिता क्षेत्र में रोजगार और विभिन्न कोर्स। बदलते समय में पत्रकारिता केवल समाचार पढ़ने या अखबार छापने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह समाज

की चेतना लोकतंत्र की आवाज और डिजिटल युग का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है। आइए इसी रोचक संसार की यात्रा पर चलते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ संवाद की आवश्यकता भी बढ़ती गई। पहले संदेश कबूतरों से भेजे जाते थे, फिर चिट्ठियां आईं, उसके बाद रेडियो, अखबार, टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक छोटे से मोबाइल स्क्रीन में समेट दिया है। पत्रकारिता समाज का दर्पण कही जाती है। यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती बल्कि जनता को जागरूक करने, शासन और समाज के बीच सेतु बनाने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य भी करती है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है, इसमें रोजगार के असीम अवसर मौजूद हैं। यदि किसी व्यक्ति में लेखन क्षमता, बोलने का आत्मविश्वास, जिज्ञासा, रचनात्मकता, समाज के प्रति संवेदनशीलता है, उसके लिए सुनहरे भविष्य का द्वार खोल सकती है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाचारों, विचारों, सूचनाओं और घटनाओं को विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचाया जाता है। पत्रकारिता के मुख्य उद्देश्य हैं सूचना देना, जैसे शिक्षित करना, मनोरंजन करना, जनमत तैयार करना, समाज में जागरूकता फैलाना। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है। जैसे भवन की मजबूती स्तंभों पर निर्भर करती है, वैसे ही लोकतंत्र की मजबूती स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर निर्भर करती है। पत्रकारिता का इतिहास। भारत में पत्रकारिता का आरंभ अंग्रेजी शासन काल में हुआ। भारत का पहला समाचार पत्र ही, जिसे 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत उदंत मार्तंड से हुई, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर ने किया। स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। आज पत्रकारिता प्रिंट से निकलकर डिजिटल और सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार हैं प्रिंट पत्रकारिता, इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन शामिल हैं। यह पत्रकारिता का सबसे पुराना रूप है। उदाहरण, दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिकाएं, रोजगार के अवसर, रिपोर्टर, सब एडिटर, फीचर राइटर, कॉपी एडिटर, प्रूफ रीडर। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, इसमें रेडियो और टेलीविजन शामिल हैं। रेडियो की आवाज कल्पना के पंख देती है, जबकि टीवी दृश्य और दोनों संगम प्रस्तुत करता है। रोजगार के अवसर, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, टीवी रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरा पर्सन। डिजिटल पत्रकारिता, आज मोबाइल ही मिनी न्यूज रूम बन चुका है। वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजिटल पत्रकारिता का हिस्सा है। रोजगार के अवसर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल एडिटर, यूट्यूबर, पॉडकास्ट होस्ट, फोटो पत्रकारिता। एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। फोटो पत्रकार समाज की घटनाओं को कैमरे में कैद करता है। रोजगार, फोटो जर्नलिस्ट, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, न्यूज फोटोग्राफर। खेल पत्रकारिता, खेल प्रेमियों के लिए यह आकर्षक क्षेत्र है। कार, मैच रिपोर्टिंग, खिलाड़ी इंटरव्यू, खेल विश्लेषण। फिल्म और मनोरंजन पत्रकारिता, फिल्मी संगीत, टीवी सेलिब्रिटी जगत से जुड़ी खबरों का प्रसारण। रोजगार, फिल्म समीक्षक, एंटरटेनमेंट रिपोर्टर, एंकर। खोजी पत्रकारिता, यह पत्रकारिता का साहसी रूप है, इसमें छिपे हुए सच को सामने लाया जाता है। कृषि पत्रकारिता, भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों तक नई तकनीकी और योजनाओं की जानकारी पहुंचाना कृषि पत्रकारिता का उद्देश्य है। पत्रकारिता में आवश्यक गुण हैं। पत्रकारिता केवल डिग्री से नहीं, व्यक्तित्व से भी चलती है। यह अच्छे पत्रकार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे कि जिज्ञासा, निष्पक्षता, साहस, लेखन कौशल, भाषा पर पकड़, समय प्रबंधन, तकनीक ज्ञान, संचार कौशल। पत्रकार की कलम तलवार से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। आज पत्रकारिता में रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। समाचार

0: पत्र संस्थान देश में अनेक बड़े समाचार पत्र हैं जहां पत्रकारों की आवश्यकता रहती है। उदाहरण दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान। समाचार चैनल टीवी चैनलों में एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर की मांग रहती है। उदाहरण आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, रेडियो क्षेत्र। रेडियो आज भी ग्रामीण भारत की धड़कन है। विशेष रूप में आकाशवाणी ने सूचना और जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोजगार उद्घोषक, रेडियो प्रसोता, स्क्रिप्ट राइटर, कार्यक्रम अधिकारी। डिजिटल मीडिया कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से नौकरियां बढ़ रही हैं। ब्लॉग लेखन, वीडियो कंटेंट निर्माण, सोशल मीडिया हैंडलिंग। सरकारी क्षेत्र, सरकारी विभागों में जनसंपर्क अधिकारी और मीडिया अधिकारी की नियुक्ति होती है। प्रमुख संस्थाएं प्रेस सूचना ब्यूरो, जनसंपर्क विभाग, दूरदर्शन, आकाशवाणी। स्वतंत्र पत्रकारिता, आज फ्रीलांस पत्रकारिता भी लोकप्रिय हो रही है। लोग घर बैठे ब्लॉग, यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं। पत्रकारिता में आय अनुभव, संस्था, कौशल पर निर्भर करती है। शुरुआती स्तर पर इनकम 15,000 से 30,000 रुपए प्रति माह, मध्यम स्तर 40,000 से 80,000 रुपए प्रति माह, वरिष्ठ स्तर पर लाखों रुपए प्रति माह तक लोग अर्निंग करते हैं। लोकप्रिय एंकर और डिजिटल क्रिएटर इसमें भी अधिक कमाई करते हैं। पत्रकारिता से संबंधित प्रमुख कोर्स हैं। अब बात करते हैं उन कोर्स की जो इस क्षेत्र में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, अवधि 3 महीने से 1 वर्ष, विषय बेसिक पत्रकारिता, रेडियो प्रस्तुति, न्यूज राइटिंग। यह शुरुआती विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं। डिप्लोमा कोर्स, अवधि 1 वर्ष, प्रमुख कोर्स डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, स्नातक पाठ्यक्रम बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अवधि 3 वर्ष की रहती है इसकी। विषय रिपोर्टिंग, एडिटिंग, मीडिया कानून, विज्ञापन, जनसंपर्क। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एमए इन मास कम्युनिकेशन, अवधि 2 वर्ष की रहती है। इसमें पत्रकारिता के उन्नत पहलुओं का अध्ययन कराया जाता है। पीएचडी, जो विद्यार्थी शोध और अध्यापन में रुचि रखते हैं वे पीएचडी भी कर सकते हैं। पत्रकारिता के प्रमुख संस्थान हैं। भारत में कई प्रतिष्ठित संस्थान पत्रकारिता की शिक्षा प्रदान करते हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम है। यह वह दीपक है जो अंधकार से सत्य की रोशनी फैलाता है। आज के युवाओं के लिए पत्रकारिता रोजगार, सम्मान, रचनात्मक अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट क्षेत्र बन चुकी है। आवश्यकता है मेहनत, ईमानदारी और निरंतर सीखने की। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार श्रोताओं।
1: साथियों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था पत्रकारिता में युवाओं की सहभागिता, जिसमें वार्ताकार थे अरविंद प्रजापति। साथियों, जैसे हमें विदित है कि आजकल के बच्चे मोबाइल की लत के कारण बहुत सी समस्याओं में फंस रहे हैं। इसी से जुड़ी आज की हमारी दूसरी चर्चा है मोबाइल की लत विषय पर। मोबाइल की लत के कारण लोग अपना कीमती समय सोशल मीडिया, गेम और रील्स देखने में बर्बाद करते हैं। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में कमजोरी, सिर दर्द और गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं होने लगी हैं। फोन से अधिक चिपके रहने के कारण अनिद्रा यानी नींद न आना, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक बीमारियां पनपने लगी हैं। जैसे देखा जाता है कि छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है और वे किसी भी कार्य में ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसके आदि लोग वास्तविक दुनिया और परिवार से दूर होकर आभासी यानी डिजिटल दुनिया में सिमट जाते हैं। लोग बाहर खेलने या व्यायाम करने के बजाय घर में बैठकर फोन चलाना पसंद करते हैं, जिससे मोटापा भी बढ़ता है। यानी हम खुद ही अपनी समस्याओं को न्योता देते हैं। जब फोन पास न हो या इंटरनेट बंद हो तो व्यक्ति गुस्से या बेचैनी का अनुभव करने लगता है। सड़क पर चलते हुए या वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने से जानलेवा दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ जाता है। काम या पढ़ाई के दौरान बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत से उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। मोबाइल एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसे खुद पर हावी न होने देना और सीमित उपयोग करना ही समझदारी है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी हमारे मोबाइल की लत विषय पर। साथियों, अब ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा मधुर गीत।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना ये था फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, जिसमें गायक थे कमाल खान, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। साथियों, बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और लेकर चलते हैं आपको इस चर्चा की ओर, जिसका विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI ने तकनीकी दुनिया में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है, जिससे जटिल समस्याओं का समाधान आसान हो गया है। उद्योगों और व्यवसायों में AI के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है और ऑटोमेशन के जरिए कार्यप्रणाली अधिक

जिसका विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई ने तकनीकी दुनिया में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है, जिससे जटिल समस्याओं का समाधान आसान हो गया है। उद्योगों और व्यवसायों में एआई के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है और ऑटोमेशन के जरिए कार्यप्रणाली अधिक तेज हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई आधारित टूल्स छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षण यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग और त्वरित सहायता प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एआई की मदद से बीमारियों की सटीक पहचान, रोबोटिक सर्जरी और नई दवाओं का अनुसंधान बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे दैनिक जीवन में एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट जैसे एलेक्सा, सिरी और स्मार्ट होम उपकरणों ने जीवन को बेहद सुविधाजनक बना दिया है। सेल्फ ड्राइविंग कारों और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने परिवहन को अधिक सुरक्षित और सुगम बना दिया है। बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में एआई धोखाधड़ी का पता लगाने और जोखिम का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं साथियों, एआई ने तकनीकी नौकरियों के नए अवसर पैदा किए हैं, वहीं पारंपरिक नौकरियों के स्वरूप में भी भारी बदलाव आया है। एआई के बढ़ते प्रभाव के साथ ही डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और गलत सूचनाओं के प्रसार जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। साथियों, यह तकनीक मानव जीवन को असीमित संभावनाओं की ओर ले जा रही है, लेकिन इसका संतुलित और नैतिक उपयोग ही भविष्य की सफलता है। साथियों, ये थी हमारी छोटी सी चर्चा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के विषय पर। साथियों, लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा मधुर गीत।

साथियों, भी आपने सुना बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसमें गायक थे अखिल सचदेवा और मनशील गुजराल। इसमें गीतकार थे अखिल सचदेवा और संगीत से भी सवारा था अखिल सचदेवा ने। साथियों, जाते जाते दे देते हैं आपको रोजगार सूचना भी। यूपी ट्रिपल SC योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, जिसमें पद का नाम है UP SSSC आबकारी कांस्टेबल, जिसमें पदों की संख्या है 722। आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। इसकी शैक्षणिक योग्यता है UP SSSC PET 2025 का वैध स्कोर कार्ड और भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.uptrisc.gov.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हो भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को। नमस्कार।

0: श्रोता भी सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं केके और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म जो हम चाहें से ये गीत। गीत कुमार का है, संगीत दिया है सचिन गुप्ता ने। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम में जब सुनिए जावेद अख्तर का लिखा गीत सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सलीम मर्चेंट और शारदा पंडित की आवाज में। धुन तैयार की है सलीम सुलेमान ने। फिल्म का नाम है लव ब्रेकअप जिंदगी। तो लीजिए सुनिए लव ब्रेकअप से जिंदगी से ये प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अनुष्का मनचंदा और जिगर की आवाज में फिल्म हम तुम शबाना से ये गीत। गीत समीर का है, संगीत दिया है सचिन जिगर ने। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

फिल्म संगीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं स्पीडी सिंह से ये गीत। गीत है आरबीडी का, आवाज दी है जय हिंद कैड एनर्ज और स्मूथ ने। तो लीजिए सुनिए स्पीडी सिंह से ये गीत।

आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में फिल्म विक्की डोनर से ये गीत। गीत आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का है, संगीत दिया है रोचक कोहली ने। तो लीजिए सुनिए फिल्म विक्की डोनर से ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म बरेली की वर्बी से ये गीत। आवाज गीतकार और संगीतकार आर को हैं, तो लीजिए सुनिए फिल्म बरेली की बर्फी से ये प्यारा सा गीत।

और इसी गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपको बता देते हैं आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सबसे पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रम शाम 6 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा। कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम है एनसीईआरटी का भाग 1305। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे बुंदरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें हमारे कलाकार होंगे सीताराम यादव और रजनी यादव। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण भाई सुनेंगे विभिन्न विषयों पर चर्चा, साथियों का मानस प्रवचन, प्रसंग होगा रानियों का गर्भवती होना, प्रवचनकर्ता होंगे महेश कुमार अवस्थी, साथियों की वार्ता बाजरा के प्रमुख रोग एवं उनका प्रबंधन, वार्ताकार होंगी डॉक्टर सुचरिता मोहापात्रा। और आज की सीख का विषय होगा जब पर है खुटारी पास तो का कर है दुर्गुनुक और कास। रात 8 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास इज ऑफ डूइंग बिजनेस। 8:35 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित लोक संगीत कार्यक्रम, कलाकार होंगे प्रेमचंद्र अहिरवार। 10 बजे आप सुनेंगे संगीत रूपक सज्जन संग लड़ूंगी। 10:30 पर आप सुनिएगा शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सितार वादन शाहिद परवेज से, राग होगा तिलक कामोद। ये थे आज की सभा के शेष काम कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत आप सुनेंगे बुंदेली काव्य पाठ घासीराम नामदेव से, फिल्म संगीत सुनिएगा 7:30 पर। गीतों का संयोजित कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुनेंगे 8:30 पर। 9 बजे आप सुनिएगा लोकरंग कार्यक्रम, कलाकार होंगे विनोद अहिरवार। इनके साथ हारमोनियम पर संगत देंगे सतीश पांडे, बैंजो पर होंगे अरुण कुमार नामदेव और ढोलक पर होंगे ज्ञानी दास कोरी। 9:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जवाब गुनगुना उठे, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। 10 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा जिले की चिट्ठी। रसावतरण के अंतर्गत आप सुनेंगे कवि गोष्ठी, प्रतिभागी कवि होंगे मिथिलेश कुमार।

कल सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत युवा साथी सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी @90 के अंतर्गत दूरदर्शन संवाददाता अब्दुल रशीद खान से बातचीत। 6:30 पर आप सुनेंगे बुंदरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, कलाकार होंगे भूपत सिंह। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण भाई सुनेंगे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय एपिजन जागरूकता दिवस। साथियों का हेलो लोकरंजन कार्यक्रम, श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदरी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। और आज की सीख का विषय होगा जी की पातर को लड़क जात ओई सू को खात। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। मिनी वे पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। न्यूज हेडलाइंस कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को लीस में भारत इनोवेट्स का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन के दौरान भारत की नई पीढ़ी के नौ प्रवर्तकों, व्यवसाय जगत और वैश्विक जरूरतें पूरी करने वाले अनुसंधान समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र आईटीआई परिवर्तन के लिए रणनीतिक परामर्श सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य में 3 दिवसीय जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेशवासियों से बाल श्रम से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि हमारी सरकार बच्चों के हितों और शिक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्यप्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। भारतीय टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें।

0: सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
0: जी,
1: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
0: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
0: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
0: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
1: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
0: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
0: जी,
1: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
0: जी,
1: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
0: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
1: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
0: जी,
1: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
0: जी,
1: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
0: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
1: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
0: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
0: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी

0: वर्षा
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: दाना चुनकर लाती चींटी।
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: सचमुच कैसी कलाकार है।
1: घर को खूब सजाती चींटी,
0: घर को खूब सजाती चींटी।
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे।
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे।
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नहीं कभी घबराती चींटी।
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी।
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: काम बड़े करके दिखलाती।
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की।
1: हमको यही सिखाती चींटी,
0: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं? एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
4: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
5: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
6: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादू?

0: पर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है बूंदरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं सीताराम यादव और रजनी यादव। इनके साथ ढोलक पर संगत करेंगे लक्ष्मण गौड़, बैंजो पर होंगे लखन लाल वंशकार। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये चौकड़िया सीताराम यादव से।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर

0: अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं ये धुनी भजन सीताराम यादव से।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं सीताराम यादव और रजनी यादव और उनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं लक्ष्मण गौड़ और बैंजो पर हैं लखन लाल वंशकार। तो कार्यक्रम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये ढमरी आई सीताराम यादव से।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: लुकधारा के क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये नशा मुक्ति गीत सीताराम यादव से।
3: अरे नशा में नाश भये कैयक घर, नशा में नाश भये कैयक घर, सगो

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं बुंदरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं सीताराम यादव और रजनी यादव। तो कार्यक्रम में सुनते हैं ये युगल गीत सीताराम यादव और रजनी यादव से।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: तो कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ये युगल गीत सीताराम यादव और रजनी यादव से, जो कि विवाह पर आधारित लोकगीत है।

और इसी के साथ आज का हमारा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार थे सीताराम यादव और रजनी यादव। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे लक्ष्मण गौड़ और बैंजो पर थे लखनलाल वंशकार। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको बता देते हैं गुमशुदा संबंधी सूचना। पहली गुमशुदा संबंधी सूचना है किरण विश्वकर्मा की। पिता का नाम है राम सिंह, निवासी है ग्राम तजपुरा थाना नदी गांव जिला जालौन से। उम्र करीब 17 वर्ष है। हुलिया रंग गोरा है। लंबाई 5 फुट 4 इंच है। आंख नाक कान औसत है। शरीर पर कत्थई रंग की टॉप और काले रंग की जींस और पैरों में काले रंग की चप्पल पहने हुए 5/4/2026 को नदी गांव जिला जालौन से ये शाम 6 बजे से लापता हैं और अभी तक वापस नहीं आई हैं। जिन किसी भी सज्जन को इनके बारे में जानकारी लगती है वह इन नंबरों पर जानकारी दे सकता है। पहला नंबर है 7458065958, 7458065958। दूसरा नंबर है 9936359596 यानी 9936359596। ये जो नंबर है यह है किरण विश्वकर्मा का। पिता का नाम है राम सिंह, निवासी है ग्राम तजपुरा थाना नंदी गांव जिला जालौन से। उम्र करीब 17 वर्ष है। हुलिया रंग गोरा है। लंबाई 5 फुट 4 इंच है। नाक कान आंख औसत है। शरीर पर कत्थे रंग की टॉप और काले रंग की जींस और पैरों में काले रंग की चप्पल पहने हुए ये तजपुरा थाना नंदीगांव जिला जालौन से दिनांक 5/4/2026 को शाम 6 बजे घर से दुकान पर जाने कहकर चली गई थी और अभी तक वापस नहीं आई हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इनके नंबर बताए, नंबर एक बार आप फिर से नोट कर लें। नंबर है 7458065958 यानी 7458

06 5958, दूसरा नंबर है 9936359596, यानी 9936359596। श्रोताओ आइए आपको दे देते हैं एक और गुमशुदा संबंधी सूचना। यह है सुशील की, पुत्र है उधल के, पता है ग्राम मगरौट तहसील सरीला जिला हमीरपुर हाल निवासी नया राम नगर उरई जिला जालौन से। रंग सांवला है, चेहरा लंबा है, बाल लंबे हैं, लंबाई 5'6" है, नाक कान आंख औसत है। 19/4/2026 से लापता है और जिस किसी भी सज्जन को इनके बारे में जानकारी लगती है वह इन नंबरों पर जानकारी दे सकता है। पहला नंबर है 6387948240, यानी 6387948240। दूसरा नंबर है 7905853848, 7905853848। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 6387948240। दूसरा नंबर है 7905853848। ये थी गुमशुदा संबंधी सूचना सुशील की, पुत्र हैं उधल के, पता है ग्राम मगरौट तहसील सरीला जिला हमीरपुर का, हाल निवासी हैं नया रामनगर उरई जिला जालौन से। रंग सांवला है, चेहरा लंबा है, बाल लंबे हैं, उम्र करीब 30 वर्ष बताई गई है, लंबाई करीब 5'6" है, आंख नाक कान औसत हैं। नंबर मैंने पहले भी बता दिए थे, नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 6387948240, यानी 6387948240। दूसरा नंबर है 7905853848, यानी 7905853848। इसी के साथ गुमशुदा संबंधी सूचना अब यहीं पर समाप्त होती है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को किया खारिज। और केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों

0: में साफ तौर पर दिखाई देता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में खेती में महिलाओं, खासकर माताओं और बहनों की भूमिका पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
2: महिलाओं की भागीदारी और कैसी बढ़े, युवा कैसे खेती की तरफ आकर्षित हो और नई तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन कैसे बढ़ाएं और किसानों की आजीविका कैसे सुनिश्चित करें, आय और बढ़े। एक, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, मतलब भरपूर अन्न लोगों को भोजन के लिए प्राप्त हो और अन्न भी ऐसा हो पौष्टिक आहार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीपटेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा चुना गया है। उन्होंने बताया कि 1200 से अधिक स्टार्टअप्स में से 13 क्षेत्रों में 120 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ और खंडवा जिलों में भी सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर आज से जन कल्याण शिविर शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 17 से 18 जून के बीच मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग।

ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज एक बैठक में एमएसएमई उद्योगों के संवर्धन, जिला स्तर पर आने वाली कठिनाइयां और उनके निराकरण आदि पर चर्चा की। राजगढ़ जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। शहडोल जिले में 14 जून को ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सागर जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर छतरपुर जिले में लोक गायन, लोकनाट्य और संगीत पर केंद्रित विरासत महोत्सव का आयोजन 17 और 18 जून को किया जा रहा है। गुना कलेक्टर ने आकाशवाणी के भ्रमण के दौरान कहा कि आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, सटीकता और जन सरोकारों से जुड़े प्रसारणों के कारण लोगों के बीच विशेष स्थान बनाए हुए है। शहडोल संभागायुक्त ने वीरपुर से शिवपुर तक रेलवे लाइन का कार्य शीघ्रता से पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित निकासी मार्ग और लाइसेंस संबंधी नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैतूल वृत्त कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंदसौर जिले में मानसून और संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। श्री राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत उनका मनचाहा कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनने वाले सभी पंच भैया का एक बार फिर से अपने नोने भैया की राम राम पहुंचे। और भैया आज फिर अपने नोने भैया पनोरन के लेने लेके आए हैं नोनी नोनी बातें, बहुत सारी चर्चाएं, मानस प्रवचन और थोड़ो सो मनोरंजन और जरूरी जानकारी। तो अपनी सभी पंच भैया

पूरी उम्मीद लगा के अपनी रेडियो को तनक वॉल्यूम बढ़ा के अपने नेगर लेके बैठ जाए, और देखो जोन अपने पंच भैया ब्यारी यारी कर रहे हो तो अपनी ब्यारी ले लें, और पंच बहनन खा भी बुला लें, और संगे संगे अपनी बाल गोपालन खा भी जोन है बुला के कछु थोड़ो थोड़ो मनोरंजन के नाम पे अपनी एक आकाशवाणी को की ग्राम सभा को जो है उन्हें सुनवाए। भैया आजकल देखो तो जहां देखो जहां मोबाइल पे लगे इंस्टाग्राम फेसबुक और फलानू और व्हाट्सएप और ढकानू जो सब चल रहा है आदमी और देख रहे, लेकिन हमारे ये प्यारे से रेडियो

0: बढ़ा के रखें। और आज है 12 जून, और भैया आज एक बहुत बड़ी जरूरी जानकारी है कि भैया आज जो है 12 जून का बाल श्रम निषेध दिवस मनाओ जात है। काय से है का कि भैया जो छोटे छोटे अपने बाल गोपाल हैं बड़े शहरन में, चलो गांव खेड़न में तो ठीक है, अपने खेत खलान में अपने बच्चा जो है अपने संगे कछु ना कछु खेती किसानी सीखते हैं, घर गृहस्थी के काम सीखते हैं, लेकिन अपन और अन्य शहरी आबो हवा में देखो ये कि छोटे छोटे बच्चा होटलन में दुकानन में बे जो तनक गरीब घर के तबका के होते हैं तो मजदूरी उनसे करवाऊ थे। कई बार तो भैया बंधुआ मजदूर लो बना देते हैं छोटे छोटे बच्चन का। तो भैया जा अपनी एक सोच अपनोरन का ई प्रकार की नहीं रखने है कि बाल गोपालन का पहले तो पढ़ावो लिखावो बहुत जरूरी है, ई किलाने उनका प्रेरित करें। रही बात आजीविका के लाने, तो भैया उनकी उम्र को 14 साल होबे को इंतजार करें, फिर उनसे धीरे धीरे छोटे छोटे हल्के फुल्के कामन का करवाएं। कैसे 14 साल से कम उम्र के बच्चन से कहूं भी ई प्रकार की व्यवसायिक क्षेत्र में काम करवावो अपराध है। और बड़े जो हैवी कल कारखाने हैं उनमें जो है भैया 18 साल से कम बच्चन से काम नहीं करवाओ जा सकता है। बहुत सारी अपनी पंचन के बीच में बातें हैं। कैसे देखो गर्मी को तो मौसम चल ही रहो है, बीच में खोचामी जो है बादल कभों कभों घिरे आउत है, पानी दे दिए थे और उमस बड़ी पड़ी है और दे भबू का डे पर है, तो गर्मी में भैया वे लू लपट गई नहीं है, इसे भी अपने पंचन को बचाव रखो बहुत जरूरी है। और भैया जब भी कभों अपने पंच भैया निकरें घर से बाहर निकरें तो देखो जो सोच के ना निकरें कि अब जो है लू लपट जो है नौतपा खत्म हो गए हैं तो लू लपट खत्म हो गई, भैया ऐसो कुछ नहीं है। इस समय पर लू लपट को को और ज्यादा अंधेसो बनो रहा है, तो सावधानी बिल्कुल बरत के निकरें घर से जब भी निकरें, कानन में होन गमछा डार के निकरें, ढीली कपड़ा पहन के निकरें और खूब सारो पानी पी के निकरें। संगे संगे भैया प्याज की गठिया कान लगाते हैं कि अपनी जेब में डार के चलो तो लू नहीं लगाता है, तो भैया जेब में गठिया तो डार के जो चल रहा है सो ठीक है ठीक है, लेकिन भोजन में सवेरे और संजय जो है प्याज को सेवन अपने पंच भैया जरूर करें, उसे भी भैया बहुत आराम मिला थे। कच्चे आमन को पनु अपने पंच भैया सेवन कर सका थे। और सत्तू जो है बड़ो अपने इतने बुंदेलखंड में काप तो धीरे धीरे करके पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध भाव जा रहा है सत्तू, तो भैया सत्तू को सेवन भी जो है गर्मी से अपने पंच भैया का बहुत राहत दवाओ थे। बहुत सारी बातें हैं आज अपने लाने पंचन के संगे, जरूर सुनवे भी लेकिन तनक देर के बाद।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: देखो पंच भैया आज अपन ने चर्चाएं करी बाल श्रम निषेध दिवस की और गर्मी में लू लपट बचाव की, तो भैया जी तो हो गई चर्चाएं, लेकिन अपने पंचन का शुक्रवार के दिन बड़ी बेसब्री से इंतजार रहा है अपनी मानस प्रवचन को। और देखो भैया काय नहीं अपने पंचन का सुनवाऊ थे मानस प्रवचन, रानियों का गर्भवती होना, और प्रवचन करता है महेश कुमार अवस्थी। तो बिना रोके सुना थे अपन आज को जो मानस प्रवचन, रानियों का गर्भवती होना।

भक्ति स्वरूप माताएं, शक्ति स्वरूपा बहने, भक्त सज्जन, वृद्धजन, आइए मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस का प्रसंग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। आज का मानस का प्रसंग है रानियों का गर्भवती होना। महाराज दशरथ जी अपनी तीनों महारानियों को अग्निदेव का चरु का प्रसाद देते हैं, तो आइए प्रसंग में

उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि सब वहां चली आई। राजा ने आधा भाग प्रसाद का जो भाग लिए थे आधा भाग अपनी बड़ी महारानी कौशल्या जी को दे दिया और जो शेष भाग बचा आधे के दो भाग किए

वह उनमें से एक भाग राजा ने केकेई को दे दिया और जो शेष बच रहा था उसमें के दो भाग करके राजा ने उनको दिया, कौशल्या के हाथ में रख दिया। तो वह दो भाग जो कौशल्या के हाथ में रख दिया तो एक भाग पुनः केकेई को दिया। कौशल्या केकेई दोनों ने मिलकर के छोटी महारानी सुमित्रा को दो भाग दे दिए, आधे में से आधे करके। इस प्रकार से

इस प्रकार से सभी माताएं गर्भवती हो गई। वे अपने हृदय में इतनी प्रसन्न हैं, बड़ी प्रसन्न हो गईं, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि गर्भ में आए तो सब लोकों में सुख और संपत्ति अपने आप ही छा गई। दसों दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशाओं में, पृथ्वी आकाश पाताल में अपने आप सुख संपदा बढ़ती जा रही है।

शोभा शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीतता जा रहा है। वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु के प्रकट होना है, जिस अवसर में प्रभु को प्रकट होना है वो शुभ समय आ गया।

वह शुभ शुभ समय योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म जो है वह सुख का मूल है, सुख को देने वाला है। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, श्री राम अवध में आते हैं और हम सबके

पवित्र चैत का महीना वह अवसर, शुभ अवसर जो है भगवान का जन्म का समय। पवित्र चैत का महीना, नौमी तिथि थी शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय, सबसे प्रिय तिथि जो है अभिजित मुहूर्त। दोपहर का समय जो बहुत ना तो गर्मी देता है और ना अधिक ठंड भी होता है, ना ज्यादा सर्दी ना गर्मी। दोपहर के समय वह पवित्र समय लोगों को शांति देने वाला था।

शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा है। और देवता बड़े हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव बड़ी प्रसन्नता थी कि भगवान हमारे धरती के ऊपर आ रहे हैं। वन मन में फूले नहीं समाते हैं, वन फूले हुए प्रसन्न हैं, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे हैं और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही हैं।

था। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, सारे देवता विमान को सजा सजा करके चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करते हैं। श्री राम जी का नाम ले लेकर के

पंचों अभी अपन सुन रहे थे महेश कुमार अवस्थी से जो मानस प्रवचन को प्रसंग रानियों का गर्भवती होना। और पंचो एक बात और अपने पंचन का बताया कि देखो ये साल जो है अपनी छतरपुर आकाशवाणी ग्राम सभा और पूरी आकाशवाणी का 50 साल छतरपुर आकाशवाणी के केंद्र के अंदर हो गए हैं। और पंचो एक बात अपन से पूछ चाहते हैं कि जो बताओ कि ये पूरे 50 साल में का बदलू का नहीं बदलू ये आकाशवाणी के अंदर, तो एक बात अपने पंचन का बता दें कि सब कछु बदल गो लेकिन हमारी छतरपुर ग्राम सभा आकाशवाणी छतरपुर की जो ट्यून है बाद ही बदली है, बा आज भी जैसी की तैसी है। और पंचंग की जो कार्यक्रम की शुरुआत होते वो राम राम से होते और राम राम पे खत्म होते, तो ऐसो हो तो भैया आज को मानस प्रवचन और अपने अब नोने भैया की जो नोनी नोनी बातें हैं बेतनक रह गई हैं, तो पंचन से बेबी कर ली जाए अच्छे स्वास्थ्य के लाने अपने पंच भैया का करें। तो भैया व्यायाम जैसी अच्छी कोनो चीज हो तो नहीं है, और भैया सूर्य नमस्कार यदि अपने पंच भैया बहने सवेरे से करती हैं तो इसे अच्छो व्यायाम कोनो नहीं है। जी के अंदर 12 आयाम होते हैं और अपने पंच भैया उन 12 आयाम के संगे संगे पूरे शरीर की जो है कसरत हो जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले जरूरी है व्यायाम वर्जिश। तो पंच भैया बहने और संगे संगे अपने प्यारे प्यारे

0: पंजो। अभी अपन सुन रहे थे सुरेश चंद तिवारी से जो लोक भजन, और आज अपने पंचन की लाने आई है एक बढ़िया सी वार्ता। बाजरा के प्रमुख रोग एवं उनका नियंत्रण वार्ताकार हैं डॉक्टर सुचिरिता मोहपात्रा। तो सुनते हैं एक छोटी सी भेंट वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर सुचरिता महापात्र आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हूँ, जो कि बाजरा के प्रमुख रोग एवं उनका प्रबंधन। बाजरा भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है। ये फसल कम वर्षा एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी उपज देने की क्षमता रखती है। बाजरा पोषण की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, खनिज तत्व, लोह एवं रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन विभिन्न रोगों के कारण इसकी उपज एवं गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समय रहते इन रोगों की पहचान एवं उचित प्रबंधन किया जाए तो किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त हो सकता है। आज हम बाजरा के प्रमुख रोग, उनके लक्षण तथा उनके प्रभावी प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले होता है डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर डिजीज। ये बाजरा का सबसे विनाशकारी रोग माना जाता है। ये रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला नामक फफूंद से होता है। इसका लक्षण ऐसा होता है कि प्रारंभ में पत्तियों पर पीले रंग की लंबी धारियां दिखाई देती है। पत्तियों के निचली सतह पर सफेद रुई जैसी फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है। संक्रमित पौधे में बालियां में सामान्य रूप में विकसित नहीं होती है और बालियां हरे पत्ते जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हरित वाली रोग बोलते हैं। और इसके प्रबंधन में रोगरोधी किस्मों का उपयोग हम कर सकते हैं। स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का चयन कर सकते हैं। बीजोपचार हेतु मेटालोक्सिल 35 SD का 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का दर से उपचार कर सकते हैं। फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन हम अपना सकते हैं। संक्रमित पौधों को उखड़ कर हम नष्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं कंडुआ रोग, जिसको हम बोलते हैं स्मट डिजीज, इंग्लिश में जिसको बोला जाता है स्मट डिजीज। ये रोग टॉलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरिया नामक फफूंद से होता है। इसका लक्षण ऐसा है कि बालियों में कुछ दाने काले रंग के गोल थैले में परिवर्तित हो जाते हैं। ये थैले बस्ट होकर काले चून मतलब काले पाउडर जैसे ग्रोथ होते हैं, तो रोग ग्रस्त बालियां विकृत जैसे दिखाई देने लगते हैं। इसके प्रबंधन में रोग मुक्त बीज का प्रयोग कर सकते हैं। बीजोपचार कार्बन डाइजिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का दर से कर सकते हैं। संक्रमित बालियों का एकत्र करके नष्ट कर सकते हैं और

0: चैत में स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं ऑर्गट डिजीज। ये क्लाबिसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक फफूंद से होता है और इसका लक्षण ऐसा होता है कि फूल आने की अवस्था में संक्रमित भागों से चिपचिपा ऐसा हनी ड्यू सिक्रेशन होता है जो बाद में दाने के स्थानों पर गहरे भूरे या फिर काले रंगों का कठोर संरचनाएं बन जाती है जिसको बोला जाता है स्लेरोशियल ग्रोथ, इंग्लिश में जिसको स्लेरोशियल ग्रोथ बोला जाता है। और इसके वजह से बीज का गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता घट जाती है। और इसके प्रबंधन में हम ऐसा कर सकते हैं कि नमक के 10% घोल में बीज को डालकर ऑर्गट संरचनाओं को अलग कर सकते हैं और बीजोपचार थायरम या कार्बनडाइजम से कर सकते हैं। फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन हम अपना सकते हैं। फूल आने के समय क्षेत्र का नियमित निरीक्षण कर सकते हैं और डेट ऑफ सोइंग जो कि हम बुआई के समय हम चेंज कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। और नेक्स्ट होता है गैरवी रोग जो कि रस्ट डिजीज होता है। तो ये पक्सिनिया पेनिसिटी नामक एक फफूंद से होता है और इसके लक्षण ऐसा है पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे या जंग जैसे धब्बे दिखाई देने लगते हैं और ऐसे धब्बे होते हैं कि पत्ते के निचले भाग पर ऐसा होता है कि गोल लाल भूरे रंग का एक उभर जैसे आने लगता है और धब्बों की संख्या बढ़ने पर पत्तियों सूखने लग जाती है और इसके वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है जिससे उपज घटती है। और इसके प्रबंधन में रोगरोधी किस्म का चयन कर सकते हैं, संतुलित उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और मैंकोजेब 0.25% ले सकते हैं, मतलब 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर हम उसका छिड़काव कर सकते हैं, मतलब 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम ये मैंकोजेब डाल के इसका छिड़काव कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम क्या रोग प्रबंधन क्यों किसान भाइयों के लिए आवश्यक है, तो रोग से उपज में 20-80% तक की कमी हो सकती है। तो दानों की गुणवत्ता इसके वजह से प्रभावित होता है, बीज का अंकुरण क्षमता घट जाती है, उत्पादन लागत बढ़ जाती है और किसानों के आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बुवाई से पहले हमेशा बीजोपचार जरूर करें और रोगरोधी किस्म जैसे WCC 75, IPTC 8203 और Hybrid Bajra 5, Hybrid Bajra 7 ये सब रोगरोधी किस्मों का हम प्रयोग कर सकते हैं। खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था हम रख सकते हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन हम अपना सकते हैं और खेत में नियमित निरीक्षण हम लोग कर सकते हैं। रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नियंत्रण हम अपना सकते हैं और संक्रमित पौधों एवं बालियों को हम नष्ट करके दूसरे जगह फेंक सकते हैं और कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई तकनीकों को हम अपना सकते हैं। तो बाजरा के सबसे प्रमुख बीमारी जो कि डाउनी मिल्ड्यू होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मृदु रोमिल आसिता, जो डाउनी मिल्ड्यू होने के बाद इसमें पौधों की पत्तियों के ऊपर पीले धब्बे पड़ जाते हैं और पत्ते के नीचे सफेद रंग की रुई जैसी फफूंदी जैसे दिखती है और आगे चलकर मतलब यही डाउनी मिल्ड्यू एक फफूंद जो कि स्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकुला से होता है, ये आगे चलकर बाजरा की बालियों में जो अनाज की जगह हरी पत्तियां मतलब पत्तियों के गुच्छे जैसे दिखने लग जाती है। और ये जो हरित वाली रोग या फिर डाउनी मिल्ड्यू ये बीमारी बहुत खतरनाक है। अगर खेत में पानी जमा रहता है या जल निकासी अच्छे से नहीं होती है तो ये रोग तेजी से फैलता है, उसकी वजह से फसलों में 30-45% का भारी भरकम नुकसान हो सकता है। और ये डाउनी मिल्ड्यू ये बीमारी एक फंगस के अंडे मतलब ऊसपोर ये मिट्टी में 5 साल या उससे ज्यादा समय तक भी जिंदा रह सकता है। उसके अलावा संक्रमित बीजों के जरिए ये बीमारी नई फसलों में पौधों में फैल जाता है। और ये जो हरित वाली रोग है इसके प्रबंधन में किसान भाई कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं। हमेशा साफ और स्वस्थ फसल से बीज चुन सकते हैं और गर्मियों के दिन में खेतों की गहरी जुताई जरूर कर सकते हैं और खेतों में जैसे ही कई बीमार पौधे देखें उसे तुरंत उखाड़ कर जला दे सकते हैं। हर साल एक ही खेत में बाजरा ना होए बल्कि फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं।
1: पंचू अभी अपन सुन रहे थे वार्ताकार डॉक्टर सुचरिता मोहपात्रा से बाजरा के प्रमुख रोग एवं उनको नियंत्रण। और अब तनक अपन रुकत हैं और फिरू के बाद में आगे बढ़े।
2: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में।

0: डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, गोला।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पंचो, आज अपन हो रहे हैं कार्यक्रम की जो शुरुआत करी थी अपन ने बाल श्रम निषेध दिवस से, और अपन जो चर्चा अपनी रही भी गर्मी में लू लपट से बचाव की रही, अच्छे स्वास्थ्य के लाने रही, लेकिन इके संगे संगे देखो भैया, अब अपने पंच भैयान खां खेती की भी अपनी उम्दा तैयारी कर वो बहुत जरूरी है। काय से देखो भैया, सब जो है बरसात जो है धीरे धीरे करके सुनबे में आ रो है। मानसून विभाग वाले ने बोलो है कि केरल के तट से जो है मानसून अपनों टकरा गो, और कछु दिन बाद अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में भी मानसून की अच्छी बरसात हो सकत है। लेकिन कहूं कहूं वैज्ञानिकन को कहवो जो है कि अल नीनो के कारण हो सकत है बरसात इस सामान्य से थोड़ी सी कम रहे, तो उकी तैयारी भी अपने पंच भैयान का लेके चल रहे हैं। तो काका, चीजें जो है अपने पंच भैया खेतन के अंदर इस समय पर कर सकते हैं, बे अपन खा अब ऐसे उनकी तैयारी कर ले, जिनके खेत खाली हैं, जिन खा मीणे बनाऊने हैं, जिनकी ढाल में जो उन्हें ककाहू थे खेत पड़ा थे, बे उत पे गड्ढा खोद के उत पे पानी को भराव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं अपने पंच भैया कर सकते हैं जिसे आगे वाली बरसात के समय में पंच भैयान का कोनो भी प्रकार की परेशानी ना हो। और एक भैया चलत चलत अपने पंचन किलाने छोटो सो लोकगीत लेके आए हैं अशोक कुमार दुबे जी को, तो सुनते जो छोटो सो लोकगीत।

खेत में चाहे कहूं भी प्रकार की कांस कान लगत के भैया सबसे ज्यादा जो है गहरी गपी रात है उनको अखाड़ वो उतना मुश्किल रात है, तो चाहे कुंदरू हो चाहे घास हो सब एक तरफ से बखन्नी से उखड़त चली जाते। कहबे को मतलब जो कहानो कि पंच भैया जब कोनू समस्याएं आती हैं तो भी हर प्रकार की समस्याएं लेके आती हैं, और जब अच्छो होने होते तो सब प्रकार की समस्याओं को समाधान करके सब अच्छो अच्छो होते, तो मैया सबको साजो साजो करे। ऐसो हो तो भैया आज को अपनो कार्यक्रम, और अब हो रही है चलवे की बेरा, तो पंचन का बता दे जाए काल के कार्यक्रम, काल अपने पंच भैया सुने। हेलो लोकरंजन, श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम हुई है, और जी का हमारे पंच भैया बड़े मन से बनाऊ थे और प्रस्तुति रहा थे रविंद्र प्रजापति जो की। तो अब हो रही है चलवे की बेरा, पंचन से विदा ले जाए, पंचो राम राम।

ओए दद्दा मोए दुलैया ढूरो तो भैया जी की दुलैया ढरने थी भी ढर चुकी और जिनकी ब्याह होने थे भी हो चुके। अब तनक अपने पंच भैया इंतजार करें आगे आवे वाले मुहूर्तन को, उस समय पे फिर से अपन दुलैया ढूर वे कराने कर हैं। देखो पंचे आज जो है आज की सीख, तो पंचो आज की सीख है जब पर है खुटारी पास तो का कर है कुदरू और कांस। कान लगत के भैया जब खेत में हल चलत है और जो नुकीले उके खुर होते हैं तो

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया ग्रामीण भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा का। मेरे विपरी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों

0: एक साथ चलें, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसमें संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
0: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती हैं तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है। अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किन योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थी

व्यक्तियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सृजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है, और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कॉन्ट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा, उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आज जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम
एग्रीकल्चर के बाद में सब

0: सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है, और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिये, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया, 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए, प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैंने

0: मेंबरशिप्स जिसके पास में भी है वो उसका फोटो उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से जैसा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सबका रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जेन अल्फा होगी, बीटा होगी, जेन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा और न केवल भारत के प्रति अपितु तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया और उनके बलिदान से इस गीत के

माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंजनि हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य

0: स्वीकार किया, जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर कहा कि श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सके, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करे, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कंपटीशन आयोजित किए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है, और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं, आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है, लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश ने भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग

0: नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हो, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हो, मैले कुले चले कपड़े पड़े हो, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थे। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसे संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: क्योंकि भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत के जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने

0: और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है जंगली।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: फिल्म संगीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म जानवर से ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर और आशा भोसले की, गीत शैलेंद्र का है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। तो लीजिए सुनिए फिल्म जानवर से ये गीत।

और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म प्रोफेसर से ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत शैलेंद्र का है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

और इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार संध्या कुछ पलों बाद हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आपके साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित

0: निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण

0: प्रसारण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है, उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। PV सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज

0: अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the centre. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving fair price, West Bengal government is taking the land.

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है प्राजित लोक संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं प्रेमचंद्र अहिरवार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिक्षक प्रेमचंद्र अहिरवार, अम्बेडकर नगर, छतरपुर, मध्य प्रदेश। शादी विवाह, जन्मोत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बुंदेली लोक संगीत गायन हेतु संपर्क करें
2: प्रेमचंद्र अहिरवार, अम्बेडकर नगर, छतरपुर।
1: मोबाइल नंबर
2: 9630664993
1: 9630664993 श्रोताओ, विगत 11 जून 2026 को शिक्षक प्रेमचंद्र अहिरवार द्वारा सांस्कृतिक लोकगीत संध्या का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बुंदेली लोक संगीत की प्रस्तुतियां दी गईं। प्रस्तुत हैं प्रेमचंद्र अहिरवार द्वारा गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये दहेज गारी, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रेमचंद्र अहिरवार।

आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रेमचंद अहिरवार के स्वर में माँ बाप की व्यथा पर केंद्रित ये बुंदेली लोक रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, आइए सुनते हैं।

अभी आपने बुंदेली लोक रचना सुनी, कलाकार प्रेमचंद्र अहिरवार। शादी विवाह जन्मोत्सव।

0: और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बुंदेली लोक संगीत गायन हेतु संपर्क करें।
1: प्रेमचंद्र अहिरवार, अम्बेडकर नगर, छतरपुर।
0: मोबाइल नंबर
1: 9630664993।
0: 9630664993। लीजिए अब सुनते हैं प्रेमचंद्र अहिरवार की ही गाई हुई एक गारी जो नशा निषेध पर केंद्रित है, उन्हीं के स्वर में।

0: अभी आपने नशा निषेध पर एक बुंदेली गारी सुनी, स्वर प्रेमचंद्र अहिरवार का था। शादी विवाह, जन्मोत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बुंदेली लोक संगीत गायन हेतु संपर्क करें
1: प्रेमचंद्र अहिरवार, अम्बेडकर नगर, छतरपुर।
0: मोबाइल नंबर
1: 9630664993,
0: 9630664993। आइए श्रोताओं, आपको इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं आकाशवाणी पर आधारित ये गीत, जिसे गा रहे हैं प्रेमचंद्र अहिरवार।

श्रोताओं, इस प्रायोजित कार्यक्रम में लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं एक पर्यावरण पर केंद्रित लोक रचना, जिसे गा रहे हैं प्रेमचंद्र अहिरवार।

0: शादी विवाह, जन्मोत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बुंदेली लोक संगीत गायन हेतु संपर्क करें
1: प्रेमचंद्र अहिरवार, अम्बेडकर नगर, छतरपुर।
0: मोबाइल नंबर
1: 9630664993
0: 9630664993 साइबर सुरक्षा पर केंद्रित एक लोक रचना जिसे गा रहे हैं प्रेमचंद्र अहिरवार, हम आपको सुनवाते हैं
2: कि अपने आप ही खास सुरक्षित।

0: श्रोताओं, अभी आपने ये प्रायोजित कार्यक्रम प्रेमचंद अहिरवार के गाए हुए बुंदेली लोकगीतों पर सुना और हमने इसे रिकॉर्ड किया 11 जून 2026 को प्रेमचंद अहिरवार द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसी के साथ ही प्रायोजित लोक संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक प्रेमचंद अहिरवार। शादी विवाह, जन्मोत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बुंदेली लोक संगीत गायन हेतु संपर्क करें
1: प्रेमचंद अहिरवार, अंबेडकर नगर, छतरपुर।

0: मोबाइल नंबर
1: 9630664993
0: 9630664993 इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे शिक्षक प्रेमचंद्र हरवार छतरपुर मध्य प्रदेश।
2: श्रोताओं अभी आपने सुना प्रायोजित लोक संगीत कार्यक्रम जिसमें हमारे कलाकार थे प्रेमचंद्र अहिरवार। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संगीत रूपक, शीर्षक है सजन संग लड़ूंगी।
3: पुरस्कार प्राप्त आकाशवाणी के शहडोल केंद्र पर तैयार किया गया संगीतमय रेडियो रूपक सजन से लड़ूंगी। आलेख, संगीत और परिकल्पना मोहन किशोर वर्मा।

0: इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। समस्त विश्व को
1: लाइक सीताराम
0: स्वयं सिद्ध योगी भी ज्ञान को ही अपने हृदय में धारण करके रखता है।
2: ज्ञान प्रकृति है मानव की, उसकी संस्कृति, उसका स्वभाव है ज्ञान। गुजरते हुए हर पल पर समय ने हस्ताक्षर किए और वर्तमान भूत में परिवर्तित हो गया, और इस परिवर्तन के साथ ही बदलता गया ज्ञान का स्वरूप भी।
0: लेकिन ज्ञान तत्व सनातन है, उसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। बात चाहे आदिमानव की हो या आज के आधुनिक मानव की, दोनों की ही आंखों में ज्ञान पिपासा की चमक एक सी ही मिलेगी। मानव जीवन जब धीरे से अपना पहला कदम इस धरती पर रखता है, उसके साथ ही ज्ञान की ज्योत भी प्रज्वलित हो जाती है।

भैया आओ तुम्हें बताऊं।

0: जीवन के इस प्रथम प्रहर में बचपन उनीली आंखों से दुनिया को निहारता है। इन्हीं मासूम पलों में कहीं कुछ सृजन होता है, कहीं कुछ बनता है उसके अंतस में। अलसाई आंखें सपना बुनने लगती हैं और धीरे धीरे अरूप जीवन एक आकार लेता है। यूं विकसित होता है एक जीवन दर्शन।
1: बचपन यानी दसों दिशाओं को आलोकित करती एक मासूम सी मुस्कुराहट, तितलियों के पीछे भागते डगमगाते दो नन्हे कदम, भोली आंखों में तैरते सलोने से सपने,
0: निर्मल निर्झर के स्वर में स्वर मिलाकर वो खिलखिलाना, तो कभी चंदा को पास बुला उससे बातें करना, कभी कागज की कश्ती पर नदी की सैर, तो कभी रेत के घरौंदों का खेल।
1: जीवन वहां कितना ही स्वच्छंद कितना ही निश्चिंत क्यों न हो, लेकिन गीली मिट्टी सी कोमल मेधा प्राकृतिक रूप से ज्ञान के प्रकाश में परिपक्व होकर आकार लेने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इन्हीं मासूम लम्हों में जिज्ञासा मनुष्य के अंदर गढ़ती है जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण, एक विचारधारा, जो आजीवन उसके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। क्या उम्र के किसी पड़ाव में जीवन का ये सृजन काल कभी लौट सकता है? कभी नहीं।
0: बावजूद इसके जिन हाथों में आज कागज और कलम होने चाहिए, उन हाथों में कहीं पॉलिश और ब्रश है तो कहीं जूठी प्लेटें। जिन कदमों को ज्ञान पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, वो कभी श्रमिक बन कारखानों की ओर जाते हैं, तो कभी कृषक बन खेतों की ओर।
1: बचपन बचपन न जाने कहां कहां खड़े थे, भटक रहा है भयावह अंधकार में, जहां प्रगति के विकास के सारे रास्ते आगे बंद हो जाते हैं, और ये कैद दूसरों की नहीं खुद उनके माता पिता की देन है। क्या ये दशा दयनीय नहीं? नरे मुन्नी, अब तक काम में नहीं गए और ये भिनसार से कहां उदम मचाए?
2: भोलू के मास्टर जी ये सिखा रहे।
1: अच्छा, तो तया पढ़िए।
3: नहीं हो वहाँ, तो भोलू के मास्टर जी ही सिखाए रहे, तो यहाँ गाय की सुना बता रही।
1: चुका बहुत जन पकड़।

0: गुलजन भाई, तू काम को आकर या तो बाप
1: ना हो, इतनी नान सी बिटिया और इतना काम घर के खेत के और मसाला कूटे मता दिन भर किस जाती बिचारी खेलो नहीं पावे मोर बिटिया का। तुम्हें नहीं लागे कि यह स्कूल जाए वह दुलारी की बिटिया वह तो जाए लाग स्कूल।
0: अरे रे रे तहु दिन मत अपनाए लगे है? अबे जो उन काम करी वह जिंदगी भर काम आई, पढ़े लिखो से कुछ नहीं हो पाजी माँ सही मनी तो काम बजा चाणा का चल स्कूल दे बाबूजी। हाँ
2: वो नन्हे नन्हे कदम वो नन्ही उंगलियां विस्मित आंखों में भरे सपने क्या दोष है उसका जो अपनी उम्र के सातवें वसंत में ही जर्जर हो गया जैसे पत्ता झड़ गया डाली से बिछुड़ गया। कितने पन्ने कितने अध्याय उसके जीवन के जल गए वो अनमोल मासूम पल कहाँ खो गए कहाँ खो गए कहाँ गई वो आशाएं जो जगाएं नन्हे इरादों को कहाँ है वो आंचल कहाँ है वो उंगली जो अंधकार को

0: बेनाम मासूम हाथों सौंपे जो कठिन काम, जिसका दायरा अशिक्षा का होगा वो भविष्य अंधकारमय होगा।
1: जिन कारणों से आज माता पिता का वर्तमान समस्याग्रस्त है, क्या वही कारण वे अपने बच्चों के लिए पैदा नहीं कर रहे?
0: जन्म होना तो सहज है, पालन होता कठिन। शिक्षा बिना जीवन कहीं रह ना जाए मलिन।
2: यह समस्या समाज और सरकार से पहले माता पिता की है, इसीलिए इसके समाधान की जिम्मेदारी भी सबसे पहले माता पिता की ही है।

0: ना मेरे के हाँ फैलाई मोर लल्ला दिन सारे से जो नोटी दस शुरू भा अब तक नहीं रुके
1: सोमे नहीं रे इतनी रात तक काहे जान मारे दे रही
0: हाँ, जान मारे

0: साहब चले ना गए कर।
1: अरे क्या तो सही में उल्टी सांस होने लगी और दवाई तो तुम दिए रहे ना?
0: दिए रहे मैं तो कुछ समझ में नहीं आऊ था, कहा करी कैसे करी। एक रत्ती सुधार नहीं मामूर करे जाके जाता हाथ तो है कर।
2: कहाँ से पिया रहे यह पुड़िया तो रहीम गना
1: पुड़िया?
2: हाँ पुड़िया, यही था हमार मुन्ना भैया के असली दवाई आज। यह देखो यह मलिका है जीवन रक्षण गोल। अब देर न करो अम्मा, जल्दी से घोल के पिया दे भैया के।
1: अरे मुन्नी की अम्मा, मुन्नी तो पढ़े ना के ना मुन्नी तो पढ़े कैसे लागे बिटिया?
2: दादा जब हम काम से लौटत रहे तब स्कूल के भैरे थोड़ी देर खातिर खड़े हो जाते रहे और मास्टर जी जोन पढ़ावत रहे हम सुनत रहे बस।
0: देखे देखे मोर बिटिया की होशियारी, सुने सुने मैं इतना सब सीख गए। और तू वह दिन का कहत रहे स्कूल जाके का करी ली? आखिर वह पढ़ाई का काम आई ना? हम तो नहीं पढ़ पाए पर अब हम सोच लिए हैं चाहे कुछ हो जाए मुन्नी तो स्कूल जाई। अब पढ़ी मोर बिटिया।

0: सुबह सवेरे किए पाती, अक्षरों को भी मीत बनाए, अपने घर आंगन में साक्षरता की दीप जलाए।
1: सुबह की आहट के मध्यम स्वर हमारी वर्णमालाएं हैं, दोपहर के पदचाप शब्द निर्माण की प्रक्रिया का एहसास, और शाम की लयबद्धता शब्दों से प्रस्फुटित होता ज्ञानार्जन का आलोक। शायद किसी ऐसे ही वक्त ऐसा कुछ कहा गया है।

0: हुआ सवेरा, जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नदी में स्नान करके सूरज सुनहरी बलबल की पगड़ी बांधे सड़क किनारे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
1: हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं। महकते फूलों की लोरियां छोटे रास्तों को जगा रही हैं। घनेरा पीपल गली के कोने से हाथ अपने हिला रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
0: फरिश्ते निकले हैं रोशनी के, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है, जमी का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है। पुरानी एक छत पे वक्त बैठा कबूतरों को उड़ा रहा है
1: कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
0: बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
1: आइए अपनी अपूर्णता अपने बच्चों के माध्यम से पूरी कर हम खुद भी पूर्ण हो जाएं।

साजन से लड़ूंगी। आलेख, संगीत और परिकल्पना मंजुल किशोर वर्मा। वाचक स्वर थे ऋत्विक दास मिश्र, कुमारी सुनीता सिंह और कुमारी अर्पिता चौधरी के। गायक स्वर मंजुल किशोर वर्मा, कुमारी सुनीता सिंह, संजीव

0: मंजुल किशोर वर्मा, वाचक स्वर थे ऋत्विक दास मिश्र, कुमारी सुनीता सिंह और कुमारी अर्पिता चौधरी के। गायक स्वर मंजुल किशोर वर्मा, कुमारी सुनीता सिंह, संजीव द्विवेदी, जितेंद्र शर्मा, प्रीतम दास मिश्र, ऋत्विक दास मिश्र, ब्रजेश सिरमौर, कामना मिश्रा, आराधना बिकई, आशीष बिकई और दिव्या श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, भी आपने सुना संगीत रूपक जिसका शीर्षक था सजन संग लड़ूंगी। श्रोताओं, आइए आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:20 पर बुंदेली सुगंध में आप सुनेंगे बुंदेली का पाठ घासी राम नामदेव से। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे गीतों का संयोजित कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:00 आप सुनेंगे लोक रंग कार्यक्रम जिसमें हमारे कलाकार होंगे विनोद अहिरवार। इनके साथ हारमोनियम पर होंगे सतीश पांडे, बेंजो पर होंगे अरुण कुमार नामदेव और ढोलक पर होंगे ज्ञानीदास कोरी। 9:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जवाब गुनगुना उठे। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। 10:05 पर आप सुनेंगे रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे मिथिलेश कुमार मिश्रा, योगेश चंद्र, मनोज कुमार, शिवप्रकाश सिंह और अनिल द्विवेदी। सांध्यकालीन सभा में कल शाम 5:02 पर युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से और युवाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी आकाशवाणी रीवा केंद्र से। शाम 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी @90 के अंतर्गत दूरदर्शन संवाददाता अब्दुल रशीद खान से बातचीत। शाम 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप सुनेंगे जिसमें कल के हमारे कलाकार भूपत सिंह, ढोलों पर संगत करेंगे लक्ष्मण गौड़ और बैंजो पर होंगे लखनलाल वंशकार। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिसके अंतर्गत ग्रामीण भाई सुनेंगे चर्चा और होगी श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की और आज की सीख का विषय होगा जी की पातर को लड़क जात ओई सू को खातम। रात 8:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य। 8:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा राष्ट्रीय संस्कृति पर पत्रिका संस्कृति भारती और रात 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जो कि आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। ये थे कल प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सितार वादन शाहिद परवेज से, राग है तिलक कामोद।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना शाहिद परवेज का सितार पर बजाया राग तिलक का मोद। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। मिड वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel.